आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुध रहिया 9870 किलो हर्ट्ज़ ते। तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ऑन योर मोबाइल एप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुध सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु निकिता आहिनि। थोरी देरि में तव्हां हमेशह भगत कराम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो ऐं पोइ कुझु गीत कलाम भॼन पेश कंदा। ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कई वेंदियूं। यादि प्रोग्राम जी तफ़सील तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधंदा। हींअर चयो भगत कराम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

साहब जन जी मिश्रे आवास में कलाम दी रही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस से हियर पेश है तबसरो इंतजामिया स्मगलिंग नेटवर्क एसरत पार खां बेकायदे शयुनि जे वापार जे खिलाफ लगातार कार्रवाई कंदे डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी के DRI सिलसिलेवार खुफिया न्यूज जी खबर के आधार से कार्रवाई क्यों मुल्क भर में हफ्ते दौरान कार्रवाई हल्दी रही जै तहत पाड़े में आयल सोन हीरोइन MDMA हाइड्रोपोनिक वीट गाढ़ो चंदन जो लकड़ो मना थे वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स ई सिगरेट पाड़े में आंदल पॉपी सीड्स तंखा अलावा सुपारी के हासिल कर वो ऑफिसर्स यानी खसखस इन कार्रवाई तहत वी एन मान के गिरफ्तार कर तेमें पंज पाड़ी है ये सभी स्मगलिंग ए बेकायदे शयन के व्यापार में मुबतला हुआ ए तमाम ही बेहतर नमूने से शयन के लिकाय कर सरहद पार का खणी अची रहा इन के अलावा ये बेन तरतीबवार ढूंढ में पण रुधल रहा है जुलाई 2026 ते एक कार्रवाई तहत इंदिरा गांधी बैन अवी हवाई अड्डे नई दिल्ली में DRI के अमलदार बिन पाड़े शहर के पकड़े वरत जो दुबई का आया हुआ सदन सामान की ट्रॉली की जांच कंदे खबर पई कि उनमें एक खास ट्रॉली की पाइप जैंदड़ चुलंदड़ पाइप लगाया जैसे बिन्हीं पास चिपकंद टेप से जोड़ वो है इन नकली पाइप के अंदर 40 पाड़े सोन जो सिरों रखल हुई जिन जो कुल वजन हो 4 किलो सोन ए मुसाफिर बिन के गिरफ्तार किया वो इनखा एक हफ्ता अग में एक अलग कार्रवाई में जैसे DRI ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गड़ी करे भारत

बांग्लादेश सरहद वटक अमलदारन के टे अढ़ाई ब किलोग्राम पर डे में आयल सोन बरामद थो। सोन एक शख्स वटा हासिल कर वो जो सरहद वेझो तुंगी में पकड़े वो शख्स के हेली बॉर्डर गेट वट गिरफ्तार किया वो ए टे शख्स के जो मोटरसाइकिल से आयो नित्यानंद कथि हकीमपुर इलाके में गिरफ्तार किया वो टे शख्स में एक औरत में हुई से सोन की स्मगलिंग में गिरफ्तार किया वह। इन केसन का अलावा डीआरआई अमलदारन अढ़ाई ब किलोग्राम सोन टिन अलग अलग कार्रवाई में हासिल कर जैसे कई में वाराणसी दिल्ली हवाई अड्डो ए तमिलनाडु तैमें चार मू गिरफ्तार किया वह। कुल मिला कर साढ़ा नव किलोग्राम सोन हासिल कर जिनकी कथा है लगभग 14 करोड़ रुपया कार्रवाई में नव मू गिरफ्तार किया वह। माना कल आनंद जी शहर में डीआरआई अमलदारन एक बे केस में पाकिस्तान में आंदल गूगल के हासिल कर जैसे कुल वजन 14 मैट्रिक टन इनकी कीमत है 1.25 करोड़ रुपया। आने वक्त इन जो नालो कुछ बो दिनों वो ए मुल्क जो नालो पण अलग दिनों वो हो। वाइल्ड लाइफ ए जंगल के शहर के स्मगलिंग के केस में डीआरआई अमलदारन एक ट्रक के रोके वरतो चेन्नई शहर के बहर तैमें 142 गाढ़े चंदन जा लकड़ हासिल किया वह जिनको कुल वजन 4.8 मैट्रिक टन है। से ट्रक में एक प्लास्टिक के क्रेट में लिकाया वह। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 तहत बंदिश पियल है। इन कंसाइनमेंट की कथ लगभग 2.5 करोड़ रुपया है। जांच पताल में पतो पे यह ऑर्गेनाइज नेटवर्क में पण मोहब्बत ला रहे हैं। इन कार्रवाई में टे शख्स गिरफ्तार किया गया। मणिपुर में पण खबर मिली कि सरहद पार का नशेदार शें अचणी हैं। आसम राइफल ए डीआरआई अमलदार मिली करे गडोगड मणिपुर पुलिस वाले मिली करे चंद्रपुर वेझो एक वाहन के गिरफ्तार कर जिनमें 2.75 किलोग्राम हीरोइन फाती वही जैसे साबुण के केसन में बंद कर आंदो वो। इन कार्रवाई में ब शख्स गिरफ्तार किया वह। खसखस के पिण बंदिश पियल आइटम कर खास कर जी पर्डे में अचे थी तेजी आमद ते बंदिश है ए किन खास हालत में आंदी वेंदी है। सोपर एक खेस में पाकिस्तान में आंदल खसखस पकड़ी वही। तफसरो बुध रहा

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: कुछ गीत कलाम आगाज करें अब्दा परवीन जी आवाज़ सा।

अनिता जयसिंह की खबरें आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस पेशन खास खास खबरों अमेरिका डां भारतीय सफीर विनय मोहन कोतरा चवा है पाकिस्तान पहनी पैंजे दहशत अंग्रेजी के बुनियादी ढांचे के खत्म करे जैसे भारत से बाहमी मुद्दन ते सहकार चाहे तो पाकिस्तान में एक पीस रैलिंग में आपघाते हमले में 14 मानू मार ईरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावा के थोड़े छोड़ो है जैमें उन फौजी कार्रवाई में पास वजन की गाल कही है। ओपेक प्लस मुल्क मनो है इंदड़ महीने का वही करे तेल की पैदावार 188,000 बैरल्स रोजाना वधाई वेंदी। कॉमनवेल्थ रांद 2026 पूरी थी भारत के रस्मी तौर ते अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ रांदन लाय बैटन डनो वे वाय।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस उधी रहा है हिंदी रसन जी प्रोग्राम में जो वक्त पुरोस ही रहा है वाली तमाशा का जानी थी दी सुबह ने सुबह जो है ना कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेजी से इंडिया इजाजत सदाइंग कर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में यह बैठक लचीलापन, नवाचार,

0: सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and the National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. President Draupadi Murmu will begin a 3-day visit to Odisha today. During her visit, the President will participate in a series of educational, cultural and official engagements in Cuttack, Bhubaneswar, Brahmapur and Taptapani in Ganjam district. The President is scheduled to inaugurate Jagadguru Kripalu University at Cuttack today. Tomorrow she will travel to southern Odisha to offer prayers at the Ma खांडोनी देवी टेम्पल नियत

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

एक नई सुबह, नई उम्मीद और नई मुस्कान के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आज मैं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट मनीषा बोस। तो साथियों, आपकी सुबह को तरोताजा और स्फूर्ति से भरपूर बनाने के लिए आज हूँ हाजिर मैं आपके साथ कुछ ऐसे विचारों के साथ, रोचक तथ्यों के साथ और दिलचस्प किस्सों और बेहतरीन गीतों के साथ जो आपके पूरे दिन को खुशनुमा बनाने वाले हैं। तो चाय की चुस्की लीजिए, खिड़की का पर्दा हटाइए और स्वागत कीजिए इस सुनहरी सुबह का गीतों भरी गुड मॉर्निंग के साथ।

दोस्तों, इस भोर को सुहानी बनाते हुए एक बात मुझे याद आ रही है जो आपसे कहना चाहती हूँ। आप सभी को याद होगा कि हमारे दादा दादी नाना नानी हमसे अक्सर कहा करते थे कि सुबह का समय बहुत खास होता है, पर ये ऐसा क्यों कहते थे क्या आपने सोचा है कभी? दरअसल वो इसलिए कहते थे क्योंकि सुबह की धूप हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है यानी कि सर्केडियन रिदम को संतुलित बनाती है, और उसी तरह सुबह जो सूरज की पहली किरण पड़ती है अगर वो सीधे सीधे हमारे शरीर पे पड़े या हम उसके दर्शन कर लें तो हमारे मन मस्तिष्क और मूड को वो बहुत सुंदर और बहुत शांत बना देती है, एकाग्र बना देती है। यानी सुबह की धूप जो है वो बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली ऐसी ऊर्जा है जिसका कोई बिल नहीं आता है दोस्तों। और अब एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे करूं कि आज की सुबह आपने सुबह उठकर क्या देखा, मोबाइल या खुला आसमान? अगर आपका जवाब मोबाइल है तो चिंता मत कीजिए, ये करने वाले आप अकेले तो है नहीं, लेकिन कभी कभी खुद को भी गुड मॉर्निंग कहना भाई बनता है ना? तो इसी बात पर चलिए एक प्यारा सा गीत आपके लिए।

इस सुहानी भोर में एक कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ आज मैं, और वो है एक व्यक्ति की जो रोज सुबह पार्क में वॉक करने जाता था। और एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछ लिया कि भाई आप रोज ऐसे आ जाते हैं, आप इतने अनुशासित और इतने डिसिप्लिन हैं कैसे? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, भाई मैं अनुशासित नहीं हूँ, बल्कि घर में मेरी पत्नी मुझे सुबह 5 बजे योगा लगाती है और कहती है कि चलिए उठिए और राष्ट्र निर्माण में योगदान दीजिए। तो भाई दोस्त ने कहा, फिर क्या आप करते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्र निर्माण से बचने के लिए वो पार्क में भाग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाई राष्ट्र निर्माण में वो मदद तो करते ही हैं, है ना दोस्तों? देखिए, हर घर की सुबह अपनी अपनी कहानी के साथ होती है। कहीं चाय की खुशबू होती है, कहीं स्कूल बस की जल्दबाजी होती है, और कहीं ऑफिस की तैयारी, और कहीं काम वाली के आने का

और दोस्तों अब बात करते हैं उन तीन छोटी आदतों की जो सुबह को बेहतर बनाती हैं। और उनमें से पहली बात है कि भाई उठते ही आपको अपना बिस्तर ठीक करना चाहिए और एक गिलास पानी पीना चाहिए, और अगर वो गुनगुना हो तो और अच्छा। और दूसरी बात यह है कि कम से कम कुछ मिनट खुली हवा या धूप में घूमना जरूर चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात, खुद से किसी अच्छी बात की शुरुआत करनी चाहिए। भाई विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमित शारीरिक गतिविधि और सुबह का रूटीन ऊर्जा और नींद दोनों को बेहतर बनाता है। और भाई दिन की दिशा अलार्म तो तय कर ही नहीं सकता, है ना?

इसीलिए सुबह का पहला विचार तय करता है कि आज पूरे दिन की कवायद कितनी सफल होने वाली है आपकी। और ऐसे में अब बात करते हैं एक ऐसे गीत की जिसे सुनते ही आपका दिल भी मुस्कुराने लगेगा।

भाई हमारा जो देश है वो इतना रंग बिरंगा है, जहाँ हर सुबह रंग बिरंगी ही होती है। भाई कश्मीर में चाय के साथ पहाड़ जागते हैं, वहीं राजस्थान में सूरज की किरणें रेत को जगमग कर देती हैं, केरल में नारियल के पेड़ों के बीच हवा गुनगुनाती है और मणिपुर में झीलें सुनहरी हो जाती हैं, और हमारे शहरों में दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला और हॉर्न बजाकर वो सभी हमें जगाते हैं। यानी कि सारा जो सारी की तान है वो सब कुछ मिश्रित रूप में सुनाई देती है, यानी सब मिलकर सुबह का ऑर्केस्ट्रा सा चला देते हैं। दरअसल ये विविधता ही तो हमारे देश की खूबसूरती है ना दोस्तों? तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरती पर एक और खूबसूरत सा नगमा।

याद रखिए दोस्तों, सुबह सब सूरज के निकलने का नाम नहीं है, सुबह उम्मीद का नाम है, सुबह विश्वास का नाम है, सुबह एक सुनहरे अवसर का नाम है। और जाते जाते बस यही कहूंगी कि हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। इसलिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों के जीवन में भी रोशनी बिखेरते रहिए। और इसी के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग से मनीषा को अनुमति दीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात।
1: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान

0: अभियान आरंभ किया। 16 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधोनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में 10 वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही

0: विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम करीब 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परम्परा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग प्वाइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए वो उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमरीका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Kanpur votes begins for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. Prime Minister Narendra Modi has launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation, completely free from self-destructive habits.
3: Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ke liye Nasha Mukt Yuva, is movement ka naam hi iske sankalp ko spasht karta hai. Kyunki aaj jab desh ne Viksit Bharat ka lakshya tay kiya hai, to iske liye avashyak hai desh ka yuva tan se swasth ho, man se swasth ho, aatmavishwas se bharpoor ho aur drugs jaisi ghatak आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Outlining the campaign's ambitious 100-week roadmap, Mr. Modi detailed how every upcoming Sunday will feature dedicated activities spanning art, culture, sports and meditation to continually engage new participants. He said that coming 100 Sundays will absolutely become 100 strong steps in the direction of a completely drug-free India.
3: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
2: Counting of votes are underway for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Bakipur constituency in Bihar

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुशरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल वसीले से आगाज किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि विकसित भारत बनने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है कि मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पूरे एतमाद होना चाहिए और नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
0: मनुष्यात की रोकथाम से मुतालिक 100 हफ्ते की मूलगीर मुहिम के खाके का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने तफसील से बताया कि आने वाले हर इतवार को फन, सकाफत, खेल और ध्यान पर मबनी मखसूस सरगर्मियां मुनक़िद की जाएंगी ताकि नए शुरका की मुसलसल दिलचस्पी बरकरार रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते रहें। उन्होंने कहा कि आइंदा 100 इतवार नशे से पूरी तरह पाक भारत की सम्त में मुकम्मल तौर पर 100 मजबूत कदम बन जाएंगे।
1: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश

0: कई लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है, जिसके लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजरपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके में गुज़श्ता महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है। चुनाव कमीशन ने तीनों रियासतों में वोटों की गिनती के अमल को खुशअसलूबी से यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्रिक्स मुल्कों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के आदाद शुमार के कौमी दफातर एनएसओ के सरबराहान का इजलास आज से कल तक लखनऊ में भारत की सदारत में मुनाकिद होगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: भारत की ब्रिक्स सदारत मरकजी मौजू इस्तेहकाम इख्तिराक तआवुन और पायदारी की तश्कील से इबारत है। ब्रिक्स के आदाद व शुमार के शोबे में भारत ने मियारी आदाद व शुमार तब्दीली का मुहर्रिक का मौजू इख्तियार किया है, जो आदाद व शुमार के आला मियार इख्तिराक मालूमात की मौसिल तरसील और आवाम पर मरकूज शुमारियाती निजाम के लिए भारत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। इस इजलास का मकसद ब्रिक्स के क्लीदी आदाद व शुमार को मजीद मजबूत बनाना, कौमी शुमारियाती निजाम में इख्तिरा और इस्लाहात को फरोग देना, आदाद व शुमार की इशात और आदाद व शुमार तक रसाई को बेहतर बनाना, नीज माशी और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक आदाद व शुमार को मजीद मुस्तहकम करना है। इसका मकसद आदाद व शुमार से मुतालिक मालूमात की इशात, शुमारियाती निजाम में इख्तिरा, नीज मालूमात और बेहतरीन तरीकेकार के तबादले के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत करना भी है। इजलास के साथ 2 निसफ रोजा जिमनी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें इंतजामी आदाद व शुमार की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा और तरक्की पजीर डेटा इकोनिज़ाम में मसनूई ज़हानत AI के लिए तैयारी जैसे मौजूद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का आज से ओडिशा का 3 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया कटक में करीपालू जगतगुरु यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे और कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिलों के तप्तापानी में तालीमी, सकाफती और दीगर सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। पेश एक रिपोर्ट।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की अपनी आबाई रियासत के 3 रोजा दौरे के सिलसिले में आज से पहले भुवनेश्वर पहुंचेंगी। बाद में शाम को वो कटक के नजदीक बनारा में जगत गुरु किरपालू यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी। वो कल भुवनेश्वर से बहरामपुर तक एक खसूसी ट्रेन से सफर करेंगी और बाद में गंजम जिले में तप्तापानी के लिए सड़क से रवाना होंगी, जहां वो मां कंभुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मोहतरमा मुर्मू गोला बांधा में फौज के एयर डिफेंस कॉलेज में रात कयाम करेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की 40 पलटनों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया के दौरे के दौरान सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए बहरामपुर रेलवे स्टेशन, सदर जमहूरिया के सफर के रास्ते, तप्तापानी मंदिर कॉम्प्लेक्स, फौज के एयर डिफेंस कॉलेज और दीगर मकामात को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। तवक्को है कि कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे, ताकि भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में मजीद तरमीम की जा सके। इम्कान है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकर बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश करेंगे। आदाद व शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद के वजीर राव इंदरजीत सिंह इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 2026 पेश करेंगे। इसी दौरान राज्यसभा में बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनतों की तरक्की का तरमीमी बिल 2026 आज पेश किया जाएगा। बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनतों के मरकजी वजीर जीतराम मांझी बिल पेश कर सकते हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसी करने वाले ममालिक के जरिए ईरान के साथ

0: शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गोदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिप्रा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसी तरह इंतजाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, रैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार जजायर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरकी भारत के बाज़ इलाकों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने साहिली आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान और निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुशतरका खेलों के इख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुशतरका खेलों की उल्टी कीमती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फलसफे, जदीद फनून और अपनी शानदार सकाफती रिवायात का हसीन इम्तिजाज पेश करते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अहमदाबाद आने की पुरजोश दावत दी। इसी तकरीब के जरिए 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों के 7 साला एडिशन की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज भी हो गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं के नुमाइंदे प्रिंस एडवर्ड ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम का बाज़ाब्ता ऐलान किया और तमाम शरीक ममालिक और खित्तों के खिलाड़ियों को अहमदाबाद आने की दावत दी। 11 रोज तक जारी रहने वाले सख्त मुकाबलों के बाद भारतीय खिलाड़ी 39 तमगों के साथ ग्लासगो से वतन वापस लौटे। नई दिल्ली से मुजद्दीन खान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अहमद। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों की सुर्खी है। वजीर आजम

0: मोदी ने मनुष्यात के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करना चाहिए। मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से राबता, खित्ते में जारी कशीदगी रोकने के लिए मुजाकरात पर दिया जोर, इस खबर को इनकलाब ने सफे अव्वल पर शाये किया है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में हुए जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज, सभी तैयारियां मुकम्मल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। रोजाना इंकलाब की खबर है। उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास आज से, कई अहम बिलों को पेश किए जाने की उम्मीद।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आला दुश्मार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद में ग्लासगो में अख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुशर्रका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। इसके साथ ही ये खबरनामा हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी वीक 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। ये जी प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप शुभम कुमार के गायन में सुनेंगे राग नाद भैरव। तबले पे संगति दी है मुस्तफा हुसैन ने और सारंगी में है गुलाम मोहम्मद।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में आप सुन रहे थे शुभम कुमार के गायन में राग नट भैरव, तबले पे संगति दी मुस्तफा हुसैन ने और सारंगी में थे गुलाम मोहम्मद।

जीने की मुझे अब आस नहीं, अशकों के सिवा कुछ पास नहीं। जीने की मुझे अब आस नहीं, अशकों के

के सबा मजबूर हूँ मैं, सरकार से कोसों दूर हूँ मैं। माना के सबा मजबूर

ओम के मारो सुनो, बेसहारो सुनो, शाह कौमैन के आस्था पर चलो। ओम के मारो सुनो, बेसहारो सुनो, शाह कौमैन के आस्था पर चलो। तुम पे होते ही उनकी निगाहें करम सबके।

यादों से भर जाएंगे आप, शम्मे रिसालत हैं। फैज़ आका हम आगीर है किस कदर, जब उठेगी सरे हश्र उनकी नजर। फैज़ आका हम आगीर है किस कदर, जब उठेगी सरे हश्र उन

मुकद्दर समझ जाएंगे आप, शम्मे रिसालत है मेरे दिल की सबा आरज़ू है यही, मैं मदीने से वापस ना आऊं कभी, मेरे दिल की सबा

0: हासिल जिंदगी उनके कदमों में जो दिल गुजर जाएंगे असल में है वही हासिल जिंदगी उनके कदमों में जो दिल गुजर जाएंगे आप शम्मे रिसालत है परवाने हम अब यहाँ से हम आखिर किधर जाएंगे जिंदगी तो हमारी इसी दर से है आपसे दूर होंगे तो मर जाएंगे आप शम्मे रिसालत है।
1: अभी आप सुन रहे थे नाते रसूल पाक और अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे। सो नाउ लेट्स टेल आवर लिसनर्स विशाल अबाउट द स्पेशल डे इट इज टुडे। टुडे इट्स इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे विच इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 3rd of August टू कमेमोरेट इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल डिसीज्ड डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट एंड दिस वॉज परफॉर्म्ड ऑन 3rd of August इन द ईयर 1994। Right? So this day is dedicated to honoring the selfless individuals and families who have chosen to donate organs, giving countless patients a second chance at life. The day also serves as a beacon of hope for patients who are awaiting life-saving transplant and their families, reminding us that one organ donor can save multiple lives.
2: जी एक तरीके से ये जीवन दान देना है।
1: True, Vishal.
2: और भारतीय रेलवे ने चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में एक

0: नया इतिहास रच दिया है। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस की मदद से दान किए गए हृदय को सूरत से अहमदाबाद तक लगभग 250 किलोमीटर की दूरी बहुत कम समय में पहुंचाया गया। इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, गुजरात पुलिस और डॉक्टरों ने मिलकर एक विशेष ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ग्रीन कॉरिडोर ऐसी विशेष यातायात व्यवस्था होती है जिसमें एम्बुलेंस या अंग ले जा रहे वाहन को बिना किसी रुकावट के तेजी से अस्पताल तक पहुंचाने का रास्ता दिया जाता है। सभी ट्रैफिक सिग्नल और रास्तों को पहले से खाली कराया जाता है ताकि अंग समय पर मरीज तक पहुंच सके। इस विशेष व्यवस्था की मदद से हृदय सुरक्षित और समय पर अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंचा, जहां उसका सफल प्रत्यारोपण किया गया और मरीज को नया जीवन मिला। यह अभियान भारतीय रेलवे, पुलिस और चिकित्सा टीम के बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है और अंगदान के महत्व को भी उजागर करता है। एक व्यक्ति का अंगदान कई लोगों को नया जीवन दे सकता है। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जिसने इस संघर्ष को प्रथम विश्व युद्ध में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1977 में आज के दिन दुनिया का पहला होम कंप्यूटर TRS-80 मार्केट में लॉन्च हुआ था। इसकी कीमत उस समय $599 थी, यानी कि $600 से $1 कम। और इस कंप्यूटर को 19 से ज्यादा रेस्पॉन्स मिला और पहले ही महीने में अनुमान से 10 गुना ज्यादा 5,000 कंप्यूटर की बिक्री हुई। और 1985 में आज ही के दिन भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे को कुष्ठ रोगियों तथा अन्य उपेक्षित और दिव्यांग लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सार्वजनिक सेवा श्रेणी में रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: हाउ ग्रेट।
0: तो ये तो बात हुई इतिहास में आज के दिन दर्ज प्रमुख घटनाओं की, और अब रुख करते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ।
1: और जब
0: हम, जब हम बात करते हैं उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज जन्मतिथि है और या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है, और एक पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यहाँ देश प्रेम और देशभक्ति से जुड़ी हुई ये पंक्तियां हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त की हैं और राष्ट्र कवि की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के ऐसे महान कवि थे जिन्होंने कविता को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार का साधन बनाया। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, संस्कृति, नारी सम्मान, मानवता और नैतिक आदर्शों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। आज भी भारत भारती, साकेत, यशोधरा जैसी कृतियां हिंदी साहित्य के अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। इनका लेखन ऐसे समय में आया जब देश स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर रहा था। इनकी रचनाओं ने जनता में राष्ट्रीय चेतना और आत्मगौरव की भावना जगाई। भाषा बहुत सहल थी, सरल थी, संस्कृत निष्ठ थी और प्रभावशाली रही। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज को दिशा देने का भी माध्यम है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की एक ऐसी रचना रही है, प्रसिद्ध कृति रही है, जिसमें भारत के गौरवशाली अतीत, वर्तमान की चुनौतियों और उज्जवल भविष्य की कल्पना का चित्रण किया गया है। इस कृति ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रबल किया था। और आज के दिन जन्म हुआ था शकील बदायूनी का, महान शायर और गीतकार। अपनी शायरी की बेपनाह कामयाबी से उत्साहित होकर इन्होंने आपूर्ति विभाग की सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और वर्ष 1946 में दिल्ली से मुंबई पहुंच गए थे। शकील बदायूनी ने करीब 3 दशक के फिल्मी जीवन में लगभग 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे, और इनके फिल्मी सफर पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा फिल्में संगीतकार नौशाद के साथ ही की थी इन्होंने। और वर्ष 1947 में पहली ही फिल्म दर्द के गीत अफसाना लिख रही हूं कि अपार सफलता मिलने के बाद शकील बदायूनी कामयाबी के शिखर पर जा बैठे थे। और शकील बदायूनी की जोड़ी प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद और हेमंत कुमार के साथ खूब जमी।
1: And yes, Shakir Bagalni, the one of the most famous Urdu poet and lyricist of the 50s and 60s. Now we obviously remember him for his songs. Yeah. Music director Naushad.
0: और इनको जो है तीन बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया जी गीतों के लिए इनको और जो चौदहवीं का चांद फिल्म का एक गीत था और वर्ष 1960 में इसके लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था. आइए सुनते हैं गीत.

0: और
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: हुसैनपुर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अल रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद में ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 के दौलत मुश्तरक खेलों की मेजबानी के हकूक बाजाब्ता तौर पर हासिल किए। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प का वर्चुअल वसीले से आगाज किया। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत बनने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है कि मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त व दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पुर एतमाद होना चाहिए और नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए। नशीले मादों की रोकथाम से मुतालिक 100 हफ्ते की मूलगिर मुहिम के खाके का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने तफसील से बताया कि आने वाले हर इतवार को फन, सखावत, खेल और ध्यान पर मबनी मखसूस सरगर्मियां मुनक़िद की जाएंगी ताकि नए शुरुआत की मुसलसल दिलचस्पी बरकरार रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते रहें। उन्होंने कहा कि आइंदा 100 इतवार नशे से पूरी तरह पाक भारत की संत में मुकम्मल तौर पर 100 मजबूत कदम बन जाएंगे। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है जिसके लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। बिहार में बांकीपुरा हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके में गुज़श्ता माह की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। चुनाव कमीशन ने तीनों रियासतों में वोटों की गिनती के अमल को खुशअसलूबी से यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए हैं। ब्रिक्स मुल्कों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, एथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के आदादोशुमार के कौमी दफातर NSO की सरबराहन का इजलास आज से कल तक लखनऊ में भारत की सदारत में मुनक़िद होगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू का आज से ओडिशा का 3 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। अपने कयाम के दौरान सदर जमहूरिया कटक में जगद गुरु के कृपालू यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी और कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम अजला के तप्ता पानी में तालीमी, सकाफती और दीगर सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। तो कानून और इंसाफ के मरकजी

वजीर अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे ताकि भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में मजीद तरमीम की जा सके। इम्कान है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश करेंगी। आदादोशुमार और प्रोग्राम के निफाज के वजीर राव इंद्रजीत सिंह इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट 2026 पेश करेंगी। इसी दौरान राज्यसभा में बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनअतों की तरक्की का तरमीम बिल 2026 आज पेश किया जाएगा। बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनअतों के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी बिल पेश कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसी करने वाले ममालिक के जरिए ईरान के साथ आज मुजाकरात होने वाले हैं। एयरफोर्स वन में साफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने तस्दीक की कि दोनों ममालिक के दरमियान रास्ते और बातचीत के जराये सरगर्म हैं। सदर ट्रंप ने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में उन्होंने इस बड़े हमले को रोकने का फैसला किया है जो पहले मंसूबाबंदी का हिस्सा था। उन्होंने मजीद कहा कि आप नए हुरमुज के इंतजाम और इंसराम के हवाले से एक माहिदा तय पाने का इम्कान है, जबकि ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी एक मुफाहमत तक पहुंचने की तवक्को है। इसराइली मीडिया की खबरों के मुताबिक खित्ते के सालिसी करने वाले ममालिक गुज़िश्ता माह दस्तखत किए गए मफाहमत नामे को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस आम समुद्री गुजरगाह को 60 दिन तक बगैर किसी फीस के खुला रखा जा सके। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इशारा दिया कि ईरान और अम्मान के दरमियान इस समुद्री राहदारी के इंतजाम के लिए मुश्तरक तरीकेकार से मुतालिक मुजाकरात अपने आखिरी मरहले में हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कल पुरअमन रैली के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हुए खुदकुश हमले में सिक्योरिटी के 5 अहलकारों समेत कम से कम 14 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। खुदकुश बम धमाके का वाकया उस वक्त पेश आया जब स्वात पुरअमन रैली स्वात जिले में कबल कस्बे के पुलिस स्टेशन से गुजर रही थी। किसी ग्रुप या फर्द ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र सावन महीने की पहली पीर के मौके पर आज भगवान महाकालेश्वर की शरण यात्रा निकाली जाएगी। चंद्रा मावलेश्वर के रूप में भगवान महाकाल की रिवायती पाली की निकाली जाएगी, जिससे अकीदतमंदों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा। शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गुदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिप्रा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसीतर इंतजाम किए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, जजायर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, वस्ती, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाली मशरकी भारत के बाद हिस्सों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। ग्लासगो में मुनक्कदा दौलत मुश्तरका खेलों के अख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक्कद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की उल्टी गिनती बाजाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। अहमदाबाद में ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाजाब्ता तौर पर हासिल कर लिए हैं। पूरे केरला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सभी 14 जिलों में शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। थिरुवनंतपुरम और कोलम को छोड़कर सभी जिलों में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। खास खबरें एक बार फिर सुनिए।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद में ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 के दौरे मुश्तरक खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल कर लिए हैं। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है अकवाले ज़री का प्रोग्राम शमे फरोजा।
2: जीने का हुनर सब्र और शुक्र में मुजमर है। शुक्र क्या है? जो कुछ मयसर है उसमें खुशियां तलाश करने और उसको गनीमत समझने का नाम शुक्र है। साथ ही ये मजीद नेमतें और खुशियां हासिल करने का जरिया भी है। और सब्र नाम है नामुसाइद हालात के मुकाबले का। जिस शख्स के अंदर मौजूद पर खुश रहने और मुश्किल पर सब्र करने का हुनर आ जाए वो कामयाब और कामरान है। वो थोड़ी सी खुशी में जिंदगी के तमाम रंग महसूस कर लेता है और बड़े से बड़ा कोह गम भी उसकी नजर में हेच हो जाता है। सब्र के असल माना तो रुके रहने के हैं, लेकिन अपने इस्तेमाल में ये बहुत वसी मफहूम रखता है। मसलन अपने जज्बात को काबू रखने, अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखने, अपने गुस्सा को पी जाने, किसी मकसद को हासिल करने के लिए जल्दबाजी न करने का नाम सब्र है। सब्र के बारे में एक बात ये कही जाती है कि सब्र मजबूरी भी होता है, यानी हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए मजबूरन खामोश हैं। लेकिन याद रखिए कि ये भी सब्र है और ये भी आला सिफत है। इस सब्र के नतीजे में इंसान को बहुत जल्द बुलंद मकामात हासिल होते हैं। दरअसल जिसको नापसंदीदा सब्र कहा जा सकता है वो दो तरह का होता है। एक तो ये कि इंसान के पास पूरी कुव्वत और इस्तेदाद है, उसके बावजूद वो या तो खुद जुल्म सह रहा है या किसी और पर जुल्म हो रहा है, लेकिन ये खामोश तमाशा ही है। ऐसा सब्र नापसंदीदा है। इसी तरह जज्बात से मगलूम होकर मुनफइल कारकर्दगी जिसमें कोई प्लानिंग न हो वो भी नापसंदीदा सब्र के जमरे में आता है। सब्र हौसला हारने का नहीं बल्कि जीतने का हौसला रखने और नामुसाइद हालात को हिकमत से गुजारने का नाम है। सब्र बुजदिली नहीं, बहादुरी है। सब्र सिर्फ झेलने का नाम नहीं है बल्कि जीतने के लिए झेलने का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर वो है जो अपने गुस्सा पर काबू रखे, यानी गुस्से की हालत में अपने नफ्स को काबू में रखने का नाम सब्र है। दुनिया और आखिरत में सब्र एक कीमती खजाने की तरह है। सब्र करने वाले के साथ अल्लाह ताला की खुसूसी मदद होती है। सब्र करने वालों पर खुदा की रहमत होती है। सब्र के नतीजे में इंसान लोगों में भी महबूब हो जाता है। सब्र के बेशुमार फजाइल हैं। अगर किसी शख्स में सब्र के साथ शुक्र भी जमा हो जाए तो वो दुनिया का कामयाब तरीन शख्स होता है। सब्र उसको हौसला देता है और शुक्र उसको नेमतों से फैजियाब होने का मौका देता है। शुक्र का लफ्जी मफहूम है किसी का एहसानमंद होना। शुक्र बहुत बड़ी सिफत है। इंसान का शुक्रगुजार होना उसके आला अखलाक और किरदार की दलील है। शरीफ नफ्स इंसान हर छोटे बड़े के एहसान का शुक्र अदा करता है और असल शुक्र तो उस अहकमुल हाकिमीन के लिए है जो सारे आलम को महज अपने फजल से पालता है और तमाम इंसानों को बेशुमार नेमतें उसी ने अता कर रखी हैं। उसका फरमान है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हारी नेमतों में इजाफा होगा, यानी शुक्र अदा करना गोया मजीद नेमतें हासिल करने का जरिया है और शुक्र अदा न करना नेमतों से महरूमी का सबब बन जाता है। इसलिए वक्त रहते इंसान को अपनी तमाम नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। उसके जरिए वो नेमतें न सिर्फ ये कि लाजवाल बन जाएंगी बल्कि मजीद नेमतें हासिल होंगी। सब्र और शुक्र में एक बात जरूर पेश नजर रखनी चाहिए कि सब्र का मौका भी आजमाइश होता है और शुक्र का मौका भी इम्तिहान होता है। जिस पर आजमाइश है उसका इम्तिहान सब्र के लिए है कि वो मुसीबत पर सब्र करता है या वावेला करता है, और जिस पर नेमतों के इजाफी दरवाजे खुले हुए हैं उस पर भी दरअसल इम्तिहान है कि वो नेमतों पर शुक्र अदा करता है या नाशुक्री करता है। और हर शख्स के हालात के एतबार से ये दोनों मराहिल हर वक्त हर शख्स पर रहते हैं। इसलिए कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके पास बेशुमार नेमतें न हों और कोई शख्स

लाई फिर एक लग्जिशे मस्ताना तेरे शहर में, फिर बनेगी मस्जिदें महफाना तेरे शहर में, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियां, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में।

नंगी सड़कों पर भटक कर देख जब मरती है रात, रेंगता है हर तरफ वीराना तेरे शहर में।

इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज के प्रोग्राम में आपने बेगम अख्तर की आवाज में शेफ्ता और कैफी आजमी का कलाम सुना और बीना पांडे से आपने सुना फराह गोरखपुरी और मखमूर देहलवी का कलाम। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। समीन, आज मारूफ नगमा निगार शकील बदायूनी का यौम पैदाइश है और इस हवाले से हम लेकर आए हैं उन पर एक फीचर जिसका उन्वान है एहसासात का कफील शकील। तहरीर मलिक के अश्तर की है और पेशकश अली मोहतशिम रजा की। आइए सुनें।

अगस्त सन 1946 में शकील बंबई पहुंचे, कादार साहब से मिले और उन्होंने उन्हें मुसिकार नौशाद से पहली बार मुतारिफ करवाया। न तो नौशाद साहब और न ही शकील, दोनों ही शायद उस वक्त इस बात से बाखबर रहे होंगे कि अनकरीब भारतीय फिल्मी मौसीकी के उफक पर इन दोनों की जोड़ी सितारों की तरह चमकेगी। कादार स्टूडियो में उस वक्त अदीबों और शायरों का जमघट था। मजरू सुल्तानपुरी खुमार।

बाराबंकी, मैशर अम्भोवी और जिया सरहदी सबके सब स्टूडियो में मुलाजिम हुआ करते थे। जिस बंगले में शकील के कयाम की बात हुई थी उसमें गुंजाइश नहीं निकली, मजबूरन शकील को दूसरी जगह एक तंग से कमरे में कयाम करना पड़ा। इस सब के बावजूद शकील ने पूरी दिल जमाई से दर्द के गीत लिखना शुरू कर दिए। अभी गाने लिखे जा रहे थे कि बदायूं से खबर आई कि शकील की वालदा चल बसी। जल्दी जल्दी छुट्टी ली और बदायूं पहुंचे, वापस आकर फिर से गीत लिखने शुरू कर दिए। नौशाद की मौसीकी से सजे गीतों ने धूम मचा कर रख दी।

दर्द जिन हालात में मंजर आम पर आई वो बड़ा नाजुक दौर था। मुल्क में फिरका वाराना कशीदगी के आसार नजर आ रहे थे। ऐसे में भी कारदार की इस मुस्लिम सोशल फिल्म ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए और बतौर गीतकार शकील बदायूनी का नाम जुबा जदी खासो आम हो गया।

अभी शकील के बंबई में कदम सही से जम ही रहे थे तो उनकी तकसीम हो गई और कारदार साहब स्टूडियो बंद करके कराची चले गए। नौकरी छूट गई, बेसरो सामानी और परेशानी इतनी बढ़ी कि एक दिन शकील ने भी पाकिस्तान जाने के लिए पानी के जहाज का 20 रुपए का टिकट ले ही लिया और रुखसत होने को नौशाद साहब के पास आए। नौशाद साहब ने ढारस बंधाई और टिकट वापस करा दिया। कुछ और दिन गुजरे, गंगा जमुना में कुछ और पानी बहा, मुंबई के साहिलों पर कुछ और मौजों ने सर पटका और फिर उम्मीद की किरण दिखी। जीबीएच वाडिया ने मेला फिल्म बनाने का फैसला किया और गीत लिखने का काम शकील को मिला। नौशाद साहब मौसीकी देने को राजी हो गए।

गाने खूब चले। इधर महबूब खान और कारदार भी बंबई वापस आ गए। हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे। महबूब साहब ने अनोखी अदा फिल्म बनाने का काम शुरू किया और इस फिल्म के गीत लिखने का जिम्मा दिया नौशाद साहब ने शकील को। फिल्म आई और धूम मच गई। इसके गीतों में जोश और वलवले के जज्बात को शकील ने बड़ी खूबसूरती से पिरोया।

कादर साहब ने दिल्लगी बनानी शुरू कर दी और गीत हसब साबिक शकील के हिस्से में आए। दिलशाद की मौसीकी से मुजयन इस फिल्म के गीतों को भी बेपनाह मकबूलियत मिली। इस फिल्म में हीरो श्याम और हीरोइन सुरैया थी।

अगला फिल्म आने के कुछ दिन बाद शकील ने एक मकान किराए पर ले लिया और उसमें मुस्तकिल तौर पर बस गए। बाद में बदायूं से बेगम और बच्चों को भी बुलवा लिया गया। इस मकान के ऊपरी हिस्से में नौशाद साहब अपनी दूसरी बीवी के साथ रहने लगे। शकील का ये घर मुस्कुराहटों से भरा रहता। दिन भर इल्मी, अदबी और फिल्मी मसरूफियात, रात गए शकील साहब अक्सर माजी के औराक को पलटते, जहन की लाइब्रेरी में झांकते, यादों की अलमारी से कोई किताब निकालते, इस पर जमी वक्त की धूल को झाड़ते और बर्फ गर्दानी करने लगते। दिल्ली की अदबी नशिस्तें, इससे पहले अलीगढ़ का दौर और इससे भी पहले बदायूं का तहजीबी दौर आंखों में फिर जाता। बदायूं याद आता, वो बदायूं जहां उन्होंने बचपन और नौउम्री के दिन गुजारे थे, जहां मुहर्रम की आजादारी और उर्स की रौनकें होती थीं। इसी बदायूं में 3 अगस्त 1916 को शकील पैदा हुए। वालिद मौलवी जमील कादरी मुस्तनद आलम-ए-दीन और अदबी ज़ौक रखने वाले शख्स थे। शकील जरा बड़े हुए तो घर में ही इब्तदाई तालीम का इंतजाम हुआ। 1925 में वालिद के साथ कुछ दिन मुंबई रहे और फिर बदायूं वापस आकर एक स्कूल में दाखिला लिया। कुछ दिन बाद फिर मुंबई गए और साल भर बाद बदायूं वापस आकर फिर से पुराने स्कूल में दाखिल हो गए। बम्बई जानी और आने की वजह ये थी कि उनके वालिद बम्बई की एक मस्जिद में खतीब थे। शुगर की शिकायत रहती थी। शकील ने 1935 में मैट्रिक कर लिया तो वालिद की फरमाइश हुई कि उनकी शादी कर दी जाए ताकि वो अपने बेटे का सेहरा देख सकें। चुनांचे कैसर हुसैन कादरी की बेटी सलमा, जिनसे बचपन में ही रिश्ता तय पा चुका था, उनसे शकील की शादी कर दी।

1938 में पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए शकील ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। अलीगढ़ की अदब परवर फजाओं में जिस सुखनवर से शकील की सबसे पहली मुलाकात हुई वो थे राज मुरादाबादी। इन दोनों के अलावा अलीगढ़ में मजाज लखनवी और जानिसार अख्तर भी अदबी महफिलों की जान।

शाहिद लतीफ भी उन्हीं दोनों यूनिवर्सिटी में थे। राज मुरादाबादी ने शहील को जिगर मुरादाबादी से मिलवाया। जिगर साहब राज के उस्ताद सुखन थे। उस रात मुशायरा हुआ। शकील ने पहली ही बार में

अलीगढ़ में शेर व अदब का खूब चर्चा था। कॉलेज के अलावा शकील का ज्यादातर वक्त इन्हीं महफिलों में गुजर जाता। सन 1939 में शकील ने अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किया ही था कि वालिद के इंतकाल की खबर मिली। शकील अपनी वालिदा और बीवी के साथ दुनिया की जिम्मेदारियां निभाने में तन्हा रह गए। ससुराल ने इस मौके पर बहुत साथ दिया। शकील के खुसर ने उन्हें पुलिस में भर्ती करवाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। इसी दौरान जिगर मुरादाबादी को भनक लग गई। वो भागे भागे उनके पास आए और समझाया कि ये लड़का पुलिस के मतलब का नहीं है, इसकी तालीम आगे बढ़ाइए। खुसर बिलाखिर मान गए। सन 1942 में बीए के बाद कुछ दिन रोजगार की तलाश में कट गए। एक दिन बीए से खबर मिली कि वहाँ सप्लाई महकमे में क्लर्क की भर्ती निकली है। शकील ने दरखास्त दे दी और चुन भी लिए गए। 60 रुपया माहवार तनख्वाह और 20 रुपए महंगाई भत्ता मिलने लगा। जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश करने लगी।

उस जमाने में दिल्ली का माहौल शेरो अदब से सजा हुआ था। फसील बंद शहर से लेकर ऑल इंडिया रेडियो तक और चाय खानों से लेकर कुतुब खानों तक हर जगह इमो अदब के चिराग रोशन थे। इन अदबी सोहबतों से शकील को खूब फैज उठाने का मौका मिला।

नौकरी तो थी, लेकिन शकील की तबीयत को करार नहीं था। एक जगह लिखते हैं, शायरी और नौकरी दो मुतजाद चीजें हैं, मगर इन दोनों तजादों को साथ लिए सन 1942 से 1946 तक हुकूमत हिंद के सप्लाई महकमे में काम करता रहा। वहाँ वक्त की पाबंदी और मेरे मिजाज में आजादी का रंग, वहाँ अफसरों की सख्तियाँ और फितरत में खुददारी का अंसुर, वहाँ मेज और फाइलों का अंबार और मेरी तबीयत बिस्तरे राहत और तख्लीक फन की तरफ माइल। गर्ज ये कि मेरी रूह को ऐसे माहौल की तलाश थी जहाँ पाबंदी भी ना हो, इज्जत भी मिले और दौलत भी। खुशकिस्मती से ये वो जमाना था जब हमारे अदीबों और शायरों की मांग बम्बई की फिल्म कंपनियों में हो रही थी।

मुंबई की फिल्म दुनिया में जैसे जैसे दिन गुजरते गए शकील की शोहरत बढ़ती चली गई। उनकी शायरी में रोमानियत और पैगाम दोनों का इम्तिजाज था। इसी रंगारंगी ने शकील के नगमों को मुनफरिद बना दिया। उनके नगमे सिर्फ लबो रुखसार का फसाना सुनाने तक महदूद नहीं रहे, बल्कि जहां जरूरी हुआ वहां हालातों हवादिस का मरसिया और नहों में लिखा गया। शकील अपनी इस शीरी तबीयत का खुद भी एक जगह इजहार कर चुके हैं। महबूब की खिलवत पे नजर मेरे सुखन की, महबूब की खिलवत पे नजर मेरे सुखन की, मजलूम की आहों का धुआं मेरी गजल में।

अभी आप सुन रहे थे शकील बदायूनी पर, ये फीचर एहसासात का कफील शकील। शकील बदायूनी के यौम पैदाइश पर यह था आकाशवाणी की उर्दू सर्विस की जानिब से खराज अकीदत। इस फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा आज दिन में 3:30 पर नशर किया जाएगा। तहरीर थी जनाब मलिक अश्तर की और पेशकश थी अली।

तो समीन आज हम याद कर रहे हैं शकील बदायूनी साहब को। फिल्मी मौसीकी की बात होती है तो चंद नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में याद किए जाते हैं और उनमें एक निहायत रोशन नाम है शकील बदायूनी। वो शायर जिनके अल्फाज में इश्क की मिठास भी है, रूहानियत की खुशबू भी है, जबान की लताफत भी है और इस अंदाज से ये लताफत घुली हुई है कि उनके नगमे आज भी दिलों पर राज करते हैं। आज ही के दिन यानी 3 अगस्त सन 1916 को उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर बदायूं में आपकी पैदाइश हुई थी और इसी निस्बत से उन्होंने अपने नाम के साथ लगाया बदायूनी और वो कहलाए शकील बदायूनी। बचपन से ही उनका रुझान शेर व अदब की तरफ था, घर का माहौल भी अदबी था जिसकी वजह से उनकी सलाहियतें जल्द निखर कर सामने आई। आला तालीम हासिल करने के बाद वो कुछ अरसा सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता रहे लेकिन शायरी का शौक उन्हें मुंबई ले आया जहां किस्मत उनकी मुंतजर थी और फिर उन्होंने कहा मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा, मैं मोहब्बतों का हूं राजदा, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं।

साल था 1940 और ऐसे में शकील बदायूनी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और उनकी पहली फिल्म ने फिल्म के गीतों ने लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। जल्द ही उनकी मुलाकात हुई थी मौसिकार नौशाद अली साहब से और ये मुलाकात बरसगीर की मौसिकी की तारीख की एक यादगार शराकतदारी साबित हुई। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की केमिस्ट्री के जरिए हमें और आप सबको मिले इतनी खूबसूरत फिल्मी क्लासिकल नगमे जो आज भी हमारी हिंदुस्तानी फिल्म सनत का सरमाया कहे जा सकते हैं। इसके अलावा शकील बदायूनी के लिए बेशुमार नगमों को शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी साहब ने अपनी जादुई आवाज दी। जब शकील साहब के अल्फाज हों, नौशाद की मौसिकी हो और रफी की आवाज यकजा हो जाए तो फिर एक ऐसा शाहकार जन्म लेता था सामईन जिसे वक्त कभी भी पुराना ना कर सका। उनके बहुत सारे बेशुमार नगमे हैं। शकील बदायूनी की एक और खास बात यहाँ जरूर शेयर करेंगे कि वो सिर्फ रोमानवी शायर ही नहीं थे बल्कि उनके जो मजहबी और रूहानी शायरी है वो भी बेमिसाल है। उन्होंने हमद, नात, मनकबत और भजन बड़े अकीदत भरे अंदाज में लिखे और उनके कलाम में जब मजहबी एहतराम शामिल हुआ तो फिर ऐसे फनपारे तख्लीक पा गए जिन्हें रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकेगा।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात प्रोग्राम है मेरी पसंद और आज के प्रोग्राम में शकील बदायूं ने साहब के लिखे हुए नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि आज है उनका यौम पैदाइश और आकाशवाणी की उर्दू सर्विस कैसे भला भूल जाए ऐसी तमाम शख्सियात को जिन्होंने हमारी फिल्मी सनत को इतना एनरिच कर दिया कि हम और आप सारा दिन सुनते हैं अलग अलग लोगों के नगमे याद करते हैं उन सभी को और पेश करते हैं उन्हें खराज अकीदत। शकील बदायूं साहब की शायरी की सबसे बड़ी खूबी उनकी सादगी है। मुश्किल अल्फाज के बजाय आम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अल्फाज जो सुनते ही दिल में उतर जाते हैं। उनके अशार में मोहब्बत भी है, वफा भी है, जुदाई भी है, गम भी है, खुशी भी है, हुस्न की तारीफ भी है, रूहानियत भी है, इंसानी जज्बात का भला वो कौन सा पहलू होगा सामीन जो हमें उनकी शायरी में ना नजर आए। यानी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इंसानी जज्बात और एहसास पर काम न किया हो या बात न की हो और इसीलिए जो फीचर हमने अभी आपको सुनवाया उसका भी नाम यही रखा गया एहसासात का कफील शकील, जिसका पहला हिस्सा आप सुन चुके और दूसरा हिस्सा 3:30 पर हम आपके लिए एयर करेंगे। इसीलिए उनके गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। और अगर बात मोहब्बत की होती है तो फिर यहाँ तो तमाम शुरा से कह सकते हैं कि बाजी ले जाते हैं। गजलों के अलावा जब उन्होंने नज्मों पर तबाह आजमाई की तो ये नज्में भी हमारी हिंदुस्तानी फिल्म सनत का शाहकार बन गईं।

मेरी पसंद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। यहाँ बात है शकील बदायूनी साहब की। नगमों के साथ साथ मौसीकी का भी फिल्म की कामयाबी में एक बड़ा हिस्सा होता है, और सबसे ज्यादा नौशाद साहब की जो केमिस्ट्री नजर आती है, जो कामयाब रही और बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्में हमारी हिंदुस्तानी फिल्मी सनत को मिली, तो उसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा नौशाद साहब का। अगर हम इन दोनों की फिल्मों की बात करें तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। कोहिनूर है, दिल लगी है, अंदाज है, सन ऑफ इंडिया, शबाब, मेला, अनोखी अदा, दास्तान, कोहिनूर, ताजमहल, मेरे महबूब, दर्द, मुगले आजम, दुलारी, लव इन गॉड और बहुत सारी फिल्में हैं कि अगर यहां पर सिर्फ फिल्मों के नाम लें तो बहुत सारा वक्त चला जाएगा। नौशाद साहब के बाद अगर कोई और म्यूजिक डायरेक्टर नजर आता है शकील बदायूनी साहब के साथ सक्सेसफुल फिल्में देता हुआ तो फिर वो रवि साहब हैं। और उनकी फिल्मों की अगर बात करें जिसमें एक फिल्म फेयर अवार्ड भी है, 1960 में फिल्म थी घराना, इसके लिए उनको फिल्म फेयर की जानिब से अवार्ड दिया गया था। घराना के अलावा फिर था घूंघट फिल्म, गृहस्थी, नर्तकी, फूल और पत्थर, दो बदन वगैरह काबिल जिक्र नहीं। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन जो हमें नजर आता है शकील बदायूनी साहब का, वो हमें नजर आता है हेमंत कुमार के साहब, और जो काबिल जिक्र फिल्में नजर आती हैं वो है 20 साल बाद, जिसका नगमा भी अभी हमने आपको सुनवाया, बेकरार करके हमें यूं ना जाइए। इसके अलावा 20 साल बाद की बात साहिब बीबी और गुलाम और बिन बादल बरसात, ये फिल्में काफी काबिल जिक्र रहीं। और उसके बाद एसडी बर्मन साहब का नाम यहां जरूर लेंगे, जिन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही जमकर हमारी हिंदुस्तानी फिल्म सनत को बेमिसाल नगमे दे गई। कुछ और मुसिकारों की अगर जिक्र की जाए तो यहां पर सी रामचंद्र का नाम है, जिसमें जिंदगी और मौत और वहां के लोग, ये दोनों फिल्में काफी कामयाब रही। या फिर रोशन

0: तहकीक में।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अब पेश खिदमत है रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, जब बारिश का मौसम आता है तो हर तरफ हरियाली होती है, हमें अच्छा लगता है जब मौसम में बदलाव होता है, गर्मी से एक राहत मिलती है, लेकिन कई बार ये अपने साथ कुछ ऐसे इन्फेक्शंस, कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है जिसका सोल्यूशन बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए मौजूद है रेडियो डॉक्टर आज का ये अंक लेकर, जिसमें हम बात करेंगे इन्फेक्शन ड्यूरिंग मानसून सीजन, यानी बारिश में होने वाली आमतौर पर क्या समस्याएं होती हैं, क्या संक्रमण होते हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी होता है, और अगर किसी कारणवश आपको ये बीमारी या इन्फेक्शन हो जाए तो क्या सावधानी लेकर या किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, इस सब के बारे में भी आपको इस कार्यक्रम में जानकारी मिलेगी। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है आज के हमारे दो रेडियो डॉक्टर से मैं कराना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विष्णु गुप्ता, आप CMO HCGHS हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर विष्णु आपका स्टूडियो में।
3: धन्यवाद मैम।
1: और हमारी दूसरी एक्सपर्ट दूसरी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर तनु जैन, आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
4: धन्यवाद मैडम, और सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत सारी हमारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो खासतौर पर इस बीमारी इस समय जो मौसम चल रहा होता है उस पर केंद्रित होती है, यानी बरसात में। और कई बार हम इसका आनंद लेते लेते ये भूल जाते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि सावधानियां भी बहुत जरूरी हैं जिससे ये बीमारी हमें हो ना जाए या ये संक्रमण हमें हो ना जाए। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं हर रेडियो डॉक्टर में अपनी समस्याओं के साथ, आज भी इस कार्यक्रम में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपना भागीदारी शो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ खूबसूरत गीत भी सुनेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों का हमें इंतजार है। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करूं मैं डॉक्टर विष्णु आपसे जानना चाहूंगी कि जो हम ये विषय आज जो लेकर आए हैं इन्फेक्शन ड्यूरिंग मानसून सीजन, कौन से ऐसे इन्फेक्शन खास तौर पर इस मौसम में आप देखते हैं?
3: देखिये, जैसा कि आपने बताया कि बारिश का मौसम चारों तरफ खुशियां लेके आता है, हर कोई खुशी से भर जाता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों। स्पेशली जो किसान होते हैं उनके लिए ये जो बारिश का मौसम आता है वो एक नई उमंग और नई ऊर्जा लेके आता है। लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि जो बारिश का मौसम होता है इसमें क्या होता है कि जो एनवायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। दूसरा, बारिश के जो शॉर्ट स्पेल्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि घर के आसपास, घर के सराउंडिंग में जो छोटे गड्ढे या छोटी चीजें ऐसी जो पड़ी होती है, टायर पड़ा हुआ है, कोई गल्ला पड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीजें पड़ी हुई है, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है कि मच्छर बहुत पनपते हैं, और जब मच्छर पनपते हैं तो वो बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे जो बारिश का पानी होता है वो ओवरफ्लो होता है, नाली में जाके मिल जाता है, नालियां ओवरफ्लो होती हैं, कई बार सीवर का जो पानी होता है वो कई बार वाटर जो लाइन होती है उसके साथ कंटामिनेटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से दूषित पानी की वजह से भी बीमारियां होने लग जाती हैं। तो अगर हम मोटा मोटा इसको क्लासीफाई करें कि बारिश के मौसम में जो होने वाली बीमारियां हैं वो बेसिकली चार तरह की बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी होती है जो मच्छरों के काटने से होती है, इसमें मेनली जो होता है इस सीजन के अंदर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारियां काफी प्रोमिनेंटली देखी जाती है और ये एक पीक सीजन माना जाता है इन मौसमी बीमारियों के लिए। तो ये बेसिकली होती है आपके घर के आसपास जो पानी इकट्ठा होता है उसमें जो मच्छर पनपते हैं उसकी वजह से। जो दूसरी बीमारी होती है वो होता है दूषित पानी को पीने से या दूषित खाने को खाने से। तो इसमें मोस्टली जो बीमारी हम मानते हैं वो होता है टाइफाइड फीवर होता है, एक हेपेटाइटिस ए और ई जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं कई बार, और एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पहले कोलेरा वगैरह भी होता था लेकिन कोलेरा आजकल देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली टाइफाइड फीवर और जॉन्डिस इस तरह का, या फिर किसी से गैस्ट्रोएंटेराइटिस या लूज मोशन जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है। तो ये दो तो बेसिक बड़ी बीमारियां होती है। इसके अलावा जब भी वेदर चेंज होता है तो एक फ्लू लाइक बीमारियां होती है जिसको हम वायरल फीवर भी बोलते हैं, जिसमें आपके गले में खराश हो जाती है, आपके गले में खिचकिच होने लग जाती है। तो ये भी जब बदलता मौसम होता है स्पेशली बारिश के मौसम में ये भी देखने को मिलता है। चौथी जो बीमारी अगर मोटा क्लासिफिकेशन करें तो पेशेंट्स में कई बार कंजक्टिव प्रैक्टिस, जैसे आपके हाथ वगैरह गंदे होते हैं तो आप गंदे हाथ अपनी आंखों के आसपास लगाते हैं तो उससे आंखों के में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, लाल जिसको आंखें बोलते हैं, वो भी इस बारिश के मौसम में काफी देखने को मिलती है। और इसी में एक चीज और इंक्लूड करते हैं, कई बार फंगल इन्फेक्शन, जैसे आपने देखा है कि बारिश के अंदर जैसे हमने बात करी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आपके कपड़े जो होते हैं स्पेशली अंडर गारमेंट्स होते हैं वो कई बार हम बोलते हैं कि अच्छे से सूखे नहीं होते हैं, उन्हें हम पहन लेते हैं, तो हमारे जो ऐसी जगह होती है उन जगह पे लाल लाल दाने या फिर चट्टे जैसे बन जाते हैं जिसको हम दाद खाद खुजली कहते हैं। तो ये जो चार मोटी बीमारियां होती है, चार तरह की जो बीमारियां होती है, ये बारिश के मौसम में काफी देखने को मिलती है।
1: जी, बहुत सारी अपने इन्फेक्शन बीमारियां

0: में फंगल इन्फेक्शन भी, बैक्टीरियल भी और स्किन इन्फेक्शन वायरल भी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। तो जरूर हमारे श्रोता चाह रहे होंगे कि अपने जो प्रश्न है हम तक पहुंचाएं, तो उन्हें पहले बता दें कि आप अगर हमें कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तरु मैम हमारे साथ है। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि खासतौर पर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत बढ़ जाती है इस मौसम में। पहले तो ये कारण भी सर ने बताया क्योंकि पानी का जमाव होता है, ये हम सब जानते हैं, पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी खासतौर पर कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और इनके कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं कि अलग हैं।
1: जी, तो ये जो वेक्टर बॉर्न बीमारियां हैं, ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीन बीमारियां हैं जो पूरे ही कंट्री में, हर प्रदेश में और ड्यूटीज में प्रेजेंट है। लेकिन कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है, काला आजार है, जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है वो कुछ लिमिटेड स्टेट्स में है। और ये सारी ही बीमारियों के लक्षण जो शुरू होते हैं वो फीवर से शुरू होते हैं। तो बुखार एक कॉमन लक्षण है जो सारी ही बीमारियों का होता है। साथ ही साथ जो बारिश की आपने बात की, तो बारिश के साथ ह्यूमिडिटी तो एक फैक्टर है ही कि होती है, और पानी का जमाव भी एक फैक्टर होता है। लेकिन एक फैक्टर होता है जो घर के आसपास कूड़ा और गंदगी पड़ी हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो जैसे छोटे नारियल के खोल पड़े हैं या छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे पड़े हैं, उसमें जो पानी भर जाता है, स्पेशली जो एडीज मस्किटो होता है, जिसे हम टाइगर मस्किटो कहते हैं, जो डेंगू के लिए होता है, वो उसमें पनपता है। तो एक हफ्ते से ज्यादा साफ पानी अगर किसी भी जगह पर भरा रहे, जो आपके गमले हैं घर के अंदर, उसके अंदर ट्रे होती है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, इन सबके अंदर ये जो पानी भरता है इस सीजन में, उसके अंदर हफ्ते भर तक अगर स्टैग्नेंट रहे, वाटर खड़ा रहे और उसको आप ड्रेन आउट ना करें, तो उसके अंदर ये इसके मच्छर के अंडे पनपते हैं और ये एडल्ट में बन जाते हैं। और ये मच्छर बहुत ही हार्डी एक मच्छर होता है। मैं बताना चाहूंगी कि इस मच्छर का एक बड़ा टिपिकल कैरेक्टर है कि डे बाइटर होता है, डेंगू खासकर डे बाइटर होता है, और ये दिन के टाइम काटता है। और इसकी प्रेफर्ड प्लेसेज हैं कि ये पैर पे काटेगा, ईयर लोब पे काटेगा, हाथ पे काटेगा, तो ये वाले सारे पार्ट्स होते हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिन भर आप इधर उधर बैठे हैं, कहीं पे स्टिल बैठे हैं, तो वो काटेगा। एक मच्छर लगभग 10 से 15 लोगों को भी बाइट कर सकता है, टू कम्प्लीट इट्स ब्लड मील जो उसका होता है, उसका जो जितना खून उसको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, एक मच्छर एक दिन में 10 से 15 लोगों को भी बाइट कर सकता है, और वो सभी को इन्फेक्शन दे सकता है अगर वो इन्फेक्टेड है।
0: ओके,
1: तो ये एक बहुत डेंजरस मच्छर होता है,
0: अगर घर में आ गया तो वो फिर जी सारे फैमिली मेंबर्स
1: जो, तो इसीलिए प्रिकॉशंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने घर के आसपास सफाई रखें। और एक और चीज होती है, ह्यूमिडिटी के साथ साथ उनकी लाइफ जो होती है वो लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाती है, तो ये एग से एडल्ट में जल्दी बन जाते हैं, तो मस्किटो का बहुत रैपिड प्रोलिफरेशन होता है।
0: जी, मैसेज हमारे पास एक आया है, सौरभ सिंह चौहान जी लिख रहे हैं लखनऊ से कि जैसे हम अचानक से छाता नहीं लेके निकले और अचानक बारिश हो गई, या घर से ऑफिस आई, ऑफिस से घर गए, ऐसे में भीग जाता हूं, तो क्या मुझे प्रिकॉशन लेनी चाहिए? अगर मैं भीग गया हूं तो क्या मुझे करना चाहिए अचानक हो गया ऐसा? तो
2: देखिये, भीगना कोई बीमारी नहीं है। बारिश में अगर कोई भीगता है तो ये नहीं कह सकते कि वो बीमार पड़ेगा ही। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी या आप कोई क्रॉनिक इलनेस है, आपको कोई पुरानी बीमारी है, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, अगर वो बारिश में भीगेगा और टाइमली अपने आप को सुखाएगा नहीं, तो उसको हो सकता है कि बारिश पकड़ ले, जो बीमारी है वो पकड़ ले। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप भीग गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई आसपास शेड मिल जाता है तो आप उस शेड के नीचे जा सकते हैं। घर जाके अपने कपड़े चेंज कीजिए, तुरंत कपड़े चेंज कीजिए, मोटे कपड़े से, मोटे तौलिए से अपने पूरे शरीर को सुखा लीजिए, फिर थोड़ा सा एक गर्म चाय या गर्म सूप या कुछ ऐसी गर्माहट वाली चीज ले लीजिए, तो फिर उसके बाद में आपको इस तरह से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे, फिर भी उसके बावजूद भी लगे कि आपको बुखार आ रहा है या आपके गले में कुछ खराश कुछ ऐसी चीज हो रही है, तो आप किसी डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं।
1: हाँ, लेकिन ये पक्का है कि वो बारिश के भीगने से नहीं, पानी के भीगने से नहीं, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो कॉमन होता है उस सीजन में, तो हो सकता है आपको वायरल हो और आप भीगने से उसको एसोसिएट करें, तो ऐसा
0: नहीं है। पर वो जैसे डॉक्टर साहब का ने कहा, थोड़ी गर्माहट लानी चाहिए और गीले को बहुत देर तक गीले नहीं होना चाहिए।
2: आपके जो गीले कपड़े हैं वो जैसे आपको जगह मिलती है, मौका मिलता है, आप उनको चेंज करिए।
0: हमारे इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, वहीं से बात करते हैं। हेलो
3: जी, नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार,
3: सिटी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी पूछिए, क्या पूछना है गौतम साहब?
3: मेरा पूछना था कि वायरल फीवर के क्या लक्षण हैं और बुखार से इसका क्या अंतर है और ट्रीटमेंट क्या है, कृपया विस्तार से बताइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। डॉक्टर साहब बताएं, डॉक्टर विष्णु, वायरल फीवर का आपने जिक्र भी किया था कि इस मौसम में बहुत होता है, तो क्या डिफरेंस है नॉर्मल फीवर से और

0: किस तरह से उपचार किया जाता है?
1: देखिए, वायरल फीवर अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम इनको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो वायरल फीवर जो फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ आता है, जिसमें आपको हल्का सा फीवर आएगा, वो फीवर काफी तेज नहीं होगा, आपके गले में खराश होगी, हल्की सी ठंड लगेगी आपको। और जो दूसरा वायरल फीवर हम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर डेंगू और आपका चिकनगुनिया आता है, ये भी बेसिकली है तो वायरस डिजीज ही, क्योंकि डेंगू वायरस होता है और चिकनगुनिया वायरस होता है। तो इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो सिंपल वायरल फीवर जो होगा उसमें कभी भी आपको तेज बुखार नहीं आएगा, और उसके साथ कोई एसोसिएटेड फीचर होगा, जैसे आपको ठंड लगेगी, आपके थोड़े से आपको कोराइजा होगा, नाक बहेगी आपकी, आपके गले में इरिटेशन होगा, इस तरह के सिम्टम्स होंगे, तो वो जनरली वायरल फीवर होता है। और ये यूजुअली क्या है, दो तीन दिन तक आप सिंपल अगर फीवर हो रहा है तो पैरासिटामोल लेंगे, गर्म चीजों का सेवन करेंगे, जैसे गर्म चाय ले ली, गर्म कॉफी ले ली, गर्म सूप ले लिया, इस तरह की चीजें खाएंगे तो दो तीन दिन में ये सेटल डाउन यूजुअली हो जाता है। इसका दूसरा स्पेक्ट्रम जो है, अगर हम वायरल फीवर दूसरे की बात करें, तो एक डेंगू और एक होता है आपका चिकनगुनिया। तो डेंगू और चिकनगुनिया के अंदर जो बेसिक फीचर डिफरेंस होता है, डेंगू फीवर में आपको जो फीवर होता है वो तेज, काफी तेज फीवर आता है आपकी आंखों के पीछे। जैसे आप अपनी आंखों को घुमाएंगे, अगर आप आंखें बंद करके अपनी आंखों के पुतलियों को घुमाएंगे तो आपकी आंखों के पीछे आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा, इसलिए एक इसका काफी टिपिकल फीचर होता है। हल्की सी रैश आपके शरीर पर आपको देखने को मिलेगी तीसरे चौथे दिन, रैश आपको चिकनगुनिया में भी देखने को मिलती है, लेकिन वो उसमें अर्ली रैश होती है। दूसरा जो फीचर जो डिफरेंशिएट हम करते हैं, जो चिकनगुनिया फीवर होता है उसमें आपके जॉइंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे किसी जगह पे बैठ गए और आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, आप उठ के जा रहे हैं तो आप ऐसा लग रहा है जैसे ओल्ड एज में कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी कमर झुक जाती है, हाथ झुक जाते हैं, तो वो अपनी कमर को सीधी नहीं कर पाते,
0: जॉइंट्स
1: जो स्टिफनेस होती है वो चिकनगुनिया में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। फीवर उसमें भी आता है लेकिन उतना तेज नहीं आता जितना आपको डेंगू में आता है। डेंगू में उसके अपोजिट क्या होता है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होता है, उसमें बोन्स और मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, मतलब आपकी बोन्स ऐसे लगेगी जैसे आपको किसी ने कंबल में लपेट के पीटा हो, तो आपको पूरा बदन टूटेगा लेकिन आपके जॉइंट्स इतने स्टिफ नहीं होंगे, और फीवर आपको देखने को मिलेगा, आपकी आंखों के पीछे दर्द होगा और थोड़ी सी रैश देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक आपका डिफरेंस है डेंगू और चिकनगुनिया फीवर के अंदर।
0: जी, हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो
2: हेलो
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, आपका नाम बताइए।
2: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करम दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को शालिंदा से ही नमस्कार।
0: जी नमस्कार, स्वागत।
2: और दोनों डॉक्टर साहिबान को भी दिल्ली से नमस्कार और आभार।
0: नमस्कार।
2: मेरे दो सवाल है। एक मिठा है और एक सवाल है। पहले मैं सवाल पे आता हूँ। वैसे तो मुझे जो है ना श्वसन एलर्जी है और स्किन से मुतालिक भी एलर्जी है, तो जब भी कोई टेस्ट होती है घर में तो मैं छींक आने शुरू हो जाती है, तो सांस लेने में परेशानी होती है, और जब घर की सफाइयां करता हूँ मैं तो मेरे को खुजली शुरू हो जाती है शरीर में। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इसके लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक गंगोत्री का पानी और वर्षा का पानी, ये दो पानी सबसे शुद्ध पानी माने जाते हैं यह कहा जाता है, तो क्या इसको इस्तेमाल करने के बाद हमें कॉर्पोरेशन के पानी से भी नहाना चाहिए? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा मित्र यह है कि जब हम लोग नहाते हैं और उसके बाद हम कपड़े भी धोते हैं, तो मैंने तरीका बताया है कि मैं जब नहाता हूँ और उसके बाद अपनी शरीर की सफाई और कपड़ों की सफाई की, और फिर उन्हीं कपड़ों को मैं पहन लेता हूँ और पंखे के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, 15 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम, मुझे इसमें रिलीफ मिल रहा है, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: चलिए धन्यवाद। प्रश्न थोड़े अलग से प्रश्न है डॉक्टर साहब, बताएं क्या कहना चाहते हैं।
1: देखिए, आपका जो मिथ है पहले मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि आप जब नहाते हैं उसी के साथ कपड़े धोते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई बुराई नहीं है अगर कोई नहाते वक्त कपड़े धोता है। तो जो गलती आप जो करते हैं वो ये है कि आप जैसे ही कपड़े धोते हैं उनको सुखाने के बजाय उनको पहन के पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। वो इसलिए कि जैसे कि हमने अभी बात करी कि बारिश के सीजन के अंदर अगर आप गीले कपड़े पहनेंगे तो वो कुछ ऐसी जगह होती है हमारे बॉडी के अंदर जहां पे वो पानी इकट्ठा हो जाता है, और वो पसीने के रूप में या फिर आप ये कहें कि वो नमी के रूप में फंगल इन्फेक्शन को इनिशिएट कर सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप गीले कपड़े पहन के पंखे के नीचे खड़े हो जाएं। दूसरा, जैसे कि हमसे किसी श्रोता ने भी पूछा था कि मैं बारिश में भीग जाता हूं, तो हमने उसे सजेस्ट किया था कि कभी भी आप बारिश में भीगते हैं तो घर आके सबसे पहले अपने गीले कपड़े चेंज कर लीजिए और अपने बदन को एक सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए और कुछ गर्माहट वाली चीज लीजिए।

0: अगर बारिश के मौसम में अगर आप गीले कपड़े पहनेंगे और पंखे के नीचे खड़े रहेंगे तो नेचुरल है कि आपको कोई बीमारी पकड़ भी सकती है और आपको फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना भी रह सकती है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बात कर रहे थे इस गाने से पहले कि कुछ वेक्टरबोर्न डिजीजेस होती हैं और वायरल के बारे में आपने बताया था। मैं जानना चाह रही थी डॉक्टर तनु आपसे कि मलेरिया भी बहुत फैलता है लेकिन उसका जिक्र अभी तक हमने नहीं किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: जी तो मलेरिया जो है उसका बुखार थोड़ा सा फर्क होता है और उसमें एक हॉट फेज होता है जहां पे काफी हाई ग्रेड फीवर आता है और उसको चिल्स के साथ आता है, काफी तेज ठंड लगती है और फिर फीवर आता है और फिर प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। तो ये एक टिपिकल सिस्टम होता है कि पहले आपको बहुत तेज ठंड लगेगी। तो वो ठंड बहुत तेज का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कंबल पहन लें या हल्का चादर डाल लें, आप कंबल एक दो तीन कंबल इस मौसम में भी अगर डालेंगे तो आप कहोगे जी मुझे ठंड लग रही है अभी भी। तो वो चिल्स कहते हैं हम उसको, वो बहुत कस के चिल्स आती है और फिर बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है और उसके बाद आप सारे कंबल उतार दोगे आप, क्योंकि आपको पसीना स्वेटिंग आके वो उतरता है बुखार। तो ये एक टिपिकल सिस्टम होता है, इसमें भी थोड़ा हेडेक ज्यादा होता है, मसल पेन ज्यादा होता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है और यूजुअली ये सिम्टम्स जब होते हैं तो हम मलेरिया सस्पेक्ट करते हैं। ये मच्छर के काटने के 7 से 10 या 15 दिन बाद इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और अगेन इसका मच्छर जो है उसको एनोफिलीज मस्किटो कहते हैं और ये पनपता है जो आपका गंदा पानी है ठहरा हुआ, जैसे नाले हो गए, ड्रेन्स हो गए या सॉलिड जो आपके घर के आसपास गंदगी पड़ी है उसके अंदर पानी बहुत दिन से पड़ा हुआ है और ठहरा हुआ पानी है, तो ये मच्छर भी वहां पे पनपता है। और ये मच्छर यूजुअली शाम के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में काटता है। खास करके इसके प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको रात में सोते वक्त मच्छरदानी के अंदर सोना है, ये बहुत जरूरी है और ये आदत है जो सारे लोगों को लगा लेनी चाहिए अपने घरों में मच्छरदानी। दूसरा जो है शाम होते होते अगर आप लोग के घरों में जाली वाली खिड़कियां हैं तो उनको जरूर बंद कर दें और मच्छर ताकि अंदर ना आ पाए। और अगर नहीं है तो हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अपने घर में जाली की खिड़की दरवाजे जरूर रखें जिनको कि शाम होते ही बंद कर दें जिससे कि मच्छर अंदर ना आए। और इस वाले सीजन में अगर हो सके तो दोपहर में भी जब आप सोएं तो मच्छरदानी के अंदर सोएं क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। खास करके प्रिकॉशंस लेने हैं कि जो एल्डरली हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं उनको जरूर मच्छरदानी में सुलाएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करें और मच्छरदानी के अंदर सुलाएं क्योंकि इस तरह की बीमारियां जब गर्भवती महिला में होती है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। तो सब लोग प्रिकॉशंस लें, एक तो सफाई रखें, किसी भी तरह का जल भराव आसपास ना होने दें, दूसरा जो है पूरी बांह के और पूरे कपड़े पहने और मच्छरदानी के अंदर सोएं और जब भी आपके यहाँ स्वास्थ्यकर्मी आए कोई स्प्रे करने या घर के अंदर या घर के बाहर तो उनका पूरा सहयोग करें। ये सब चीजें करेंगे तो फिर ये इस तरह की बीमारियों से हम
1: खासतौर पर हम प्रिकॉशंस पर आज बार बार बात करेंगे कार्यक्रम के थ्रू आउट क्योंकि जैसा मैम ने भी कहा कि ये प्रिवेंटेबल है, प्रिकॉशंस ली जाए अगर सही तरीके से हम ध्यान रखें तो ये नहीं होंगी बीमारियां। और ये मैसेज आया है अनूप कुमार जी का रांची से कि प्लीज टेल अबाउट स्प्रिंग एलर्जी एंड क्योर। तो डॉक्टर विष्णु, स्प्रिंग एलर्जी किस मौसम में होती है?
0: देखिए स्प्रिंग एलर्जी जो है ये सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, इसको हम हे फीवर भी बोलते हैं, इसका नाम है और ये मोस्टली होती है जैसे आपकी सर्दी जाने लगती है और उसके बाद जो स्प्रिंग सीजन आता है उसमें ये होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि सर्दियां जाती हैं तो पेड़ पौधे हैं वो खिलते हैं, उनमें फूल निकलते हैं थोड़े से और घास है वो एक नई करवट लेती है, पत्ते शेड होते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि हवा में पोलन ग्रेन्स फैल जाते हैं, छोटे छोटे कण आपने देखे होंगे, जैसे ही सर्दियां जाती है और फरवरी और मार्च की स्टार्टिंग में हवा में छोटे छोटे छोटे छोटे कण तैर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम होती है उसे जो स्प्रिंग एलर्जी बोलते हैं वो होती है और उसका कारण
1: रेस्पिरेटरी
0: इलनेस है। और वो आपको केवल रेस्पिरेटरी नहीं, जैसे आपकी आंखों में आ गए तो आपकी आंखों के अंदर कंजक्टिवाइटिस है, आपकी आंखों में पानी आने लगेगा, नाक में चले गए तो लगातार छींके आने लगेगी, आपकी स्किन में जैसे किसी किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो आपकी स्किन पे अगर वो कण बैठ गए तो उस जगह पे आपको खुजली होने लगेगी। तो ये सिम्टम्स डिपेंड करता है कि वो जो एलर्जन है वो कहां पे जाके लैंड किया है।
1: अच्छा, तो ये खास तौर पर लेकिन आपने बोला सर्दी और मौसम बदलाव
0: और बारिश के मौसम में तो हे फीवर या स्प्रिंग एलर्जी चली जाती है क्योंकि बारिश की बूंदों की वजह से जो कण होते हैं ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे पोल्यूशन चला जाता है पूरी बारिश के मौसम में, वैसे ही हे फीवर कम देखने को मिलता है,
1: मतलब जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो गए। सागर मखीजा जी हमसे पूछ रहे हैं विजयपुरा कर्नाटका से कि मेनी पीपल आर फेसिंग फ्लू लाइक इश्यूज ड्यूरिंग मॉनसून, हाउ इट कैन बी डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड, इन मेनी स्टेट्स कोविड इज ऑल्सो ऑन राइज। और एक क्वेश्चन और है कि व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक सो दैट वी डोंट गेट एनी इन्फेक्शन ड्यूरिंग मॉनसून। तो हमने अभी तक यही सारी बातें की हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं सागर जी तो आपने सुन लिया होगा।

0: अलावा भी आप कुछ जोड़ना चाहें आप लोग तो बताएं। वैसे तो ये बात हम अभी कर ही रहे थे।
1: फ्लू सीजन हर मौसम में, जब भी मौसम बदलेगा फ्लू सीजन आएगा, तो कोविड भी एक तरह का फ्लू ही था, तो उसमें भी हमने कोविड पे जो विजय प्राप्त की थी वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों से प्राप्त की थी, या तो मास्क से और सोशल डिस्टेंसिंग पे। तो अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, आपको या आपके परिवार में या आपके किसी दोस्त को, तो उसको बोलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे और मास्क पहने। अगर आपको फीवर 3 दिन से ज्यादा है और ये चीज आपको वरीसम कर रही है तो नियर बाय डॉक्टर से जरूर मिले।
2: जी, मास्क के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी, जो सर ने बहुत अच्छी बात बताई, मास्क पहने। तो बाहर अगर आप कुछ और कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पे लोग अपने आप मास्क पहनना शुरू कर देते हैं, उनको कोई बताता नहीं है। तो जब फीवर खांसी जुकाम है तो टू अवॉइड कि दूसरे लोगों के तक पहुंचे तो मास्क पहने। और एक चीज जो प्रिवेंशन के लिए यहां पर बताना चाहूंगी कि हाथ धोना समय समय पे, चाहे वो रेस्पिरेटरी इलनेस हो, चाहे कंजंक्टिवाइटिस हो जो आंखों में हो जाती है, चाहे आपकी फूड बॉर्न इलनेस हो, वाटर बॉर्न हो, जो ये सब फैलती हैं बीमारियां, अगर सब लोग हाथ धोने का ध्यान रखेंगे कि प्रिकॉशंस लेंगे, और जो एक हमारा यूनिवर्सल हैंड वॉशिंग टेक्निक है कि कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथ को ठीक से धोएंगे साबुन से और साफ पानी से, तो बहुत हद तक इन सब बीमारियां जो एयरबॉर्न है, जो आपकी वायरल इन्फेक्शन है, उससे हम छुट्टी पा सकते हैं।
0: जी, ये बहुत जरूरी बात है ध्यान रखना कि सफाई पे भी बहुत जोर है। और एक ये मैसेज हमारे पास आया है, श्याम मित्तल जी लिख रहे हैं रोहिणी से कि हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग वैक्सीन एंड वेन इट हैज टू बी टेकन। और धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है। करंट इश्यूज और जो खास तौर पर जो मौसमी बीमारियां उस पर जो हम कार्यक्रम लेते हैं उसकी ये तारीफ कर रहे हैं। तो धन्यवाद श्याम जी, आप इस तरह से जुड़े हुए हैं कार्यक्रम के साथ। क्या कुछ वैक्सीन से इनको बचाया जा सकता है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, अगर हम मौसमी बीमारियों की बात कर रहे हैं बारिश से रिलेटेड, तो इसमें जो परमानेंट बीमारी है वो टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर के लिए इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। पहले कॉन्जुकेट पॉलीसेक्राइड वैक्सीन हम लगाते थे जो 2 साल से बड़े बच्चों को लगती थी, लेकिन अब कुछ टाइम पहले एक नई वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस हुई है, उसकी सिंगल डोज ही लगती है, जो टीवीसी टाइफीवार वैक्सीन जिसे हम बोलते हैं, उसकी सिंगल डोज लगती है और 6 महीने से लेके आप 45 साल तक के किसी भी उम्र के व्यक्ति को लगा सकते हैं और ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है इससे।
0: अच्छा,
1: टाइफाइड के लिए
0: जी।
1: पहले 3 तरह की वैक्सीन और भी होती थी, एक ओरल वैक्सीन भी आती थी टाइफाइड के लिए, लेकिन वो अब ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि जब से नई वैक्सीन आई है, और दूसरा क्या है कि उसकी सिंगल डोज लगती है तो इसलिए वो पॉपुलर ज्यादा है। हालांकि अभी हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वो इंक्लूड नहीं हुई है, पर ये प्राइवेटली काफी अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर और आप इसे लगा सकते हैं। अगर स्पेशली आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपके घर के अंदर इस तरह की बीमारियां बार बार देखने को मिलती हैं,
0: तो आप रिकमेंड करते हैं कि इस तरह की लगा लेनी चाहिए, पर उसको 45 इयर्स तक को ही क्यों आपने माना है?
1: उसका इम्यूनिटी डेवलप होने लग जाती है,
0: उसके बाद लगाने से फायदा नहीं है।
1: नंबर कोई मतलब मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं वो आपके अवॉइड हो चुके होते हैं।
0: ओके, तो मैक्सिमम जो उसका फायदा है वो 45 इयर्स तक ही होता है। एक मैसेज आया है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, पर जो हम वैक्सीन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, टाइफाइड की वैक्सीन के बारे में आपने जो बात की थी उससे रिलेटेड ये मेरे पास प्रश्न है। इन्होंने लिखा है कि मैं 46 इयर्स की फीमेल हूं और मुझे टाइफाइड जब हुआ था फर्स्ट टाइम तो मैं 43 इयर्स की थी और आज मुझे और 45 इयर्स पे मुझे दोबारा हुआ, यानी 2 साल बाद इनको दोबारा हुआ और दोनों बार डॉक्टर ने इनको किया कि आप वैक्सीन लगाएं। ही ऑल्सो आस्क टू टेक अ 19-डे इंजेक्शन कोर्स। शुड आई टेक वैक्सीन एंड एनी सच इंजेक्शन, इफ नो देन हाउ टू प्रिवेंट फ्यूचर रीअकरेंस, ये उन्हें जानना चाहें।
1: देखिए, 45 साल जो हमने उम्र बताया था ना, वो कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि मतलब 45 से अगर आप ऊपर हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगती, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। 45 के ऊपर भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर यूजुअली क्या होता है कि 45 के बाद में इम्यून रेस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जब हम किसी को वैक्सीन लगाते हैं तो हमारा मोटिव यह होता है कि उस इन्फेक्टिव पॉजिटिव एजेंट जो होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक स्ट्रांग इम्यून रेस्पॉन्स शो करे। तो 45 के बाद में क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन होती है तो उसका इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है। पर लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको रिकरेंट टाइफाइड फीवर हो रहा है, टाइफाइड डायग्नोज हो रहा है, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है।
0: अच्छा,
1: तो लगवा। और ये जो 19 इंजेक्शंस, आई डोंट थिंक सो कि या तो ऐसा होगा कि ये मलेरिया अभी टाइफाइड से पीड़ित होंगी तो उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो टाइफाइड के इंजेक्शन जो होते हैं, टाइफाइड के लिए जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं उसको यूज करने के लिए वो बोल रहे होंगे, पर वैक्सीन 19 डेज तक नहीं लगती कभी भी।
0: जी जी, वैक्सीन वही है जो आपने अभी विस्तार से बताया,
1: वो 45 के बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो रेस्पॉन्स होता है थोड़ा पुअर होता है।

0: इसलिए उसको डिस्करेज करते हैं, अदरवाइज किसी में इंडिकेटेड है तो उसको लगा सकते हैं।
1: तो जैसे इनको बार बार हो रहा है टाइफाइड, तो क्या रीजन है कि किसी को वही बीमारी बार बार होती है? क्या इम्यूनिटी लो होती है या कोई उनके प्रिवेंशन की जो है सही तरीके से ये सावधानियां नहीं ले रही है?
0: पीछे मैं आपको एक बताता हूँ, टाइफाइड मैरी करके कंसेप्ट फेमस है पूरे वर्ल्ड में। एक टाइफाइड मैरी टर्म हम यूज करते हैं मेडिकल लिटरेचर में। बेसिकली मैरी एक फीमेल का नाम था, जो मुझे जितना याद है कि न्यूयॉर्क में एक हाउसमेड थी, तो उसको कभी भी टाइफाइड नहीं होता था। और उस वो जिस जिस घर में भी खाना बनाती थी ना, उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को टाइफाइड हो जाता था। तो जब उसके बारे में स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि वो जो लेडी थी, जो हाउसमेड थी, वो टाइफाइड कैरियर थी। तो उस टाइफाइड कैरियर से क्या होता था कि उसके थ्रू टाइफाइड पूरे फैमिली में फैल जाता था। तो हो सकता है कि ये टाइफाइड कैरियर हो, और जब भी इनकी इम्यूनिटी डाउन होती है तो वो टाइफाइड इनके बॉडी में अपीयर हो जाता है। तो हो सकता है कि ये टाइफाइड कैरियर हो।
1: तो जो कैरियर होते हैं थ्रू आउट रहते हैं जिंदगी भर
0: कैरियर। यूजली क्या होता है कि जो टाइफाइड का कैरियर होता है गॉल ब्लैडर में जाके बैठता है। तो इनका स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, इस तरह का कल्चर हम करा के देखते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो पहले उसको ट्रीट करते हैं। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई कैरियर होता है तो उसको गॉल ब्लैडर सर्जरी कराने की भी एडवाइस करते हैं।
1: ओके, ये सारी चीजें भी ये टेस्ट करा सकते हैं। हाँ, और हो सकता है इस तरह की कोई बात हो आपके साथ। एक और दिमाग में प्रश्न आ रहा है डॉक्टर तनु, कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत वेदर हम देख रहे हैं कि शिफ्टिंग भी हो रही है, सर्दी गर्मी बारिश, तो क्या इसका भी असर होता है?
2: जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली अगर हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की बात करें तो, क्योंकि मच्छर का एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से रिश्ता होता है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में लाइक 20 से 25 या 30 डिग्री तक, या ह्यूमिडिटी लेवल आपका 60-70% के करीब है, उसमें ये मच्छर की जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी हो जाती है और ये जल्दी जल्दी पनपना शुरू करते हैं। तो अब हाल में देखने में ये आया है कि जो बहुत हमारे ठंडे रीजन हैं वहां पे भी हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा है या ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी है, तो वहां पे भी ये बीमारियां होने लगी हैं। जैसे उत्तराखंड का एरिया ले लीजिए, तो ये शिमला का ऐसे हिमाचल का एरिया ले लीजिए, या कुछ नॉर्थ ईस्ट का एरिया ले लीजिए, जहां पे कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी बट होने लगी हैं जहां पे ठंडा टेम्परेचर। दूसरा, इस साल के लिए मैं खास करके बताना चाहूंगी, जैसे कि 2023-24 में भी एक ग्लोबल वार्निंग आई थी कि एल नीनो आएगा। आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि एल नीनो इस साल भी प्रक्रिया काफी स्ट्रांग एल नीनो का इफेक्ट आएगा। उसमें क्या होता है, यूजुअली जो साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया की तरफ का रीजन है, यहां पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, बारिश थोड़ी कम होती है, तो बारिश थोड़ी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, मानसून डेफिसिट होता है, तो छोटी छोटी जगहों पर पानी भरने लगता है। क्योंकि जैसे अगर पानी बहता हुआ है तो उसका लार्वा तो नहीं पनप पाएगा, लेकिन ठहर गया है पानी तो लार्वा पनपने का टाइम मिल जाता है। दूसरा, पानी की जहां जहां पे कमी होती है या सप्लाई में थोड़ा इश्यू आता है, वहां पे लोग स्टोर करते हैं वाटर को, और जब स्टोर करते हैं वाटर को और उसे ढक के प्रॉपरली नहीं रखते हैं, उसके अंदर भी ब्रीडिंग देखी जाती है कि मच्छर ब्रीड करने लगते हैं। और क्योंकि वो पानी तो जरूरी है, आपको रखना है, तो इस सीजन में ये बहुत जरूरी है कि स्टोर करके अगर पानी कोई रख रहा है तो उसको ढक के रखें, चाहे वो पीने के लिए हो चाहे नहाने के लिए हो। अगर स्टोर करने का पानी है तो उसे ढक के रखें, नहीं है तो उसमें एक दवाई आती है वो भी डाली जा सकती है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप उसको ढक के रखें और अपने आसपास कहीं भी देखें पानी इकट्ठा है तो उसको स्क्रब करके। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो लार्वा होता है ना, आप पानी हटा देते हैं, जैसे आपने सपोजिंग बर्ड फीड है, कुछ लोग चिड़ियों को करने के लिए रखते हैं एक ट्रे, पानी निकाल देते हैं फिर सीधा कर देते हैं। अब उसके अंदर जब पानी भरेगा तो अगर उसके अंदर एग चिपका हुआ रह गया वो फिर से मस्किटो बन जाएगा। तो जिसको कहते हैं स्क्रब ड्राई, कस कस के ड्राई करना है और उल्टा करके रखना है ताकि उसके अंदर दोबारा पानी ना भरे। तो ये प्रक्रिया आप लोग अपने घर में, और अगर हफ्ता में एक बार आप एक ड्राइंग डे करके मनाए और एक घंटा या दो घंटा अपना टाइम दें अपने घर और अपने घर के आसपास, देख लें कि कहीं पानी तो जमा नहीं है, और खास के ऊपर पानी की टंकियां जो आपकी हैं, कई बार बंदर आता है उसकी लिड खोल जाता है, कई महीनों हम भूल जाते हैं जाना, वहां पे बहुत ब्रीडिंग मिलती है। तो वो सब चीजें
1: टैंक्स की सफाई,
2: जी टैंक्स की सफाई, लेकिन वो स्क्रब ड्राई करना है, और अगर बड़े टैंक्स हैं तो उसके ऊपर जाली से ढक के रखना है ताकि मच्छर ब्रीड ना करें, और कर जाए तो एटलीस्ट बाहर आके किसी को बाइट ना कर सके।
1: तो बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम में हमें जानी, और अब समय इतना ही है कि मैं धन्यवाद दूं अपने सभी साथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, हमारे साथ जुड़े, और हमारे गेस्ट का जिन्होंने समय निकालकर यहां आए हैं, इतनी ढेर सारी जानकारी आप सब तक पहुंचाई है। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे डॉक्टर विष्णु गुप्ता, आप सीएमओ एट सीजीएचएस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में, डॉक्टर तनु जैन आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नई दिल्ली में, और विषय रहा हमारा इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार,
2: आप यहां बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद,
1: और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। ब्रिक्स मुल्कों के आदाद और शुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए। जापान और अमरीका ने जापानी करेंसी येन के कद्र को गुज़श्ता 40 साल की कमतरीन सतह पर गिरने से रोकने के लिए येन की खरीदारी के लिए एक गैर मामूली और मरबूत इकदाम करने की तस्दीक की है। और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुश्तरक खेलों की मेजबानी के हुकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के आदाद व शुमार के कौमी दफातर एनएसओ के सरबराहान का इजलास आज से कल तक लखनऊ में भारत की सदारत में मुनाकिद होगा। भारत के ब्रिक्स सदारत मरकजी मौजू इस्तेहकाम इख्तिरा तआवुन और पायदारी की तश्कील से इबारत है। ब्रिक्स के आदाद व शुमार के शोबे में भारत ने मेयारी आदाद व शुमार तब्दीली का मुहर्रिक का मौजू इख्तियार किया है, जो आदाद व शुमार के आला मेयार इख्तिरा मालूमात की मौसर तरसील और आवाम पर मरकूज शुमारियाती निजाम के लिए भारत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। इस इजलास का मकसद ब्रिक्स के क्लीदी आदाद व शुमार को मजीद मजबूत बनाना, कौमी शुमारियाती निजाम में इख्तिरा और इस्लाहात को फरोग देना, आदाद व शुमार की इशात और आदाद व शुमार तक रसाई को बेहतर बनाना, निज माशी और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक आदाद व शुमार को मजीद मुस्तहकम करना है। इसका मकसद आदाद व शुमार से मुतालिक मालूमात की इशात, शुमारियाती निजाम में इख्तिरा, निज मालूमात और बेहतरीन तरीकेकार के तबादले के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत करना भी है। इजलास के साथ दो निस्फ रोजा जिमनी प्रोग्राम भी मुनाकिद किए जाएंगे, जिनमें इंतजामी आदाद व शुमार की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा और तरक्की पजीर डेटा एको निजाम में मस्नूई जहानत एआई के लिए तैयारी जैसे मौजूद पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल वसीले से आगाज किया। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत बनने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है कि मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पुरएतमाद होना चाहिए और नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए। नशीले मादों की रोकथाम से मुतालिक सौ हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम के खाके का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने तफसील से बताया कि आने वाले हर इतवार को फन, सकाफत, खेल और ध्यान पर मबनी मखसूस सरगर्मियां मुनाकिद की जाएंगी ताकि नए शुरका की मुसलसल दिलचस्पी बरकरार रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते रहें। उन्होंने कहा कि आइंदा सौ इतवार नशे से पूरी तरह पाक भारत के संत में मुकम्मल तौर पर 100 मजबूत कदम बन जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसी करने वाले ममालिक के जरिए ईरान के साथ आज मुजाकरात होने वाले हैं। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने तस्दीक की कि दोनों ममालिक के दरमियान राबते और बातचीत के जराये सरगर्म हैं। सदर ट्रंप ने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में उन्होंने इस बड़े हमले को रोकने का फैसला किया जो पहले मनसूबाबंदी का हिस्सा था। उन्होंने मजीद कहा कि अबरा हुरमुज के इंतजाम इंसराम के हवाले से एक मुआहिदा तय पाने का इम्कान है, जबकि ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी एक मफाहमत तक पहुंचने की तवक्को है। इसराइली मीडिया की खबरों के मुताबिक खित्ते की सालिसी करने वाले ममालिक गुज़श्ता माह दस्तखत किए गए मफाहमतनामे को दोबारा फ़ाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस अहम समुद्री गुजरगाह को 60 दिन तक बगैर किसी फीस के खुला रखा जा सके।

0: ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इशारा दिया है कि ईरान और उम्मान के दरमियान इस समंदरी राहदारी के इंतजाम के लिए मुश्तरका तरीके कार से मुतालिक मुजाकरात अपने आखिरी मरहले में हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कल पुरअमन रैली के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हुए खुदकुश हमले में सिक्योरिटी के 5 अहलकार समेत कम अज कम 14 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। खुदकुश बम धमाके का वाकया उस वक्त पेश आया जब स्वात पुरअमन रैली स्वात जिले में कवाल कस्बे के पुलिस स्टेशन से गुजर रही थी। किसी ग्रुप या फर्द ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जापान और अमेरिका ने जापानी करेंसी एन की कदर को गुज़श्ता 40 साल की कमतरीन सतह पर गिरने से रोकने के लिए येन की खरीदारी के लिए गैर मामूली और मरबूत इकदाम करने की तस्दीक की है। जापान ने इंडिया दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस सिलसिले में मजीद इकदाम करेगा। जापान के वजीर खजाना ने कहा है कि वजारत ने पिछले हफ्ते अमरीका के महकमे खजाना के इश्तराक से जापानी येन खरीदा था। वजीर खजाना सदुस्की ने आज मुश्तरका इकदाम की तस्दीक करते हुए आज बयान जारी किया है। जापानी वजारत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए उस बयान के बाद मुश्तरका इकदाम की तस्दीक की जिसमें वाशिंगटन दोस्ती की खातिर जापानी करेंसी येन को सहारा देने और आलमी मईशत में तआवुन करने में मदद कर रहा है। इम्कान है कि रवा माली साल की पहली सेमाही में भारत की मईशत तकरीबन 7% की शरह से तरक्की करेगी जो साबका तखमीनों से ज्यादा होगी। भारत की मईशत की यह शरह तरक्की मजबूत माशी इशारियों सनअत से मुतालिक बेहतर कारकर्दगी और बरामदात में बहाली के सबब होगी। पिछले हफ्ते के रोज जारी SBI की रिसर्च प्री मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की का तखमीना RBI के साबका तखमीनों में बेहतरी का नतीजा है जो कि जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से कम थी। अमरीका में भारत के सफीर रेने मोहन क्वात्रा ने जोर देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान बाहमी मामलात पर भारत के साथ तआवुन चाहता है तो उसे सबसे पहले दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने हाल ही में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस तलब की थी जिसमें उसने सिंध आबी मुआहिदे को तातुल रखने के भारत के फैसले पर एहतजाज किया था। एक न्यूज मैगजीन में शाये होने वाले एक आर्टिकल में जनाब क्वात्रा ने सिंध आबी मुआहिदे पर पाकिस्तान की मांग पूरा न होने की सूरत में भारत के खिलाफ जंग की धमकी देने पर पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा की नुक्ताचीनी की थी। भारतीय मौसमियात महकमा IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश बिहार ज़ेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अंडमान निकोबार जजायर ओडिशा छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर लद्दाख और झारखंड में भी कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मास्को में मुनक्किदा दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक्किद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की उल्टी गिनती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फलसफे जदीद फनून और अपनी शानदार सकाफती रिवायात का हसीन इम्तिजाज पेश करते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अहमदाबाद आने की पुरजोश दावत दी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफादर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए। जापान और अमरीका ने जापानी करेंसी येन की कदर को गुज़श्ता 40 साल की कमतरीन सतह पर गिरने से रोकने के लिए येन की खरीदारी के लिए गैर मामूली और मरबूत इकदाम करने की तस्दीक की है। और अहमदाबाद ने ग्लास्को में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। बेशक खिदमत है, प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

फिल्म का नगमा भी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शर्मीली फिल्म से।

देखे, आओ चलो कहीं छुप जाए।

सुहाना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये नगमा आपने सुना फिल्म थी जब से तुम्हें देखा है। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में है, फिल्म है बहू बेगम।

0: उम्मीद होगानों का ये प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है हिंद की दौलत। तहरीर है महमूद हाशमी की और रावी हैं अब्दुल जब्बार।
1: हिंदुस्तान की धरती का एक प्रसंग ये भी है कि धरती सोना उगलती रही है।

नहीं था। यहाँ तक कि साधु लोग भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देश पूरा जरूर और साधु सामान इस्तेमाल करते थे और उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहे जब तक उन्हें मजहबी अहकाम के जरिए ऐसा न करने की बाकायदा ममानियत न कर दी गई। उस जमाने के खाने पीने की खास चीजों में चावल

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा था कसूर फिल्म से। इसके साथ ही आज का मेरी सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशीत कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास

0: भरपूर होना जरूरी है। और उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद प्रकाश तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। तिवारी सर, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: जैसा कि हमने सुना प्रधानमंत्री जी को, आज के एक नशा मुक्त अभियान उन्होंने शुरू किया है और ये एक बहुत बड़ा संदेश आज के युवाओं को, खास करके जेन जी को उन्होंने दिया है। कैसे देखते हैं इसे आप?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नशा मुक्त भारत का संकल्प लगातार दिया जाता रहा है, आज भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हम सभी लोग इस लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। वस्तुतः भारत के लिए सबसे बड़ा कार्य और कार्यक्रम यदि हम कहें तो नशा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को सजोना, जीना और पूरा करना है। तो वजह यह है कि अगर हमारा भारत नशा मुक्त नहीं होगा तो स्वस्थ नहीं होगा, और अगर स्वस्थ नहीं होगा तो ऐसे विकसित भारत को भी लेकर हम सभी भारतवासी क्या करेंगे। तो पूरे भारतवासी इस संकल्प को जिए और हम लोग चूंकि सरकार के कार्य को कर रहे हैं तो हम सभी लोग इसे पूरी तन्मयता से जन भागीदारी के साथ लगातार करें। मेरा तो यही विचार है और मेरा यही विश्वास है और हम लोग इसी के लिए कार्य भी कर रहे हैं।
0: तिवारी जी, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है और प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं के बारे में बताया है, खास करके अलग अलग हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी एक है कि 100 हफ्ते तक हर रविवार को सुबह में एक शॉर्ट टर्म अवेयरनेस ड्राइव जो पहले चलता था उससे हटकर ये एक हर हफ्ते एक सतत रूप से एक अभियान चलाया गया है, जहां पर कि युवाओं का आह्वान किया गया है कि वो कुछ न कुछ एक्टिविटी ऐसी करें जिससे कि उनका जो नशा के प्रति अगर किसी भी प्रकार का अगर उनका झुकाव हो रहा है तो उससे वो हट सके। इससे पहले कि आप बताएं इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
0: तिवारी जी, कैसे देखते हैं इसे आप?
1: ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया एक बड़ा आह्वान है और मुझे लगता है कि जो हमारी रचना धर्मिता है, जो हमारी सृजनशीलता है, जो हमारी कलात्मक प्रतिभाएं हैं, वो एक सकारात्मकता समाज को, मन को, व्यक्ति को, सबको जो है प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने व्यक्ति की सकारात्मक प्रतिभा को बाहर ला करके और एक सकारात्मक विचार और सकारात्मक समाज बनाने के लिए आह्वान किया है। जो भी शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे युवक हैं, हम सभी लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, हम सभी लोग जरूर इस आह्वान को जीवंत करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम इस अभियान को ज्यादा बड़ा बना सकें, इसे जीवंत कर सकें, इसे इसके वास्तविक मूर्त रूप तक ले जा सकें, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है।
0: जी तिवारी जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम इस आह्वान में देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने एक मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन की बात की है जो कि इस अभियान को और भी ज्यादा बल और गति देगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, सिविल सोसाइटी है, इंडस्ट्री बॉडीज हैं और 125 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो साथ में आएंगे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं इसे?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अलोंग विद कंप्लीट सोसाइटी का सपना सामने रखा है और अभी नशा मुक्त भारत के लिए आपने देखा होगा कि 26 जून को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट भी जो है रिलीज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य और उद्देश्य है नशा मुक्त भारत, उसे प्राप्त करने के लिए जितने भी संबंधित विभाग हैं, हमारा समाज, शिक्षण संस्थान, युवा, अलग अलग मंत्रालय और स्वयंसेवी संस्थाएं, साथ में जो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं और ऐसे सभी लोग जिनका समाज में किसी न किसी रूप में, क्षेत्र में, किसी कार्य में प्रभाव है, उन सभी को जोड़ करके एक सामूहिक भागीदारी के साथ हम लोगों ने एक संकल्प पत्र, एक रोड मैप लक्ष्यों के साथ जारी किया जिसमें बड़े स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको लेकर के, सबको जोड़ करके चलने के लिए आह्वान किया। और अगर हम देखें तो लगातार पिछले कुछ समय में तमाम ऐसी आवश्यकताएं सामने दृष्टिगोचर हुई हैं, जिसको दृष्टिगत करते हुए समाज में हमारा यह संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम सभी लोगों के लिए एक उद्देश्य बड़ा समीचीन है। और इसे न केवल हम स्वस्थ युवा के रूप में देखें, स्वस्थ भारत के रूप में देखें, इसके बड़े दीर्घकालिक जो है आयाम है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, इसमें सभी लोगों को जोड़कर सामूहिक भागीदारी का भी भाव है, और इसमें एक संकल्पित सक्षम और स्वस्थ युवा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निहित है। तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग मिलकर करेंगे। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो हम लोगों ने इस पर कार्य प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप प्रारंभ भी किया है, और आगे हम इसे और उनके सपनों और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने और पूछने का प्रयास करेंगे।
0: हमें सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर क्या कहा।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में आप राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: तिवारी जी, हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने युवाओं का बड़ा आह्वान किया है कि कैसे ड्रग्स से, नशीले पदार्थों से अलग रहना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस दिशा में क्या काम कर रहा है?
1: हम लोग राष्ट्र में सभी को जोड़ करके नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। और अभी जैसा कि हमने आपको बोला कि नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 अभी हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से उसका विमोचन देखा है, और उसमें जो लक्ष्य है सभी लोगों को जोड़ना है, सभी राज्यों को जोड़ना है, समाज के हर अंग को जोड़ना है, हम सभी विद्यालय को लेकर, सभी समूहों को लेकर, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ, अगर आप देखेंगे तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड अन्य सभी मंत्रालयों के साथ करके एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्यों के साथ हम सहभागिता और उनके द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ हम लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। एनसीबी एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है और एनसीबी के लक्ष्य स्पष्ट है कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करना है, और हम गृह मंत्रालय की एजेंसी के रूप में राज्यों से कोऑर्डिनेट करते हुए, सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए हम लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 वर्ष में एक स्पष्ट योजना और रूपरेखा सामने रखी है और इस योजना को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश है उसके साथ हमारा जो काम करने का प्रयास है उसमें और गति आएगी।
0: जी तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, कल्चरल आर्ट्स, स्ट्रीट प्ले जिसे नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं, ये सारी चीजों को उन्होंने समावेशित किया अपने भाषण में ताकि युवाओं को नशे से अलग रखा जा सके। हम यहाँ ये समझना चाहेंगे तिवारी जी कि जो युवा इस नशे के लत में पड़ चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए और इसके अलावा क्या किया जा सकता है और आपकी एजेंसी क्या कर रही है इस दिशा में?
1: सरकार ने एक नए दृष्टिकोण से कार्य किया है और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच आप इसे कह सकते हैं। कानून में बदलाव पर भी कार्य किया जा रहा है, साथ में पूरे भारत में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना अगर देखेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको बेहतर से बेहतर बनाना, जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं वो जाने, इसके लिए एक सशक्त अभियान को आगे बढ़ाना, राज्यों की और केंद्र की सामूहिक भागीदारी से इसे पूरा करना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दोनों इस पर कार्य कर रहे हैं। हम यह भी तय कर रहे हैं कि वहां पर जो लोग जाएं उनका सुधार हो और हमारा कानून का ढांचा कुछ इस प्रकार का बने जिससे कि उस सुधार को गति दी जा सके। तो न केवल आधारभूत संरचना में बदलाव बल्कि उसके नियामक प्रक्रियाओं में बदलाव, समाज की धारणा में बदलाव और शिक्षण संस्था और सभी जगहों पर मांग में कमी के लिए लगातार प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा आमूलचूल परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और इस दिशा में नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट के चारों जो स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभ

0: में सभी चीजों को संपूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है और इस पर हम अस्पष्ट लक्ष्य के साथ एक सुस्पष्ट समय सीमा के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे यह एक निश्चित समय सीमा में हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पूरा कर सकते।
1: अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर का अगर कोई बच्चा नशे का शिकार बन गया है तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में उसके घर वाले इस चीज को छुपाते हैं और ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार वाले या उसके आसपास के जो लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़कर इस चीज के लिए नहीं आते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करें या और भी कुछ ऐसे जो कार्यक्रम जो चला रहे हैं सरकार, इसके बारे में प्रचार प्रसार के लिए और हम क्या कर सकते हैं?
0: इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि लगातार हमारे प्रचार प्रसार के माध्यमों में इस विषय की चर्चा करना और इस विषय से संबंधित विज्ञापन जारी करवाया जाना, दूसरा शैक्षणिक संस्थाओं में इस पर लगातार चर्चा किया जाना, तीसरा गांव पंचायत के स्तर पर और नगर पंचायत के स्तर पर भी जो हमारी संस्थाएं हैं उनको जोड़ना, पुरस्कार नीति को भी सामने ले आना, जैसे शिक्षा मित्र और जैसे इस प्रकार के तमाम जो है स्वास्थ्य मित्र हैं, इसी तरह से जो हमारे आशा कर्मी हैं और जो हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारे कर्मी हैं उनको जोड़ना इस अभियान से। इसके अलावा परिवारों को जोड़ना, एक आंदोलन के रूप में NSS, NCC, आशा कर्मी और इस प्रकार के सभी लोगों को जोड़ते हुए एक सुस्पष्ट योजना के तहत इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी के मन में कोई विभ्रम की स्थिति ना रहे और लोग आए। नशा मुक्ति मित्र, हमारे माई भारत स्वयं सेवक, आशा कर्मी, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल तक जा करके लोगों को सजग करना, परिवारों को उसके लिए तैयार करना और मन के दुर्भाव को हटा करके हम उन्हें अपने स्वास्थ्य केंद्रों तक ले आए यह सुनिश्चित करना, यह हमने लक्ष्य में रखा है। लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम अपने जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके आधारभूत संरचना में उन्नयन का भी कार्य किया गया है और वो निरंतर जारी है, जिससे वहां पर उनको उचित और उन्नत सुविधा और चिकित्सा दी जा सके। यह एक पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें न केवल सुधार है बल्कि सुधार के बाद मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, परिवर्तन, खेल और एक पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ डिजाइन किया हुआ एक ऐसा हमारा इकोसिस्टम है, जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति, बच्चा, युवा जो अगर नशे का शिकार होता है तो वह 1930 पर कॉल करे, हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्रालय की साइट है उस पर अप्रोच करे, NCV की मानस हेल्पलाइन पर अप्रोच करे और वहां से वह तुरंत सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है।
1: जी तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशीत कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। ब्रिक्स मुल्कों के आदाद शुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एक बार फिर आज बातचीत होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुद को हमले में 14 अफराद हलाक हो गए। जापान और अमरीका ने जापानी करेंसी येन की कदर के सिलसिले में मुश्तरक इकदाम की तस्दीक की है। और गिलास्को में इफ्तिताही तकरीब के दौरान अहमदाबाद ने सन 2030 दौरे तक मुश्तरक खेलों की मेजबानी के हकूक बाजाब्ता तौर पर हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के आदाद शुमार के कौमी दफातर NSO आयोग के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ

भारत की सदारत में शुरू हो गया है। भारत की ब्रिक्स सदारत मरकजी मौजू इस्तेकाम इख्तिराक तआवुन और पायदारी की तश्कील से इबारत है। ब्रिक्स के आदद व शुमार के शोबे में भारत ने मियारी आदद व शुमार तब्दीली का महर्रिक का मौजू इख्तियार किया है, जो आदद व शुमार के आला मियार इख्तिराक मालूम की मौसर तहसील और आवाम पर मरकूज शुमारियाती निजाम के लिए भारत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। इस इजलास का मकसद ब्रिक्स के कलीदी आदद व शुमार को मजीद मजबूत बनाना, कौमी शुमारियाती निजाम में इख्तिरा और इस्लाहात को फरोग देना, आदद व शुमार की इशात और आदद व शुमार तक रसाई को बेहतर बनाना, निज माशी और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक आदद व शुमार को मजीद मुस्तहकम करना है। इसका मकसद आदद व शुमार से मुतालिक मालूमात की इशात, शुमारियाती निजाम में इख्तिरा, निज मालूमात और बेहतरीन तरीकाकार के तबादले के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मजबूत करना भी है। इजलास के साथ 19 रोजा जिमनी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें इंतजामी आदद व शुमार की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा और तरक्की पजीर डेटा इको निजाम में मसनू जहानत AI के लिए तैयारी जैसे मौजूद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब क्रिसमस साथ न दे तो उस वक्त भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुनरमंद मल्ला जिसकी कश्ती भी समंदर में फंस जाती है वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता बल्कि तेज कर कोशिश जारी रखता है, और यही मुसलसल कोशिश और सब्र किसी शख्स को फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसी करने वाले ममालिक के जरिए ईरान के साथ आज मुज़ाकरात होने वाले हैं। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने तस्दीक की कि दोनों ममालिक के दरमियान राबते और बातचीत के जराये सरगर्म है। सदर ट्रंप ने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में उन्होंने उस बड़े हमले को रोकने का फैसला किया जो पहले मनसूबाबंदी का हिस्सा था। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुज के इंतजाम इंसफराम के हवाले से एक मुआहदा तय पाने का इम्कान है, जबकि ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी एक मुफाहमत तक पहुंचने की तवक्को है। इसराइली मीडिया की खबरों के मुताबिक खित्ते के सालिसी करने वाले ममालिक मुज्तम दस्तखत किए गए मफाहमत नामे को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस अहम समुद्री गुजरगाह को 60 दिन तक बगैर किसी फीस के खुला रखा जा सके। इधर ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इशारा दिया कि ईरान और ओमान के दरमियान इस समुद्री राहदारी के इंतजाम के लिए मुश्तरका तरीकाकार से मुतालिक मुज़ाकरात अपने आखिरी मरहले में हैं। उनका आने के रवा माली साल की पहली सहमाही में भारत की मईशत तकरीबन 7% की शरह से तरक्की करेगी, जो साबिका तखमीनों से ज्यादा होगी। भारत की मईशत की शरह तरक्की मजबूत माशी इशारियों, सनअत से मुतालिक बेहतर कारकर्दगी और बरामदाद में बहाली के सबब होगी। पिछले हफ्ते के रोज जारी SBI की रिसर्च प्री मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की का तखमीना RBI के साबिका तखमीनों में बेहतरी का नतीजा है, जो कि जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से कम थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में मुजाहिरों ने सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा पुरतशद्दद झड़पों की इत्तला के बाद सूरत हाल कशीदा बताई गई है। इंसानी हकूक के अलमबरदार ग्रुपों ने मरने वालों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा होने का इल्जाम आयद किया है। POJK की इंसानी हकूक से मुतालिक कौंसिल के आदाद शुमार के मुताबिक कल तक मजमू तौर पर 80 अमवात की इत्तला मिली थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कलपुर अमन रैली के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हुए खुदकुश हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत कम से कम 14 अफराद हलाक और कई लोग जख्मी हो गए। खुदकुश बम धमाके का वाकया उस वक्त पेश आया जब सवात पर अमन रैली सवात जिले में काबल कस्बे के पुलिस स्टेशन से गुजर रही थी। किसी ग्रुप या फर्द ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। जापान और अमेरिका ने जापानी करेंसी येन की कदर को गुज़िश्ता 40 साल की कमतरीन सतह पर गिरने से रोकने के लिए येन की खरीदारी के लिए एक गैर मामूली और मजबूत इकदाम करने की तस्दीक की है। जापान ने इंडिया देते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस सिलसिले में मजीद इकदाम करेगा। जापान के वजीर खजाना ने कहा है कि वजारत ने पिछले हफ्ते अमरीका के महकमा खजाने के इश्तराक से जापानी येन खरीदा था। वजीर खजाना केचियामा सोस्टुकी ने आज मुश्तरक इकदाम की तस्दीक करते हुए बयान जारी किया है।
जापानी वजारत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए उस बयान के बाद

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आकाशवाणी से ही आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ब्रिक्स मुल्कों के आजादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ एक बार फिर आज बातचीत होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए। जापान और अमरीका ने जापानी करेंसी येन की कदर के सिलसिले में मुश्तरका इकदाम की तस्दीक की है और ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान अहमदाबाद ने 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। हमारी आज की पहली मजलिस यही इख्तिताम पजीर होती है। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारा जो आज का जो फिल्म है वो है पतंगा। 1949 में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म H.S. रवेल द्वारा निर्देशित की गई थी, जो उनकी पत्नी अंजना द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित थी। राजेंद्र कुमार, जो भारतीय सिनेमा के प्रमुख अभिनेताओं में से एक बन गए, पतंगा में निर्देशक H.S. रवेल के सहायक के रूप और फिल्म में एक कैमियो भी किया था। WW2 की पृष्ठभूमि पर गाया गया युगल गीत, जो कि आप सुनेंगे, मेरे पिया कई रंगून, जो अभिनेता गोप और मोहना केबरल पर फिल्माया गया था, वो बेहद लोकप्रिय हुआ। श्रोताओं, इस गीत के पार्श्व गायक सी रामचंद्र थे, जिन्होंने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया था, और शमशाद बेगम कलाकारों में थी निगार सुल्ताना, श्याम याकूब, गोप, पूर्णिमा श्यामा, रणधीर और मोहना शामिल थे। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही लोकप्रिय गीत, जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं।
1: हिंदुस्तान का बेटा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो ये कहानी याकूब, जो कि राजा के किरदार में है, उनकी वो एक ट्रैफिक कांस्टेबल की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन अपनी नौकरी के दौरान निगार सुल्ताना यानी रानी नाम की एक स्ट्रीट सिंगर के गाए गाने से उसका ध्यान भटक जाता है और वह अपने ट्रैफिक स्टेशन से निकल जाता है। इससे एक गंभीर ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और राजा को बिना सैलरी के एक साल के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। रानी राजा की मदद करने का फैसला करती है और दोनों को नाथा राम गोप के गोप थिएटर में एक्टिंग की नौकरी मिल जाती है।

राजा और रानी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक अमीर जमींदार का बेटा श्याम फिल्म में आता है। रानी को स्टेज पर देखते हुए श्याम को उससे प्रेम हो जाता है। इस तरह शुरू होता है क्लासिक लव ट्रायंगल, जो तब बनता है जब दो आदमी एक ही औरत से प्यार कर बैठते हैं।

इस लव ट्रायंगल को और मुश्किल बनाने वाली बात यह है कि राजा खुद को रानी को ये बताने के लिए मजबूर नहीं कर पाता है कि वह उसे प्यार करता है और दोस्ती से ज्यादा कुछ चाहता है। इस लव ट्रायंगल को और मुश्किल बनाने वाली बात यह है कि शाम की पहले से ही पूर्णिमा से सगाई हो चुकी है और रानी के लिए उसका प्यार उसे ठीक नहीं लगता। फिल्म इस मुश्किल लव ट्रायंगल में पैदा होने वाले झगड़ों के हल के साथ आगे बढ़ती है।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं और इस गीत के बीच ही हम आपको आपके सामने कुछ संदेश पढ़ना चाहते हैं। जो हमारे पास संदेश आया है वो आया सुदर्शन शाह का और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पद्मा टॉकीज ने पनगर सिंह के साथ है। प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बीन शाह, राजेंद्र जी शाह। अगला संदेश है नीतीश देवांगन का और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूर्णराम देवांगन, कृष्ण देवांगन। यह हमें लिखकर भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश है यशमीत यशु का और इनके साथ है निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। यह हमें लिखकर भेज रहे हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। और अगला संदेश है स्वर्ण सिंह का, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गांव लोहगढ़, ठाकुरावाला से। कमलकांत गुप्ता जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, पिपरिया से। अगला संदेश है गुरमीत सिंह का, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल लिख रहे हैं हमें। सोमदत्त जी का अगला संदेश आया है, नाभा जिला पटियाला पंजाब, इनके साथ है

सब ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु। अगला संदेश है आर कुमार से, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अगला संदेश जो है वो है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गजनेजा और पूनम गजनेजा जी का। अगला संदेश है भवरपुर से राधे श्याम देवांगन और चंपा देवांगन का। ये हमें लेकर भेज रहे हैं कि इनको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो संदेश है वो है राजकुमार डूडी का और जिला हिसार से, और इनके साथ है प्रमोद कुमार डूडी। अगला जो संदेश है वो है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से, और इन इन और ये लिखकर हमें भेज रहे हैं, वो हमें नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, जो आपने लिखा है, आज की जो फिल्म है पतंगा वो एक बेहद कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म है, और इसका जो ये गीत है मेरे पिया गए रंगून, ये सभी को बेहद पसंद है। अगला जो संदेश है वो है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहानी। और अगला संदेश जो है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं डबवाली से, मंडी डब्बाली से। और अगला जो संदेश है भागवत वर्मा का है, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा इनके साथ है। अगला जो संदेश है मोहम्मद फरहान का है और इनके साथ है मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून।

श्रोता, हमारे पास जो अगला संदेश है वो है अजीत भापसर का, और साथ ही जो अगला संदेश आया है संजय ढींगिया जी का, इनके साथ है नमन ढींगिया, पाठ ढींगिया। अगला संदेश है शेख मोहम्मद का, और इनके साथ है खतीजा बेगम, साथ ही मोहम्मद अशफाक का, और आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। अगला जो संदेश है वो है धर्मेंद्र छिपा का, और इनके साथ है कपिल छिपा, पूजा परिहार। अगला संदेश है बसंत कुमार सिन्हा का, और इनके साथ ये भी हमें लेकर भेज रहे दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। अगला जो संदेश है सुदर्शन मुखी का आया है, इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर से। प्रकाश वर्मा हमें लिखकर भेज रहे, इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। अगला संदेश जो है वो है, श्रोताओं हमारे पास बहुत सारे भर भर के संदेश आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी समय की कमी की वजह से हम इस कार्यक्रम का यहीं पे, जो हमारा एक ही फिल्म से कार्यक्रम चल रहा है, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। फिर हाजिर होंगी ये कार्यक्रम लेके ठीक कल, यानी दिन के 1:10 पर। तब तक लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: खिलाफ डराने धमकाने का इल्जाम तय करने का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब किस्मत साथ ना दे तो उस वक्त भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत का एक श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक हुनरमंद मल्लाह जिसकी कश्ती बीच समंदर में फंस जाती है वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता बल्कि तैरकर कोशिश जारी रखता है और यही मुसलसल कोशिश और सब्र किसी शख्स को फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे में सदर जमहूरिया गंजुम जिले में मुख्तलिफ तालीमी सकाफती और सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। भारत में 2023 में डिजिटल प्लेज पोर्टल के आगाज के बाद से 3 साल के अरसे में आधार के जरिए तस्दीकशुदा आजा अतिया में देने के 5 लाख से ज्यादा वादे किए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलुकत अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में आजा के अतिया के 16वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए इस बात को उजागर किया कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत में आजा बदलने के मामले बढ़कर 20,000 सालाना हो गए हैं।
1: हमने आज जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया।
0: मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि आजा बदलने की तादाद के एतबार से अमरीका और चीन के बाद आलमी सतह पर भारत 3रा मुल्क है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसों के तवस्सुस से ईरान के साथ बातचीत आज होने वाली है। एयरफोर्स वन में सवार नामनिगार से बात करते हुए सदर ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात के वसीले सरगर्म हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब मुत्तहदा अरब अमारात कतर और ईरान के साथ सिफारती राब्तों के तनाजुर में उन्होंने इस कार्रवाई को रोक दिया जिसके तहत एक बड़ा हमला करने का मंसूबा बनाया गया था। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज अरुणाचल प्रदेश बिहार जिली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। उधर ओडिशा में सभी बड़े दरियाओं और उनकी 52 नदियों में पानी की सतह कम होने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल में रफ्तार रफ्तार बेहतरी आ रही है। ये खबर भी सुन लीजिए। बिहार के बांकीपुर असेंबली के जिमनी चुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मुख्तलिफ मामलात पर ऑपोजिशन के एहतजाज के तनाजुर में पार्लियामेंट की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी है। बिहार गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने जिंसी एतबार से हरासा किए जाने के केस में भारत की कुश्ती फेडरेशन के सबक सरबरा ब्रजभूषण चरण सिंह को इल्जाम से बरी कर दिया है। भारत में आधार के जरिए तस्दीकशुदा आजा अतिया में देने के 5 लाख से ज्यादा वादे किए गए हैं। आजा बदलने की तादाद के एतबार से भारत आलमी सतह पर 3रे मकाम पर है। अमरीका और ईरान के दरमियान अगले दौर की अहम बातचीत आज होने की उम्मीद है। और मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश बिहार मगरबी बंगाल के जिले हिमालयी खत्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येन्द्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।

0: भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5

0: लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। समाचार बेंगलुरु ये समाचार आकाशवाणी
0: से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान

0: के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई ऐसे संगीतकार हुए जिन्होंने सुपरहिट गानों की झड़ी लगा दी, लेकिन कुछ ऐसे भी फनकार थे जिन्होंने गानों को सिर्फ हिट नहीं बनाया बल्कि अमर बना दिया। ऐसे ही एक खामोश, संजीदा और बेहद प्रतिभावान संगीतकार थे जयदेव जी। जयदेव जी का पूरा नाम जयदेव वर्मा था। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 1918 को अफ्रीका के नैरोबी में हुआ था। जयदेव जी एक ऐसे संगीतकार थे जिसने कभी लोकप्रियता की दौड़ नहीं लगाई है, लेकिन अपनी सादगी और सुरों की गहराई से संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लिया। अफ्रीका में जन्मे जयदेव जी कैसे हिंदी सिनेमा के मशहूर म्यूजिक कंपोजर बने और कैसे रहा इनका ये सफर, इसी पर हमारा आज का ये प्रोग्राम है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले उन्हीं की फिल्म हम दोनों से ये बेहतरीन सा गीत जिसका संगीत दिया था खुद जयदेव जी ने।

जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना जिसका संगीत दिया था जयदेव जी ने। श्रोताओं, अफ्रीका में कुछ समय बिताने के बाद जयदेव जी की फैमिली पंजाब के लुधियाना शिफ्ट हो गई। पिता रेलवे में जॉब करते थे। जयदेव जी को बचपन से ही दो चीजों का जुनून था, एक संगीत और दूसरा फिल्में। महज 15 साल की उम्र में वे हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई भाग आए। कुछ फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, लेकिन किस्मत को तो उनसे कुछ और ही करवाना था। पिता के निधन और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते इन्हें वापस घर लौटना पड़ा, पर संगीत का जो जुनून उनके अंदर आ चुका था उसने इन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। अपनी लगन से क्लासिकल म्यूजिक की बारीकियों को सीखना शुरू किया। फिर लुधियाना से लखनऊ का सफर तय किया और मशहूर सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान साहब से संगीत की तालीम ली। और जब उस्ताद अली अकबर खान नवकेतन फिल्म्स की फिल्मों के लिए मुंबई आए तो ये जयदेव जी को भी अपने साथ असिस्टेंट के रूप में ले आए। इसके बाद जयदेव जी को साथ मिला हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार सचिन देव बर्मन जी का और एसडी बर्मन दादा का। यहां से इनके लाइफ ने यू टर्न लिया और इसके बाद ये संगीत के सफर में आगे बढ़ते चले गए। इनके संगीत में सफर की बातें आगे और भी करेंगे, पर अभी वक्त हो गया है इनकी फिल्म प्रेम पर्वत फिल्म से ये बेहतरीन गीत सुनने का।

0: उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं जयदेव जी, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं, और बात कर रहे थे हम संगीतकार जयदेव जी की। मुंबई पहुंचकर जयदेव जी सालों तक SD बर्मन के असिस्टेंट रहे, टैक्सी ड्राइवर, पेइंग गेस्ट और गाइड जैसी फिल्मों के संगीत में जयदेव जी के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बतौर इंडिपेंडेंट संगीतकार इन्हें पहली बार मौका मिला फिल्म जोरू का भाई और अंजलि में। इनके गाने पसंद तो किए गए, लेकिन जिस एक मोड़ का हर कलाकार को इंतजार होता है वो बड़ा ब्रेक अभी बाकी था। जयदेव जी बिना किसी हड़बड़ी के शांत भाव से अपनी धुनें बनाते रहे और सही मौके का इंतजार करते रहे। फिर आया साल 1961, वो पल आया जिसने जयदेव जी को हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। फिल्म थी हम दोनों। देवानंद साहब की इस फिल्म का संगीत ऐसा बना कि आज 6 दशक बाद भी इसके गाने हर पीढ़ी की जुबान पर है। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जिंदगी को इतने हल्के फुल्के और दार्शनिक अंदाज में पेश करना सिर्फ जयदेव जी के बस की ही बात थी। और इसी फिल्म का गाना अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, इसे तो आज भी दुनिया का सबसे खूबसूरत रोमांटिक नगमा माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लता मंगेशकर जी की आवाज में गाया भजन अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम आज भी देश के कोने कोने में शांति और भक्ति का प्रतीक है। सिर्फ एक फिल्म के संगीत ने साबित कर दिया कि जयदेव जी सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि भावनाओं के बहुत गहरे पारखी थे। इनके पास हर तरह के गानों को संगीत देने की अद्भुत कला थी। तो चलिए सुनते हैं इसी दौर की एक फिल्म मान जाइए का ये शानदार सा गीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त

0: दोस्तों आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं जयदेव जी। दोस्तों फिल्म हम दोनों की भारी सफलता के बाद भी जयदेव जी ने कभी कमर्शियल रेस में भाग नहीं लिया। इन्होंने बड़े बजट की फिल्मों के बजाय उन फिल्मों को चुना जहां इन्हें संगीत के साथ प्रयोग करने की पूरी आजादी मिली। इनकी इसी आर्टिस्टिक सोच का नतीजा था कि ये हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे संगीतकार बने जिन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड मिला। पहला नेशनल अवार्ड सुनील दत्त साहब की फिल्म रेशमा और शेरा के लिए मिला। इसमें राजस्थान की फोक म्यूजिक और शास्त्रीय रागों का जो तालमेल इन्होंने पेश किया था वो शानदार था। दूसरा नेशनल अवार्ड मिला फिल्म गमन के लिए। इस फिल्म में शहर की तन्हाई को बयां करता गाना सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है हर ट्रैवलर के दर्द की आवाज बन गया। और तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला फिल्म अनकही के लिए। जयदेव जी ने कभी लीक पर चलना स्वीकार नहीं किया, ये हमेशा प्योरिटी ऑफ म्यूजिक के पीछे ही भागते रहे। तो चलिए इनके म्यूजिक को याद करते हुए सुनते हैं फिल्म घरौंदा का ये दिल को छू लेने वाला गीत।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी

जी हाँ दोस्तों, जयदेव जी की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी थी कि वे नए हुनर को पहचानने में देर नहीं लगाते थे। आज हम जिन दिग्गज सिंगर्स के फैन हैं, उनमें से कई नामी कलाकारों को पहला बड़ा ब्रेक जयदेव जी ने ही दिया था। सुरेश वाडेकर, हरिहरन और छाया गांगुली जैसे फेमस सिंगर्स को इन्होंने ही फिल्म गमन के जरिए पहली बार मौका दिया। छाया गांगुली ने तो प्लेबैक सिंगिंग का नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इतना ही नहीं, कवि हरिवंश राय बच्चन जी की फेमस मधुशाला को जब मन्ना डे साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया गया तो उनका जो संगीत था वो भी जयदेव जी ने ही तैयार किया था। साहित्य और कविता की इन्हें काफी गहरी समझ थी, जिस वजह से ये इनको सहज और सुरीले धुनों में पिरो देते थे। तो चलिए इसी मिठास को महसूस करते हैं और सुनते हैं फिल्म गमन का ये गीत।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का। 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाले इतने बड़े संगीतकार जयदेव साहब की निजी जिंदगी कैसी थी, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जयदेव जी का जीवन बेहद सादा था। इन्होंने कभी शादी नहीं की और मुंबई के एक छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी गुजार दी। 6 जनवरी 1987 को इस महान संगीतकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनका संगीत

0: में भी 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। भारत में आधार के जरिए तस्दीक शुदा आजादियां देने में 5 लाख से ज्यादा वादे पूरे किए गए। आजा बदलने की तादाद के एतबार से भारत आलमी सतह पर तीसरे मकाम पर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद मारे गए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान अगले दौर की अमन बातचीत आज होने की उम्मीद है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है और ब्यासगो में दौलत मुश्तरका खेलों के अख्तितामी तकरीब में अहमदाबाद को 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाजाब्ता तौर पर मिल गए हैं। भारत में 2023 में डिजिटल प्लेज पोर्टल के आगाज के बाद से 3 साल के अरसे में आधार के जरिए तस्दीकशुदा आजा अतिया में देने के 5 लाख से ज्यादा वादे किए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर मुमलकत अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में आजा के अतिये के 16वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए इस बात को उजागर किया कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत में आजा बदलने के मामलात बढ़कर 20,000 सालाना हो गए हैं। मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि आजा बदलने की तादाद के एतबार से अमरीका और चीन के बाद आलमी सतह पर भारत तीसरा मुल्क है। उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा सैदोव बख्तियार ओदिलोविच ने राष्ट्रपति भवन

0: लीडर फ्रॉम का नाम आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफीक की आवाजों में। मौसीकी से सजाए थे इस नगमे को नौशाद ने। प्रोग्राम के लिए पेशकश बम बादल बरसात फिल्म का नगमा हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।
1: एक बार जरा कर कह दो मुझे शर्मा के।

इस नेटवर्क साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे थे मारूफ नगमा निगार शकील बदायूं के लिखे हुए कुछ फिल्मी नगमे उनके यौम पैदाइश के हवाले से। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पेश करते हैं आपकी खिदमत में एक फीचर एहसासात का कफील शकील। ये फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा है, तहरीर जनाब माली के अश्तर की है।

शकील की शोहरत भले ही चारों तरफ फैल रही हो, भले ही उनके चाहने वालों का मजमा उन्हें देखने को स्टेशनों पर उमड़ आता हो और भले ही उनके गानों से मुल्क के गली कूचे गूंज रहे हों, लेकिन शकील के मिजाज की सादगी हमेशा बरकरार रही। उनके अंदर बनावट नहीं आई, उन्होंने खुद को कभी गुरूर से करीब नहीं होने दिया और वो हमेशा इंकिसारी का दामन थामे रहे। खुद एक जगह अपने शेर में उन्होंने अपने इस मिजाज का इजहार भी कर दिया। जिनसे नायाब मोहब्बत की खुदा खैर करे, बिलहवस इसके खरीदार नजर आते हैं। हम न बदले थे, न बदले हैं, न बदलेंगे शकील, एक ही रंग में हर बार नजर आते हैं।

अस्पताल में थे, इसलिए गीत लिखने की नौशाद साहब ने ये राह खोजी कि वो उनके पास बैठ जाते और दोनों मिलकर मिसरे पर मिसरे लगाते और गीत बन जाते। इस फिल्म के गीतों ने गजब की शोहरत पाई।

शाह साहब के साथ काम करके शकील को शोहरत तो खूब मिली, लेकिन उन्हें ये एहसास भी रहा कि उनकी मारी हालत में बहुत ज्यादा बेहतरी नहीं आ रही। इसीलिए शकील ने बाद में दूसरे मौसीकारों के लिए भी गीत लिखने शुरू कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि जिन नौशाद साहब के साथ काम करके शकील को बेपनाह शोहरत मिली, उनके साथ किसी भी नगमे पर उन्हें कभी कोई एजाज नहीं मिला। हैरतनाक तौर पर शकील ने जैसे ही दूसरे मौसीकारों के साथ काम करना शुरू किया, उन्हें पे दर पे बड़े एजाज मिले। शकील को पहला फिल्म फेयर अवार्ड सन 1960 में चौधरी का चांद के नगमे के लिए मिला।

1962 हुई फिल्म 20 साल बाद के एक नगमे के लिए शकील को मुसलसल तीसरे साल फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म के गीत कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए शकील को बेहतरीन नगमा निगार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो इसी नगमे के लिए लता मंगेशकर को बेहतरीन गुलोकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला।

लेकिन फिल्मी नगमों को जिस कदर मकबूलियत मिली उनकी गजलें भी इसी कदर मशहूर हुई। बल्कि गजल बेगम अख्तर की आवाज में उनकी गजलें आज भी लोगों के कानों में रस घोलती।

0: शकील ने एक भरपूर जिंदगी जी। उन्होंने 100 से जायद फिल्मों के गीत लिखे। इनकी दर्जनों गजलें बड़े बड़े गुलकारों ने गाई। इनके शेरी मजमुए छपे। मुल्क के तूलो अर्ज की अदबी महफिलों में इनके शहदाइयों का हमेशा मचबा रहा। इन पर मजामीन लिखे गए, किताबें मुरतब हुई, इन्हें एजाज मिले, इनके नाम से सड़कें मंसूब हुई। इनके कलाम की उम्दगी का एतराफ दिलीप कुमार से लेकर साहिर लुधियानवी तक ने किया। मोहब्बत और रोमानियत के हसीन जज्बात का ताना बाना बड़ी खूबसूरती से बुनने वाला ये नगमा निगार 20 अप्रैल सन 1970 को बम्बई में शुगर के मौरूसी मर्ज से दाई अजल को लबैक कह गया। तवील अलालत के दौरान इन्होंने नर्म और गर्म दिन देखे, लेकिन अपनी इनफरादियत को हमेशा बरकरार रखा।
1: शिकस्ते बेखुदी के मुस्तकिल सामान तो होंगे, न क्यों जी भर के पीलूं मैं कभी वीरान तो होंगे। इसी धुन में गुजारे जा रहा हूँ जिंदगी अपनी, कभी ये जिंदगी के मरहले आसान

मर मर के मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही

धन्यवाद धन्यवाद।

पाए चंगे पाए कम।

मैं प्यार का चलन दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे

और सामिनी जो सुनी गंगा जमुना फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, मौसीकार नौशाद नगमनगार शकील बदायूनी।

झाक झिनक झिन झाक झिनक झिन झाक

Radhika na tere sa sa sa ni da ba ma ba da ba ga ma.

दीपा फिल्म का दुकान आप सुन रहे थे जीएम दुर्रानी और शमशाद बेगम की आवाजों में। और लीजिए सामने सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश दो बदन फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है रवि।

सनी फिल्म मौसीकी के आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायूं के लिखे हुए गीत उनकी उम्र पैदाइश के मौके पर। प्रोग्राम की अगली पेशकश आदमी फिल्म का नगमा, एक मरतबा फिर गुलूकार है मोहम्मद रफी।

लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ अस्थि चर्म मैं देह मम ताने ऐसी प्रीति होती जो रघुनाथ में होती न ये भव भीति सीधा सीधा अर्थ ये कृपा को मेरे नाल औंदी औंदी सामाजिक शर्म नहीं आई संकोच नहीं था ये भी क्या प्रेम है मैं हे मालिक हे स्वामी हे पतिदेव प्रभु आखा तो क्या आखा मेरा जो शरीर है हड्डिये और चमड़े का जोड़ ही तो है ही शरीर में तुसा इतनी प्रेम करने पे हो इो प्रेम इो मोहब्बत जो तुसा रघुनाथ जी नाल रखेंदे राम जी नाल रखेंदे तो तुहाडी जिंदगी बन वेंदी पर लोग भी सुधर वेंदा लोग आख दिन कुआर दे प्रेम इस अंधे तुलसी दास दिया ज्ञान दिया अखी खुल गया और हूं वेले घर छोड़ के चले गए प्रयाग पहुंचे पहले सन्यासी बन गए हूं तक तो गृहस्थ हैं ना विशिदा वान तो सहन छोड़ देता सीधे सन्यासी बन गए तीर्थ तीर्थ घूमने लग गए घूमते घूमते मानसरोवर तक भी पहुंच गए उठे काग भूषुंडी जी के दर्शन करने का उन्हें को सौभाग्य प्राप्त थिया काशी पक्के तौर से रांधे में दिल्ली थो लौट के आगे रांधे में राम कथा सुनावन लग पे उन्हें जिये अपने गांव करें पेन हमने मन च प्रेरणा थी हमने हनुमान जी का नाम किता हमने प्रार्थना की थी और हनुमान जी दे आखे ते चित्रकूट चले गए चित्रकूट राम घाट ते रवन लगे लोगों का यह मानना है एक कहावत है कि उठे ही रांधे रांधे चित्रकूट होने को राम और लक्ष्मण इन्हें डूबे दे दर्शन थे पहले शाम को थे भीड़ विच तुलसीदास जी उन्हें पहचान न सके रात को हनुमान जी ने होने को सपने में दस्या कि भाई राम लक्ष्मण तो आज तो मिलन आए हैं तुम्हें ध्यान नहीं देता हम तुलसीदास जी रोवन लग गए हनुमान जी ने कहा ना चिंता न कर कल सवेरे फिर उसे नो ही मेरी तू पहचान घनी और होने को नमस्कार करें उनका परिणाम क्या था कि अगले दिन होने को दर्शन थी गए दर्शन करने के बाद चित्रकूट छोड़ के वो फिर प्रयाग पहुंच गए प्रयाग में होने जा रहे माघ का मेला लगा हुआ है होने को ऐसा लगा कि माघ मेले में ऋषि भारद्वाज जी और मुनि याज्ञवल्क जी आए हुए हैं आपस वेदें दी धर्म दी दर्शन दी चर्चा करने पर उन्होंने को प्रणाम किया आशीर्वाद दिया और उसके बाद वापस काशी पहुंच गए हिन्ने जाने वो प्रहलाद घाट से रवन लगे काशी होने को ऐसे महसूस होने लगा कि जो रामचरित मैं इतनी सुने और जिंदी कथा मैं लोग करेंदा रहा वो मैं खुद लिखा अपनी भाषा में लिखा और उन्हें लिखना शुरू कर दिया लेकिन किता लिखा संस्कृत में लिखा आठ जने लगातार जी को वो लिखते रहे रात को सुमन दे बाद सवेरे जब उठे तो उन्हें लगा वो सब मिट गए गुम थी गए उन्हें बड़े परेशान थे ये क्या थी ये क्यों थी ये कहा होने को भगवान शंकर ने सपने में दर्शन लेते उद्देश्य किता कि तुलसीदास रामचरित लिखन के ते संस्कृत की जरूरत नहीं अपनी बोली विच लिखना अपनी भाषा विच जे को हरेक आदमी समझ सके पढ़ा लिखा भी अनपढ़ भी सब होने ही गाल को मन के दा तुलसीदास ने भगवान शंकर दी गाल मन के दी लेकिन काशी छोड़ देता और अयोध्या पहुंच गए चैत्र शुक्ल सत सारे जितने महीने होंगे ना ये कृष्ण पक्ष के अनुसूर थे और शुक्ल पक्ष तक चलते पहले 15 दिहाड़े अमावस्या पूरे थे दूसरे 15 दिहाड़े पूर्णमासी पूर्ण थे यही वास्ते असा तारीखा बुलेंदे में शुक्ल या कृष्ण ही पक्ष की गाल जरूर कर दो चैत्र शुक्ल पक्ष की 7 तारीख को विक्रमी संवत 1631 सवेरे उन्हें रामचरित मानस एक शब्द उन्हें अपने तरफ जोड़ लिता पहले सुनते रह गए हैं रामचरित है यो अब रामचरित मानस लिखन शुरू कर देता ये जाड़ा रामनवमी का जाड़ा है भगवान राम दे जन्म का जाड़ा है उन्हें महसूस किया

0: कैसे सुन जा रहे शुभ काम करना शुरू करना चाहिए। यानी 2 साल 7 महीने छवि जाने के बाद वो ग्रंथ रचना पूरी थी गई, सत्य कांड पूरे थी गए। वो ज्यादा भी महत्वपूर्ण है क्या है, विक्रमी समय 1633 महीना मार्ग शेष राम जानकी देव विवाह जाड़ा है। यानी रामचरित मानस लिखन शुरू किया रामनवमी जाड़े और रामचरित मानस पूर्ण था राम जानकी विवाह दे जाड़े। सारे को पहले ही लिखे हुए ग्रंथ थे भगवान विश्वनाथ जी ने और माता अन्नपूर्णा ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा, आपने सहमति दर्ज कराई। बाद मधुसूदन सरस्वती जी ने ग्रंथ दिल खोल के मुक्त कंठ तारीफ की थी। काशी दे पंडित ने भी अपने तरीके नाल ही ग्रंथ दे परीक्षा की थी और मुझे बाद नतमस्तक किए कि तुलसीदास जी जो तुसा लिखे उनका कोई मुकाबला को नहीं। विद्वान की मान्यता है कि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं, रामचरित मानस, दोहावली, कवितावली, बरवय रामायण, कुंडलीय रामायण, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका। हालांकि सारे दिया सारे किताबा राम भक्ति भावना दी बरसात करन वाले हैं। काव्य कला संदर्भ हिन्ने सारे दा अपना महत्व है, पर रामचरित मानस और विनय पत्रिका हिन्ने किताबें दा बेमिसाल महत्व है। विश्व साहित्य विच रामचरित मानस दी गिनती थींदी है। महाकाव्य दी कसौटी ते एक किताब 16 आने खरी सिद्ध तई है। ही किताब को जन साधारण ने इतनी मोहब्बत नाल अपनाए कि वेद पुराण उपनिषद और गीता सत्य सुना गया। बहुत सारे राम भक्त हिंदू नवरात्रे विच ही ग्रंथ अपना अखंड पाठ करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करेंगे। असा रामचरित मानस विनय पत्रिका के कारण सारे संसार सिर चा के मत्था उच्चा करके रवन दे हकदार थे गयो।
1: गुरु स्वामी तुलसीदास हमें तुसा एक खास वार्ता सुनेंगे पैहावे। वार्ताकार हम चंद्र भान आर्या ते हुन पेशिन कुटसिराय की गीत घनो सुनो जीशम खान रोखड़ी दगाया एक गीत।

गीत आपको पसंद आया हो सी तीसरे के प्रोग्राम इतना ही खत्म थींदा है। अगले प्रोग्राम चुवल मिलसा हुन हरजीत कौर को देवो इजाजत।

शहद महफूज में मिश्री सुरी नहीं है, बासुरी कहां दी पर शुक्र है के बेसुरी नहीं है, मोहब्बत नाल हो गई साड़ी थोड़ी जी वा।

ਨੱਚਦੀ ਦੇ ਖਸ ਜਾਣ ਪੈਰ ਨੀ ਮਿਲੋ ਭਾਵੇਂ ਨੱਚਦੀ ਦੇ ਖਸ ਜਾਣ ਪੈਰ

ਹਾਂਜੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਗਾਉਣ।

0: ਘੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਸੇ 9 ਇੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਪਰਤ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੱਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜੀਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਘੀ ਬਹਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਬਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ ਤੱਤ ਪਏ ਆ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਕ ਤੱਤ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੂਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹ ਡੂੰਘੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਮਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਪੈ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है।

सूचना ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाली जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम, राम।
1: जी हाँ यमुना बहन, हम जैसे बताते रहते हैं किसान भाई बहनों को बहुत सही योजनाओं के बारे में, और एक ऐसी ही योजना के बारे में हम बताना चाहेंगे। एक ऐसी योजना है जैसे कई बार जैसे हम मेहनत करते हैं लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं,
0: बिल्कुल
1: कई जो चीजें हमारे बस में नहीं होती या फसल रोगों के कारण खराब हो जाती है, तो किसानों को वित्तीय सहायता और मुआवजा दिया जाता है। तो ये योजना है फसल बीमा योजना।
0: बिल्कुल, आज इसी पर विस्तार से जानकारी दिलवाएंगे हम किसी से, लेकिन ये भी बता दें कि प्राकृतिक आपदा कीट या रोग से नुकसान पर बीमा कवर मिलता है। बहुत सारी जानकारियां हैं फसल बीमा योजना से संबंधित, तो चलिए सुनवाते हैं आपको एक बातचीत आपदा के समय फसल बीमा योजना। शशि प्रकाश सिंह जो कि मुख्य प्रबंधक हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी, तो चलिए इनसे सुनते हैं बातचीत।
2: भाइयों नमस्कार, आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कई प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें चाहे सूखा हो, अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, बाढ़ है, चक्रवात, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको किस तरीके से आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं शशि प्रकाश सिंह जी जो कि मुख्य प्रबंधक हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी नई दिल्ली में। सिंह साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये फसल बीमा योजना है ये क्या है और इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम पीएमबीवाई के नाम से भी जानते हैं, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में गिना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान की आय को सुरक्षित रखना, कृषि में स्थिरता लाना तथा आपदा के समय किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
2: तो फसल बीमा योजना में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनको आप कवर करते हैं?
3: इस योजना के अंतर्गत सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात, ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल के फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा कीट एवं रोगों से होने वाले फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
2: इसके अलावा बहुत से किसान भाई जो बीजों की बिजाई करते हैं या जब फसल कट जाती है खेत से, जब उसके थ्रेसिंग होकर घर ले जाते हैं, इस बीच भी नुकसान होता है, कभी बीज उनका नहीं उगता है, तो क्या ये भी कवर होता है?
3: इस योजना में यदि सरकार द्वारा अधिसूचित है और इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कि निश्चित क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान बुआई नहीं कर पा रहे हैं या बुआई जो भी बुआई कर पाते हैं वो फेल हो जाती है, तो जिस राज्य में भी यदि प्रिवेंटेड सोइंग कवर यदि अधिसूचित है तो वहां भी किसान बीमा के लाभ के पात्र होते हैं।
2: इस योजना का

0: कौन कौन से किसान भाई लाभ ले सकते हैं, कौन कौन से किसान इसके पात्र हैं?
1: अधिसूचित फसलों के लिए वो सारे किसान जो अधिसूचित फसलें उगा रहे हैं क्षेत्र में, इस योजना के लिए पात्र हैं। जो लोनी किसान है उनका लोन अकाउंट यदि अधिसूचित फसल उगा रहे हैं तो स्वतः ही बैंक के द्वारा उनका बीमा कर दिया जाता है। जिन किसानों ने लोन नहीं लिया, जिनका की लोन अकाउंट नहीं है और यदि अधिसूचित फसल उगा रहे हैं, तो वो भी सीएससी या बैंक विजिट के द्वारा या फसल बीमा पोर्टल पर स्वतः ही आवेदन करके बीमा कवर ले सकते हैं।
0: तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि स्वतः ही उसका कर सकते हैं पोर्टल पर जाकर के, और कोई भी किसान अगर किसी मान लीजिए कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी का नाम आपने जिक्र किया है वहां जाता है तो कौन कौन से कागजात डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि हमें अपने फसल का बीमा कराना है?
1: किसान को मुख्य रूप से अपनी पहचान यानी आधार कार्ड, बोल जाने वाले फसल का प्रमाण पत्र, संबंधित जमीन के दस्तावेज और बैंक पासबुक की प्रति की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वो अपना बीमा करवा सकते हैं।
0: और कोई किसान भाई अगर बीमा कराना चाहते हैं किसी फसल का तो इसकी अंतिम तिथि क्या है?
1: सामान्यतः खरीफ के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है और रबी फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर होती है, किंतु अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियों के अनुरूप राज्य की अधिसूचना के अनुसार अलग अंतिम तिथियां निर्धारित हो सकती हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना और राज्य सरकार के विभाग के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
0: जैसे 31 जुलाई तो निकल चुकी है क्योंकि बहुत से किसान भाई अभी भी अपनी फसलों की बिजाई में लगे हुए हैं, तो क्या अभी कई राज्यों में किसान भाई अभी भी फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं?
1: बहुत से राज्यों में मौसम की स्थितियों के अनुसार अंतिम तिथि में परिवर्तन किए गए हैं, तो जहां भी अंतिम तिथि एक्सटेंड की गई है और अभी भी अंतिम तिथि शेष है वहां इसकी सूचना अपने कृषि विभाग से या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर जाकर उसकी जानकारी लेकर बीमा ले सकते हैं।
0: और किसान भाइयों की जानकारी के लिए आप बताना चाहेंगे कि इनकी जो भी फसलें हैं उसका प्रीमियम क्या है?
1: खरीफ फसल के लिए निर्धारित प्रीमियम बीमित राशि का 2% है, रबी की फसल के लिए 1.2% है, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 1.5% है।
0: तो अगर किसी किसान के किसी आपदा से फसल नष्ट हो जाती है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: यदि किसी भी आपदा से यदि फसल नष्ट हो जाती है और वो आपदा स्थानीय आपदाओं के अंतर्गत अधिसूचित है, जैसे कि ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, आकाशीय बिजली, इस स्थिति में किसान को 72 घंटों के अंदर कृषि रक्षक पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1447 या कृषि बीमा कंपनी के डायरेक्ट नंबर, कृषि विभाग के अधिकारियों, बैंकों या सीएससी के माध्यम से कृषि बीमा कंपनी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।
0: अगर इसकी सूचना किसान भाई दे देते हैं तो कंपनी द्वारा कैसे आकलन किया जाता है और इसमें प्रशासन की क्या भूमिका है?
1: सूचना देने के उपरांत कंपनी के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि किसान की उपस्थिति में उसके खेत पर नुकसान के आकलन का सर्वे करते हैं और सर्वे के आधार पर जो भी नुकसान का आकलन होता है उसके बीमा राशि का भुगतान सारे आंकड़ों के निश्चित हो जाने के पश्चात 21 दिनों के अंदर कर दिया जाता है।
0: अब वो कैसे किया जाता है किसान को?
1: किसान का भुगतान डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके पोर्टल पे प्रविष्ट अकाउंट नंबर या आधार से लिंक्ड अकाउंट नंबर में कर दिया जाता है।
0: तो जितने किसान भाई उनका नुकसान होता है किसी भी आपदा के द्वारा, तो क्या सभी किसानों का क्लेम स्वीकार किया जाता है?
1: यदि कोई किसान स्थानीयकृत आपदा के विषय में सूचना देते हैं तो अधिसूचना में वो आपदा कवर है, तो सर्वे के आधार पे नुकसान का निर्धारण होता है तो उस किसान का भुगतान किया जाता है। सीसी के आधार पे, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पे, जहां पर भी उपज में कमी पाई जाती है उन सारे किसानों को उस बीमा इकाई में क्लेम का भुगतान किया जाता है, किंतु जहां पर भी उपज गारंटीड उपज से ज्यादा होती है वहां पर कोई भुगतान नहीं किया जाता।
0: फिर भी अगर कोई किसान अपना देख रहा है कि फसल उसका नुकसान हुआ है और बीमा कंपनी उसका क्लेम अस्वीकार कर देती है, तो ऐसी स्थिति में किसान को क्या करना चाहिए, कहां सूचना देनी चाहिए या शिकायत करनी चाहिए?
1: शिकायत के लिए मुख्य रूप से कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1447 पर बीमा के दावों के सूचना के अतिरिक्त वहां शिकायतों के समाधान या शिकायतों की भी व्यवस्था है। शिकायत दर्ज करने के उपरांत शिकायत का टिकट जनरेट होता है जिसके माध्यम से शिकायतों को ट्रैक किया जा सकता है और उनकी शिकायतों का उपयुक्त स्तर पर समाधान किया जाता है।
0: तो उसमें कितने दिन लग जाते हैं लगभग?
1: शिकायतों के आधार पर जिस तरह की शिकायत होती है वो संबंधित बीमा कंपनी को वो शिकायत जाती है और बीमा कंपनी को एक सप्ताह से दो सप्ताह के अंदर उस शिकायत का समाधान कर उपयुक्त उत्तर किसान तक पहुंचाना होता है।
0: अच्छा, किसान भाइयों को मान लीजिए बीमे का क्लेम लेने के लिए जरूरत पड़ती है कि उनको कौन कौन से अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए?
1: बीमा के दावे के लिए मुख्य रूप से सर्वे से संबंधित प्रति और सर्वे के दौरान लिए गए जो भी साक्ष्य हैं उनके प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।
0: अच्छा, एक चीज और है कि बहुत से हमारे किसान भाई हैं जिनके नाम अपनी जमीन होती है, वो भी खेती करते हैं, और बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनके नाम खेती तो नहीं है लेकिन वो खेती करते हैं दूसरे की बटाई पे लेकर के, पट्टे पे लेकर के, क्या वो भी इस प्रधानमंत्री फसल योजना के पात्र हैं? लाभ उनको भी मिलेगा?
1: यदि किसान बटाईदार के रूप में खेती कर रहे हों और उनके द्वारा उगाई गई फसल राज्य की अधिसूचना में अधिसूचित है तो किसान बीमा करवाने के पात्र हैं। उसके लिए उन्हें अपने बताए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त जो लैंड एग्रीमेंट है जिसके आधार पर वो खेती कर रहे हैं उसकी प्रति भी सबमिट करनी होती है, उसके आधार पर उनका बीमा होता है।
0: और क्योंकि फसल तो सभी हमारे किसान भाई लगाते हैं, खेती करते हैं, लेकिन सभी किसान बीमा नहीं कराते, उनके अंदर बहुत सी गलतफहमियां होती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी गलतफहमियां हैं जिसके कारण वो फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लेते हैं?
1: सामान्यतः बीमा के विषय में इस धारणा से भी कि हमारे क्षेत्र में इस फसल में नुकसान नहीं होता है, ये एक बड़ी सोच होती है जिसके लिए नहीं कराते हैं। किंतु आपदा एक ऐसी स्थिति है जिसके विषय में हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं और वो कभी भी फसलों का नुकसान पहुंचा सकती है, और उस स्थिति में यदि आपदा के संदर्भ में ध्यान रखा जाए और सोचकर यदि कराया जाए कि ये बीमा कोई एक इन्वेस्टमेंट न होकर आपदा से बचाव का एक जरिया है, एक माध्यम है, तो बीमा कराने के लिए यदि इस सोच से किसान प्रेरित होंगे तो वो बीमा कराने के लिए अग्रसर हो सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सभी किसान फायदा लें, इसके लिए किसान भाइयों को अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सभी किसान भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि वो अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और समय रहते ही अपनी फसल का बीमा करवा लें, क्योंकि आपदाएं कभी भी बताकर नहीं आती हैं। फसल बीमा कराने से उनका कृषि में निवेश सुरक्षित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ये सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। समय पर बीमा और सही जानकारी कठिन परिस्थितियों में आर्थिक संबल प्रदान करती है और ऐसा देखा गया है कि विगत वर्षों में बहुत से किसानों की बीमा राशि उनका दावा बनने के बावजूद भी उनके खातों में अंतरण के समय फेल हो जाती है। बार बार प्रयासों के बावजूद भी उनके बैंक अकाउंट में बीमा राशि का अंतरण नहीं हो पाता है।
0: तो ऐसे में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
1: किसान भाइयों से निवेदन है कि इस स्थिति से बचने के लिए वो अपने खातों को निश्चित रूप से अपने आधार के साथ लिंक कराएं, जिससे आधार बेस्ड पेमेंट के अंतर्गत जो भी लंबित दावों का भुगतान है उनका भुगतान किया जा सके और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
0: जी, आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा के समय उसकी उपयोगिता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें विश्वास है कि यह जानकारी किसान भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वे समय रहते फसल बीमा योजना का लाभ उठाकर अपनी खेती को अधिक सुरक्षित बना सकेंगे। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपदा के समय फसल बीमा योजना का लाभ आप कैसे उठाएं, इस विषय पर शशि प्रकाश सिंह अभी जानकारी दे रहे थे, जो कि मुख्य प्रबंधक है भारतीय कृषि बीमा कंपनी, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: तो ये तो थी जानकारी, और आप कुछ मनोरंजन कराते हैं, सुनवाते हैं। एक उपदेश कलाकार हैं शीशपाल सिंह भाटी।

0: कैच द रेन के नाम से मशहूर है, जल शक्ति अभियान जैसे प्रोमो और अभियानों के जरिए जनता से जल वर्षा संचय और भूजल स्तर को सुधारने की अपील की गई है।
1: बिल्कुल, सरकार के जो ये मुख्य संदेश है इस अभियान के तहत ही है, कैच द रेन, वर्षा के पानी का एक एक बूंद जहां गिरे उसे वहीं सहेजने का संकल्प लें। और जन भागीदारी की बात करें तो
0: बिल्कुल, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना, जिसमें युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया है।
1: बिल्कुल, अमृत सरोवर की बात करें तो देश भर में जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए नए तालाबों के निर्माण की बात रखी गई है।
0: बिल्कुल, और अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के साथ पानी की बर्बादी रोकने का भी संदेश दिया गया है।
1: बिल्कुल, और कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, एक महत्वपूर्ण जल संरक्षण अभियान है। इसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसका मुख्य उद्देश्य बारिश की एक बूंद को बचाना और भूजल स्तर को सुधारना है।
0: बिल्कुल, पानी की हर बूंद का सही और प्रभावशाली इस्तेमाल करना है, भूजल व्यवस्था और जल भूतों को मजबूत करना है, छत आधारित और भूमि आधारित वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है, जल प्रबंधन के प्रति आम जनता और युवाओं में जागरूकता लाना है, यानी कैच द रेन का ये स्लोगन आम बनाना है।
1: बिल्कुल, और देखा जाए तो जो हमारा वर्षा का जल आता है उसको हम कहीं भी इकट्ठा करते हैं तो जल संचयन से एक जो हमारी विविधता होती है पानी की कमी की, वो सारी पूरी की जा सकती है। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसी बूंद बूंद से आप सागर भर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास आपका हमारा सभी का होना चाहिए।
0: जी, प्रयास छोटे ही होते हैं लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो वो ये प्रयास हमारे बड़े हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो इसी से संबंधित चलिए सुनवाते हैं आपको योगेंद्र निमचाना की आवाज में ये उपदेश, जल संरक्षण क्यों जरूरी है।

0: अभी आप सुन रहे थे शीशपाल सिंह भाटी से ये उपदेश,
1: और अब कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत जरूरी है, जल संरक्षण के बारे में है।
0: बिल्कुल, बात कर रहे हैं हम जल संरक्षण की। तो जल संरक्षण हर एक बूंद कीमती है, और ये

0: जी हाँ, जल संरक्षण बहुत जरूरी, इसके बिना नहीं जिंदगानी। अभी आप सुन रहे थे उपदेश योगेंद्र निमचाना से,
1: और अब आइए सुनते हैं एक संदेश।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आगामी कार्यक्रम के बारे में भी हम बता देते हैं। आगामी कार्यक्रम की जानकारी में आप सुनिएगा, कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी कल 7:05 से लेकर के 7:35 तक। और साथ साथ ये भी कहें कि देखो कुछ मौसम बदल रहा है और बारिश का मौसम है, तो अपने पशुओं का भी देखभाल करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, बरसात के मौसम में अपना और साथ ही साथ पशुओं का भी देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में कीचड़ नमी हो जाती है, मक्खी मच्छर और संक्रमण से बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। पशुओं के रहने के स्थान को सूखा और साफ रखना जरूरी होता है, और यमुना बहन उन्हें साफ और उबला या छना हुआ पानी पिलाना भी चाहिए, तथा जैसे इस तरह के कई रोग हो जाते हैं जैसे थनैला और पेट में कीड़ों से बचाने के लिए
1: खुरपका हो जाए
2: जी, तो समय पर डॉक्टर की सलाह और दवाएं और टीके भी लगवाते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और सच कहें तो जानकारी के इसी जानकारी के साथ साथ अब हम विदा लेना चाहेंगे कार्यक्रम कृषि जगत से। तो सभी सुनने वाले किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम राम। और जिस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर
2: और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
1: तो सभी सुनने वाले हमारे किसान भाइयों बहनों को पुनः राम राम, राम, राम।

0: बेहतर कुछ नहीं। अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। अपने नजदीकी डॉक्टर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सोखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: पापा ये सब
3: जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
2: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
3: अरे ये कैसे रह गया?
2: पैसे गए?
3: नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
2: दादू ये
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सही कह रहा है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कल त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समापन। मुख्यमंत्री ने दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को अपने पुराने उपयोग योग्य कपड़े दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनका पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग की जा सके। दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर अर्पण दान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों के लिए इसमें भागीदारी करना और अधिक सुविधाजनक होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राजधानी में सतत अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने पुराने और उपयोग योग्य कपड़े अर्पण केंद्रों पर दान कर इस जनभागीदारी अभियान का हिस्सा बने।
7: आज का ये अर्पण वस्त्र केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबकी साझी जिम्मेदारी है और मैं ये मानती हूँ कि इस जिम्मेदारी का निर्वाह हम सब लोग मिलकर करेंगे। अपने घर से जो भी आपको कपड़ों का सामान नजर आए, भगवान जी के वस्त्र दें तो वो ले जा करके अर्पण केंद्र पे दीजिए और उस समाज को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, जिससे किसी बहन को रोजी रोटी भी मिलेगी और समाज से इस तरह का जो अपविष्ट है, जो गंदगी है, वो भी खत्म होगी।
6: दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली सचिवालय में इस बैठक का उद्देश्य राजधानी को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार राजधानी के लिए ऐसा हरित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रही है जहां उद्योग, तकनीक और पर्यावरण एक दूसरे के सहयोगी बने। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि मजबूत उद्योग और सुरक्षित पर्यावरण दोनों साथ साथ आगे बढ़े, तभी दिल्ली का भविष्य और बेहतर बनेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के कृषि मंडियों के पुनर्विकास और विभिन्न मंडियों के प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गाजीपुर, नरेला, IFC गाजीपुर आदि से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया और मंडियों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी ली गई। एक रिपोर्ट।
8: बैठक में गाजीपुर में लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे आधुनिक पोल्ट्री मार्केट की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का लगभग 85% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस आधुनिक पोल्ट्री मार्केट में 100 थोक व्यापारियों की दुकानें और 120 प्रोसेसिंग यूनिट विकसित की जा रही है। गाजीपुर फल सब्जी और फूल मंडी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मंडी में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए 200 मीटर लंबी बाईपास ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा मंडी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से आवारा पशुओं को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में नरेला अनाज मंडी में 2 अतिरिक्त स्टील शेड विकसित करने के प्रस्ताव और गाजीपुर में इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित आधुनिक फूल मंडी परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की कृषि मंडियां किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए इन मंडियों को समय की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुव्यवस्थित और बेहतर आधारभूत ढांचे वाली मंडियां न केवल व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाएंगी बल्कि पूरी कृषि विपणन व्यवस्था को भी अधिक समक्ष बनाएंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप से।
6: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। एक रिपोर्ट।
9: उत्कलमणि के नाम से प्रसिद्ध गोप बंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1870 को ओडिशा के पुरी में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता, शिक्षा के प्रसार, समाज सेवा और गरीब तथा वंचित वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित गोप बंधु दास ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और मानवीय सहायता कार्यों का भी नेतृत्व किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि गोप बंधु दास ओडिशा की एक महान और प्रेरणादायक विभूति है।
10: एक मोमेंट फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा।
11: ये ओडिशा के साथ साथ पूरे देश के लोगों के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर है। हम सभी जानते हैं कि उत्कलमणि गोप बंधु दास ओडिशा के एक महान और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उन्होंने पत्रकार, कवि और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। अपने जीवन काल में उन्होंने ओडिशा और देश के लोगों के लिए ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
9: दिल्ली में गोप बंधु दास की प्रतिमा लोक सेवक मंडल की ओर से स्थापित की गई है। इस संगठन की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। राष्ट्रीय राजधानी में उनकी प्रतिमा का अनावरण स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दी गई महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। विशाल दास की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
6: दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में आज अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। अस्पताल में उन्नत आपातकालीन विभाग के साथ धर्मशाला और नेत्र रोग विभाग में स्थापित अत्याधुनिक उपकरण सहित अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि चिकित्सक समाज में भगवान के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहीं स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि अस्पताल निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है और यहां के चिकित्सकों की विशेषज्ञता, आधुनिक मशीनें तथा सुदृढ़ आधारभूत ढांचा हजारों मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करा रहा है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज उत्तरी दिल्ली स्थित नजफगढ़ नाला पर नए पैदल पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह नया फुटब्रिज गुडमंडी, राजपुरा, रूपनगर, मुखर्जी नगर और यमुना मार्ग को आपस में जोड़ेगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली सरकार की नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर सार्वजनिक आधारभूत ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार के दौरान पुलों का कोई व्यापक सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया गया जिसके कारण कई महत्वपूर्ण संरचनाओं की समय पर जांच नहीं हो सकी। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के सभी पुल, फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज का व्यापक ऑडिट करा रही है जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह राजधानी में सुरक्षित, टिकाऊ और जन केंद्रित आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में कल रात एक मकान की छत गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने दोनों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान तलाशी अभियान भी चलाया गया और मलबे में किसी के भी होने की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करें, घटना की गहन जांच सुनिश्चित करें और सभी आवश्यक कार्रवाई करें। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को मुंडका से गिरफ्तार किया है और उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी आबकारी अधिनियम के दो मामलों में शामिल रहा है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने एक महिला शराब तस्कर को बवाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध शराब बरामद की है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली महापौर कार्यालय को आज सुबह एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई। ये आठवीं बार है जब कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए महापौर कार्यालय द्वारा तत्काल सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न के एक मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ये मामला विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत महिला पहलवानों द्वारा सिंह के महासंघ प्रमुख रहते हुए दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा था। ये मामला 2023 का है, जब महिला पहलवानों ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर श्री सिंह के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता तथा कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्र ने सभी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रत्येक जीवन शिवमय हो, प्रत्येक परिवार सुखी रहे और राष्ट्र निरंतर वैभव के पथ पर अग्रसर हो। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कल नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी पदक विजेताओं को भी बधाई दी।
12: हमारे एथलीट्स ने गोल्ड मेडल जीत करके दिल्ली को दिया, भारत को दिया।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय खिलाड़ियों के ग्लासगो में यादगार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। और दिल्ली में आज दिनभर मौसम सामान्य रहा। राजधानी के कई क्षेत्रों में दोपहर में हल्की बारिश हुई। अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़े के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं आती है।
1: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट
2: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। समय हुआ है 8:20। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म का नाम है लक्ष्मी, और इस गीत को आवाज दी है रैपर विरूस ने, और गीत रचना और संगीत दिया है उल्लू मानती ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

इंद्रप्रस्थ चैनल के गीत मालिका कार्यक्रम में अभी जो गीत आपने सुना, फिल्म का नाम कश्मीर की कली, गायक कलाकार मोहम्मद रफी और गीत रचना थी SH बिहारी की और संगीत दिया था

ओपी नैयर साहब ने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं शान और आमिर खान को, फिल्म का नाम है तारे जमी पर। संगीत निर्देशक हैं शंकर एहसान लॉय।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है बरसात और गीत रचना है हजरत जयपुरी की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, गीत रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म आराधना में। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है SD वर्मन ने।

और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं असित देसाई, हेमा देसाई और अलाप देसाई को फिल्म शिवोहम में शिव तांडव स्त्रोत के साथ। संगीत दिया है अस्ति देसाई ने, तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत शिव तांडव स्त्रोत।

0: और आपकी कसम फिल्म में किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ आज का ये गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी में और फिर 9 बजे अंग्रेजी में और 9:15 पर उर्दू में समाचार सुन पाएंगे। तो कुछ ही पलों में प्रतीक्षा करें हमारे अगले कार्यक्रम की, समाचारों की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या

0: 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फिल्म्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।

0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब देश एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
4: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज

0: की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar, BJP retains Manjalpur in Gujarat, Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jhakar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Fama in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. Our correspondent has more details.
4: Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during a student's protest over the NEET issue. Lok Sabha was adjourned thrice, while the Rajya Sabha was adjourned twice. Due to the ruckus, question hour in both the Houses could not be taken up. However, amidst uproar, the Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Rajya Sabha passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. It will amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 to address payment delays and simplify dispute resolution. Besides, the Indian Statistical Institute Bill 2026 and the Bankers Books Evidence Bill 2026 were also introduced in the Lok Sabha. With Anupam Mitra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: In assembly by-elections, Jan Suraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Datia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. A report.
5: Prashant Kishore maintained the lead from the very first round of counting, which continued through all 31 rounds. He secured 41.23% of the total votes polled. BJP's Neeraj Kumar finished second with 34.40% of the votes, while RJD's Rekha Kumari secured 10.45%. The by-election was conducted following the resignation of former BJP MLA Nitin Nabin from the seat. The BJP has suffered its first defeat in the Bankipur Assembly constituency in 35 years. The by-election recorded a voter turnout of 34.31%, the lowest ever since the constituency came into existence in 2010. Nidhi Shree for Akashvani News, Patna.
3: In Gujarat, BJP candidate Satish Patel.

सामिन की खिदमत में आधा वर्ष, ये आकाशवाणी है। शब के सवा नौ बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की तीसरे मजलिस के नशात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस के नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के अलावा डीटी फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। आज से कुछ ही देर के बाद यानी 9:20 पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज आप महसूस होंगे चंदन दास की गई गजलों और गीतों से। 9:45 पर खबरें नशे की जाएंगी और 9:55 पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। रात 10 बजे मार्केट मंत्र प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे और 10:30 पर प्रोग्राम पेश किया जाएगा तामिल इरशाद। फरमाइशी फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बरे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन और सुर्खियों में ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 11:30 पर। के पौने 12 बजे कवालियां पेश करेंगे अब्दुल हमीद साबरी कवाल और हमलावा और शब के 12 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी। बारिश के 10 मिनट पर क्लासिक मौसीकी में आप सुनेंगे अनंत लाल और हमलावा से शहनाई पर बजाया राग पूर्या कल्याण। 12:30 हम आपकी नजर करते हैं आखिर शब प्रोग्राम में चंद पुराने फिल्मी नगमे, ऐसे नगमे जो हमेशा सदाबहार। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शब 1 बजे उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ़ से मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: इस गजल के साथ ही आज का एक फनकार प्रोग्राम अब खत्म होता है। इस प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे चंदन दास की गई चंद गजलों और गीतों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की के

बिल को राज्यसभा ने मंजूर कर लिया है। असेंबली इंतखाबात में जन सुराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मंजालपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर फिर से जीत हासिल की है। कर्नाटक के वजीराला डी के शिव कुमार ने 19 नए वजरा शामिल करते हुए काबीना में तौसीह की है। आसाम, मेघालय, जैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पीओजेके में रात में सूरत हाल अबतर हो गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की जिन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया था। और नौजवान साइकिलिस्ट हर्षिता झाकड़ स्विट्जरलैंड में टूर डे फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इन 37 जजों में भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई के महीने में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया था। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में रिफॉर्म यानी इस्लाह, परफॉर्म यानी कारकर्दगी और ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव का मंत्र मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। जनाब मेघवाल ने कहा कि अदालती शोबे में जारी इस्लाही अमल में ये अहम बिल है। इससे पहले अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ मामलों पर एहतजाज के दौरान लोकसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरक खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद जनाब बिरला ने वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की, तहम अपोजिशन अराकीन ने तलबा के एहतजाज के दौरान की गई मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन के कुछ अराकीन की जानिब से जानबूझ कर रखना अंदाजी करने पर तशवीश का इजहार किया। इस दौरान शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय शुमारियाती इदारा बिल 2026 पेश किया। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर बही खाता शवाहिद बिल 2026 पेश किया। दूसरी जानिब राज्यसभा ने हंगामा अड़ाई के दौरान माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस बिल का मकसद माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट कानून 2006 में मजीद तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर और तनाजों के इजाले के तरीकेकार को आसान बनाना है। जमहूरिया उज्बेकिस्तान के उमूर खारजा के वजीर सईदोव बख्तियार ओदिलचोव ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनाब ओदिलोविच और उनके वफद का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात हैं जो कदीम तिजारती रास्तों से वाबस्ता हैं। सदर मुर्मू ने कहा कि 16,000 से ज्यादा भारतीय तालिब इल्म उज्बेकिस्तान में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि ये तालिब इल्म दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करते हैं और बाहमी मुफाहमत और मजबूत अवाम से अवाम राब्तों को बेहतर कर रहे हैं। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने आज उजागर किया कि भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में पिछले वर्षों में तौसीह हुई है और आज ये बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों में मुतनव्व हैसियत रखते हैं। इनमें तामीर, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबे शामिल हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा बख्तियार सईदोव के साथ मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन $1 अरब की बाहमी तिजारत है। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजालपुर नशिस्त पर अपनी जीत बरकरार रखी है। यहां उसके उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भिक्का भाई रबारी को 30,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। ये सीट सीनियर बीजेपी रुकन असेंबली और गुजरात के साबिक वजीर योगेश पटेल के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी, जहां जिम्नी इंतखाब जरूरी हो गया था। वहीं जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके में जीत हासिल की है। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जहां 1995 के बाद से बीजेपी को शिकस्त का सामना नहीं हुआ था। जनाब प्रशांत किशोर ने अपने करीब तरीन बीजेपी हरीफ नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दतिया सीट बरकरार रखी है, जहां जिमनी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने अपने करीब तरीन बीजेपी हरीफ आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इन तीन असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग पिछले महीने की 30 तारीख को हुई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: कर्नाटक ने गवर्नर थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के राजभवन में 19 कानून साजों को ओहदे का हलफ दिलाया। वजीर आला डी के शिव कुमार, जिन्होंने 3 जून को अपने 13 वजीरों के साथ वजीर आला का ओहदा संभाला था, को काबीना की तौसी के लिए 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा। इस तौसी के बाद कर्नाटक काबीना अराकीन की तादाद बढ़कर 33 हो गई है। कुछ कानून साजों की जानिब से काबीना में शामिल न किए जाने पर मायूसी जाहिर करने पर वजीर आला डी के शिव कुमार ने कहा कि हर किसी को जगह देना मुमकिन नहीं है। वजीर आला ने इन कानून साजों को मुस्तकबिल में मौका देने की यकीन दहानी कराई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफाई इको निजाम को मुस्तहकम करने के लिए वजारत दिफा की फौजी और सिविलियन शाखों के दरमियान वसी तर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज 85वें मुसल्ला अफवाज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज के दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि इससे उभरते हुए सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजों पर मौसर तरीके से तवज्जो मरकूज की जा सकेगी। ईरान ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तर्दीद करते हुए कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालिसकारों के जरिए आज ईरान के साथ मुजाकिरात का प्रोग्राम है। अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स वन पर सवार सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती मसरूफियात की वजह से उन्होंने अपने असल मंसूबे को रोक दिया है। इससे पहले जनाब ट्रंप ने इंतहाई शदीद हमले का इंतबाह दिया था। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। बकाई ने मजीद कहा कि वजीर खारजा अब्बास अराकची को छोड़कर, जो मजहबी दौरे पर इराक गए हुए हैं, के अलावा सभी ईरानी मुजाकिरातकार फिलहाल मुल्क में ही मौजूद हैं। जनाब बकाई ने मजीद कहा कि फिलहाल सिर्फ ओमान के साथ आमनाए हुरमुज के इंतजाम से मुतालिक मुजाकिरात जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक ऐसी ही सूरत हाल के कायम रहने की पेशगोई की गई है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में सूरत हाल रात में अबतर हो गई, क्योंकि एहतजाजियों ने मुंतशिर होने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों पर गोली चला दी। पीओजेके से आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आधी रात में एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसमें रावलाकोट में गोली चलने की खबर दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अहदेदार ने कहा कि खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में एहतजाज में शामिल होने के साथ ही गोली चलाने की खबरें मिली हैं। बहुत सी खवातीन और बच्चे पिछले 50 दिन से एहतजाज की जगह पर मौजूद हैं, जिनके साथ गुज़िश्ता रोज़ मजीद दर्जनों अफराद एहतजाज में शामिल हो गए। पूरे पीओजेके से लोग इस एहतजाज में शामिल हैं, जो कि तेजी के साथ पूरे खित्ते में फैलता जा रहा है। नौउम्र भारतीय साइकिलिस्ट हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड के टूर डे फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बनकर तारीख रकम की है। 19 साल हर्षिता ने कल दूसरे मरहले के आगाज के दौरान सबर आजमा रेस में 8 होनहार खिलाड़ियों में जगह बनाई। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दी है। बहुत छोटी छोटी और दरमियाने दर्जे की सनअतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने मंजूर कर लिया है। और असेंबली इंतखाबात में जन सुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मंजालपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर फिर से जीत हासिल की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। समय हमारे नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल एप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। मशवरे सेहत के। कुछ बातें सेहत के हवाले से लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज कुछ मीठी मीठी बातें कर ली जाएं। मीठी मीठी बातें जी वैसे तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन आज खास तौर पे कुछ ज्यादा मीठी बातें करने का दिल कर रहा है। यानी हम बात करना चाहेंगे आज के इस सेगमेंट में डार्क चॉकलेट के हवाले से। एक तो लजीज होती है, देखकर मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जनाब ये डार्क चॉकलेट सेहत के एतबार से अगर देखा जाए तो कई फायदे ये अपने अंदर रखती है। अभी तो मूड अच्छा करने के लिए डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं और मैग्नीशियम और आयरन के अलावा विटामिन्स भी मौजूद होते हैं। कोको में पॉलीफिनॉल वाफर मकदार में पाए जाते हैं और ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके सेल्स की हिफाजत करते हैं, खलिया की हिफाजत करते हैं और आपके आपकी सेहत को जो है बरकरार रखने में ये मुआविन साबित होते हैं। चूंकि डार्क चॉकलेट में पॉलीफिनॉल मौजूद होता है जैसा हमने आपको बताया, तो ये आपके मैदे के लिए बहुत ही अच्छा है, चूंकि इसमें मैदे में मौजूद आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को की अफजाइश में मदद करता है और कई तहकीकात से ये भी बात सामने आई है कि खून की नालियों में जो खून का बहाव है उसमें बेहतरी आती है। और कोको में जो भी गजाई अज्जा पाए जाते हैं वो न सिर्फ खून के बहने को बेहतर बनाते हैं बल्कि आपके दिल और दिमाग को भी सेहतमंद रखने में मुआविन साबित हो सकती है डार्क चॉकलेट। और डार्क चॉकलेट जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है, ये न सिर्फ अच्छे बैक्टीरिया आपको देती है बल्कि पेट को ये आपके मैदे को या पेट को ये तवानाई भी देती है और अच्छे बैक्टीरिया जो है इसमें अफजाइश पाते हैं। और डार्क चॉकलेट में ग्रीन टी या रेड वाइन की बनिस्बत ज्यादा एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं और इसमें ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मुआविन साबित होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की सतह को और जहन को तेज बनाने में ये मददगार साबित हो सकती है डार्क चॉकलेट। और डार्क चॉकलेट से और क्या क्या फवाइद हासिल हो सकते हैं ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। हमने जैसा कहा कि मूड को ये बहुत ही उम्दा करती है और जब भी आपको लगे कि आपको फौरन तवानाई की जरूरत है तो डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और फौरन आपको तवानाई हासिल होगी। और फाइबर्स बहुत ज्यादा हैं और कम से कम 70% कोको से बनी डार्क चॉकलेट में वाफिर मकदार में जो है गजाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसा हमने आपको बताया आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज की जो काफी अच्छी मकदार होती है, साथ ही इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक के अलावा विटामिन ए, बी, ई और के की कुछ मकदार भी पाई जाती है। औसतन 100 ग्राम डार्क चॉकलेट बार में तकरीबन 11 ग्राम या 0.3 औंस फाइबर होते हैं जो आपके मैदे के लिए उसकी सेहत के लिए फायदेमंद है। और डार्क चॉकलेट में कुछ मकदार में कोको बटर भी होता है जो दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है। और हालांकि ये ध्यान भी रखना चाहिए कि कुछ लोगों को इससे परहेज भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है जो डायबिटिक हैं उनके लिए कहा जाता है कि मीठे से थोड़ा सा दोस्ती ना करें, उनसे दूरी इख्तियार करें तो ज्यादा बेहतर होता है। और आंतों के लिए बहुत उम्दा है और जैसा कि हमने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल की सतह में जो है ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को उसकी मकदार को बढ़ाने में जो है ये फायदेमंद और मुआविन साबित हो सकती है डार्क चॉकलेट। और जहन आपका तेज होता है और याददाश्त में भी इजाफा होता है और स्किन या जिल्द की अगर बात की जाए तो एंटी ऑक्सीडेंट इसमें काफी ज्यादा मकदार में पाए जाते हैं, इसी वजह से ये आपके चेहरे को चमकदार बनाती है, झुर्रियों को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है डार्क चॉकलेट। और कुछ तहकीकात से ये भी पता चला है कि चॉकलेट को मुहासों की परेशानी और भी बदतर बनाने से अलग जोड़ा जाता है, लोग कहते हैं खासतौर उन लोगों में जो इस परेशानी से दो चार रहते हैं, तो ऐसे अफराद जो है डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा भी और कुछ बहुत सारे फवाइद आपको बताए जा सकते हैं लेकिन वक्त की तंगी है दोस्तों, तो इस सेगमेंट में डार्क चॉकलेट के हवाले से बस इतना ही। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर, और ये जब सुनिए

0: मार्केट मंत्र प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें श्रोताओं कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 550 points. Nifty settles above 24,700. In Asian markets, South Korea's Kospi slips over 5%. And global crude oil prices tumble.
1: देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 550 अंक से अधिक बढ़ा. निफ्टी 24,700 पर बंद हुआ. एशियाई शेयर सूचकांकों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5% से अधिक फिसला. और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.
0: एंड बिफोर वी बिगिन द प्रोग्राम, एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट. द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन दिस प्रोग्राम आर देयर ओन एंड नॉट दोज ऑफ आकाशवाणी. आकाशवाणी एडवाइजेस इट्स लिसनर्स टू डू देयर ओन रिसर्च और कंसल्ट अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन. वी फर्दर एडवाइज ऑल लिसनर्स टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड रिलाय ऑन देयर ओन जजमेंट फॉर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन. प्राची
1: और श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने किस तरीके का व्यवहार किया. घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांक लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 544 अंक यानी 0.7% बढ़कर 78,639 पर बंद हुआ. निफ्टी 391 अंक यानी 1.6% की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 1.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% बढ़ा.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेज एंडेड इन पॉजिटिव जोन फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन टुडे. The Sensex rose 544 points or 0.7% to close at 78,639. The Nifty surged 391 points or 1.6% to settle at 24,774. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index jumped 1.2% and the Small-Cap 100 Index gained 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंडिगो 4.2%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 3.5% से अधिक और इन्फोसिस में 3.5% की बढ़ोतरी हुई. वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सनफार्मा 2%, भारती एयरटेल और मारुति 1% और टाटा स्टील में लगभग 0.5% की गिरावट आई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, IT, as well as focused IT, advanced 2.7%.

0: Services rose 2% and industrials gained 1.3%. In contrast, hospitals lost 0.6% and healthcare dipped 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,837 companies advanced, shares of 1,552 companies declined and shares of 206 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 5 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 34 पैसे पर बंद हुआ. शरद जी, हमने हम अगर आगे की बात ना भी करें कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो बाजार है उसकी चाल रहेगी, अगर हम तथापि आज की बात करें तो आज के परिदृश्य में आप किस तरीके से देखते हैं कि जो मार्केट है वो हमें क्या संदेश देना चाह रहा है, निवेशकों को खास करके जो नए तौर पर जुड़ना चाह रहे हैं?
2: देखिए, बहुत समय बाद मार्केट ने जो आज लेवल पे क्लोज हुआ है जिसका भी आप जिक्र कर रही थी, तो वो लेवल बहुत समय से इंतजार था. 24,500 हम निफ्टी की बात करें तो 24,500 के आसपास घूम रहा था और उसके ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा था जब जब वहां जाता था. तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट से जो संदेश आया है, वॉर से ये जो एक तरह से विराम लगा है, मैं इसको ऐसे कहूंगा कि विराम की एक उम्मीद बनी है, क्योंकि पिछले 5 महीनों में ना जाने कितनी बार हम ये लगता था कि अब समझौता हो गया, अब अटैक नहीं होगा, अब होगा फिर नहीं होगा, फिर इधर से कुछ थ्रेट आता था, उधर से कोई धमकी आती थी. तो मुझे लग रहा है कि उम्मीद ये करते हैं कि थोड़ी वॉर फटीक अब जैसे आ रही है, तो अगर वॉर फटीक आ रही है तो ये वहां पर थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ेगा और मार्केट इसी का इंतजार कर रहा है. मार्केट को देखिए, मार्केट में एक जो अनिश्चितता का माहौल बना था, और मुझे लगता है सभी लोगों को इसको जानना चाहिए, मार्केट अच्छी खबर को सेलिब्रेट करता है, बुरी खबर को भी हजम कर जाता है, पर एक चीज जो नहीं हजम होती है वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी. तो ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा और कहां तक फैलेगा, इसको लेकर मार्केट अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के चलने की जरूरत है. इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी पिछले 5 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि युद्ध रुकने की घोषणा हुई, रुका भी रहा, पर फिर उसके बाद कुछ हो गया. तो आई थिंक अभी भी फूक फूक के पग भरने की जरूरत है, पर एक खुशखबरी जैसा आप कह रही है, आज बात करें तो जरूर है.
0: Of course, we will continue with this discussion, Sharad ji, but before that, let me repeat the numbers. Prachi, if you'll just repeat the numbers for our listeners, where they can call us with their queries.
1: बिल्कुल श्रोताओं, आप हमें कॉल करिए, कोई भी सवाल आपके मन में हो, व्यापार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल करिए इन नंबरों पर. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0488 और 2371-7106 पर. मार्केट मंत्र है ये प्रोग्राम और हमारे समक्ष जो मार्केट विशेषज्ञ हैं शरद कोहली जी, वो विराजमान हैं. तो अपना कोई भी सवाल बेधड़क पूछिए.
0: शरद जी, लेट्स गेट बैक टू द मार्केट. इफ यू लुक एट द वे द सेंसेक्स एंड द निफ्टी टुडे बिहेव्ड, सेंसेक्स रोज अबाउट 0.7%. इन कॉन्ट्रास्ट वी सॉ निफ्टी सर्जिंग 1.6%. डू यू थिंक इट हैज, एंड इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, द निफ्टी 50 जम्प्ड नियरली 200 पॉइंट्स इन जस्ट 2 मिनट्स टुडे. सो इज इट समथिंग टू डू विद द न्यू यू नो दैट रूल दैट हैज कम आउट रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ अवर बिजनेस? If you can just explain to our listeners.
2: Yes, I think the additional 10 minutes added to the derivatives market in NSE did contribute its bit. Because let us try and understand this. Yeah. What happens is that there is a weighted average which is calculated for half an hour, the last half an hour in the cash section. So what used to happen is that the F&O traders, you know, had to ultimately close their deals on the basis of the price final determination which happened. Now what happened was cash and F&O used to happen together. So that used to lead to a panic. So F&O traders did not get any time, sometimes they never used to get that time to settle down the prices. Now these additional 10 minutes has allowed the F&O traders to allow the cash section to close down so they can know what the price discovery is and then take a call on whether they want to carry forward the deal or they want to square it up. Yes, so because this was the first day.
0: And it happened only on the NSE.
2: Only on the NSE. Yes. So because this was the first day, Anubhav, so what has happened is that, the traders were excited. They wanted to test waters. Mm-hmm. I think with the flux of time, as the days progress, you will see normalcy will return. You will not see this last minute spurges which happened today.
1: Right. Delhi se hamare saath pehle caller jud rahe hain. Inka naam hai Idris. Ji. इद्रीस जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछें.
3: नमस्कार जी.
1: नमस्कार.
3: मैं बैंक में गया था, वो नंबर

0: लिंक करवाने खाते से।
1: हाँ जी।
0: तो मैडम का अंगूठा लिखा हुआ लगा हुआ है तो कह रहे हैं ये नहीं नंबर लिंक नहीं होगा।
2: जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं और एक आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे अपना रेडियो प्लीज आप पीछे से बंद कर दीजिए।
0: अच्छा
2: जी हाँ अब आप बताएं आप किस नंबर की बात कर रहे हैं।
0: खाते से नंबर लिंक करवाने गया था।
2: अच्छा जी ओके।
1: तो उन्होंने आपको कहा कि आपका मैडम का नंबर लिंक्ड है आपकी मतलब आपकी
0: मैडम का खाता है उनका अंगूठा लगा हुआ है तो वो कह रहे हैं अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा।
1: अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा इसका मतलब बैंक वाले ने सिग्नेचर्स के लिए शायद इंसिस्ट किया होगा।
2: जी
0: हाँ।
1: तो आप तो खाता आपकी वाइफ का शायद था शायद आपका नहीं होगा।
0: वाइफ का है और उन्हीं का
1: नहीं नंबर तो उनको अगर अगर थंब इंप्रेशन भी है तो नंबर तो उनको लिंक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो मैंडेटरी आजकल। तो इसमें इदरीस जी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बैंक के किसी सीनियर ऑफिसर से मिलें। आपकी हमारी आवाज वापस आ रही है फोन से तो आप प्लीज रेडियो सेट की आवाज कम करें। तो उससे आपको किसी सीनियर मैनेजर से मिलना चाहिए क्योंकि खाली थंब इंप्रेशन होने का यह मतलब नहीं है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा। क्योंकि इवन यू नो आपको मैं अनुभव और प्राची को भी बताऊं कि जो बायोमेट्रिक तो आधार में भी होता है और बायोमेट्रिक आजकल फोन में भी चाहिए होता है। तो इसलिए देयर इज नो रीजन मुझे लगता है बैंक वालों को पूरी जानकारी नहीं है। इदरीस जी आप किसी सीनियर मैनेजर से मिलिए और उनको नंबर लिंक करना ही पड़ेगा ये मैंडेटरी आजकल।
2: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। अनिल इज ऑनलाइन विद अस। अनिल वेलकम टू मार्केट मंत्रा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: यस मैम। कोली सर आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन रिगार्डिंग द एफएनओ पीएनएल टू बी सबमिटेड इन अलोंग विद द रिटर्न।
1: श्योर।
3: When we submit, we take the net debit to net credit as sales,
1: yeah.
3: And then take out the profit,
1: yeah.
3: Isn't it?
1: Yeah,
3: so, but the turnover is, you say, it is high, but we are not supposed to take the actual figures of the derivative,
1: yeah.
3: Right?
1: Yeah.
3: Only loss and profit is to be taken.
1: Absolutely. Absolutely, Anand. You are spot on. If you take the total, then it will be very, very high. So the net profits and losses or net debits and credits are to be taken. You need not take, I mean, if you, I mean, to make our other listeners understand with your permission, Anubha and Prachi. Because what happens is when you take a lot, suppose you're taking it in futures. So the lot size turnover may be very, very high. So that way, you know, somebody who's made probably 30,000-40,000 rupees, he may end up showing a turnover of 60-70 crores. Yes, Anilji, your understanding is absolutely spot on and I don't need to elaborate any further because you're perfectly on track.
2: जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
4: थैंक यू।
2: जितेंद्र जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आपसे। जी आपसे दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा अपना सवाल पूछें। जी लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं अनुभव हम आगे बढ़ते हैं। रुक करते हैं एशिया के शेयर सूचकांकों की तरफ। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 5% से अधिक और जापान का निकेई सूचकांक लगभग 1% नीचे आया। जापान और अमरीका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए एक समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है। टोक्यो ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह आगे भी कार्रवाई करने को तैयार है। जापान के वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमरीका वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की। वित्त मंत्री कातायामा यात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। श्रीनाथ जी आई लाइक टू यू नो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट हैज हैपेंड दैट वेयर जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव कन्फर्म्ड अ कोऑर्डिनेटेड येन बाइंग इंटरवेंशन टू हॉल्ट as Prachi just read, to hold the Japanese currency slide to 40 years low. What does it mean exactly when, you know, two countries come together and do this kind of coordination like this?
1: We need to understand, Anubha, that Japan is a very close ally of the US. And it is true that the Japanese yen was collapsing, it was falling, it was sliding like anything. Although, I must point out here that when a currency slides, because Japan is primarily an export-driven market, so the exporters were gaining.
2: Yeah.
1: But because of the interest rate hikes in Japan, the currency currency was losing value. So US as a true ally came to the rescue, and they started buying yen and selling dollars to stabilize the yen. But you know, for how long this will go on is a question mark, because if they sell too many dollars, you know, it will start impacting US dollar as a currency. But for now, this has been intervened. Let's see. I'm very closely watching this particular event, because we monitor forex currency management you know, very, very closely, and it's a very interesting alliance. You know, I wish this kind of alliance could be there with the rupee as well, but because Japanese yen is amongst the dollar index currencies, so that is why US is intervening in it.
2: So is it the first time you're looking at something like this, or this is a practice you know, which has been around?
1: No, it has happened earlier as well. Okay. Because there were a few years ago when Japanese yen in fact, then Japan had deliberately devaluated it. We've seen China has, yes, devaluated its yuan in the past. So sometimes when you are export driven economy and your currency becomes weak, it becomes beneficial for exporters for that matter.
2: मुंबई से हमारे साथ इस बीच रत्नाकर जुड़ रहे हैं. रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो, गुड इवनिंग मैडम. मेरा सवाल है कि फार्मा सेक्टर के बारे में 100% ड्यूटी लगाने की बात सुनी थी, तो वो फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना कैसा उचित रहेगा क्या? पैसा भी अभी आईटी सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, आईटी सेक्टर भी बढ़ रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा रहेगा? और दूसरा एक छोटा सवाल है कि मैंने 2023 में एक मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट रखा था स्टेट बैंक में, तो 26 को 1 अगस्त को अभी ड्यू होने वाला था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो 26 का डिपॉजिट और 29 तक उन्होंने रिन्यू कर दिया, जो मैंने दिया ही नहीं था. तो ऐसे हालत में वो ऑटोमेटिक कैसे रिन्यू हो गया? उसके लिए
1: प्रीमैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं. ओके, रत्नाकर जी, पहले आपके पहले वाले सवाल पर आते हैं. देखिए, फार्मा सेक्टर पे जो 100% टैरिफ की प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात करी है, वो 2 साल बात करी है पहले, तो अभी नहीं लगने वाले हैं. तो अभी मुझे कोई फार्मा सेक्टर में कोई खामी नहीं नजर आती, कोई कमी नहीं नजर आती. आप बहुत आराम से उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जब बात आती है तो दुनिया भर में अब ये चर्चा है कि वो अपने निर्णय बदल भी देते हैं, और अभी तो 2 साल बहुत दूर है. दूसरा ये भी देखना होगा कि 2028 में तो उनका टर्म ही पूरा हो रहा है, तो इसलिए उसमें फार्मा सेक्टर मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही. आप अच्छी कंपनीज का चयन करके, ऐसे ही आईटी सेक्टर में भी है जो कंपनीज अच्छी हैं, यहां हम कंपनीज का नाम नहीं लेते, पर जिन कंपनीज के नतीजे अभी अच्छे आए हैं, मुनाफा अच्छा आया है, मार्जिन अच्छे आए हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं. आपका दूसरा सवाल मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का, ये हुआ क्या होगा, जब आपने डिपॉजिट किया होगा तो उस समय इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल की ऑप्शन उसमें टिक हो गई होगी, इसीलिए बैंक से वो रिन्यूअल हो गया है. अब आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो आप कभी भी निकल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. आप जब बैंक को बोलेंगे कि मैंने तो नहीं कराया था, तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं. इसमें प्रीमेच्योर एनकैशमेंट पूरी तरह से अलाउड है. आपने को मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड, बैंक का कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें लॉक इन नहीं होता. ये पोस्ट ऑफिस में देखा जाता है जहां लॉक इन होते हैं, जहां पर आपने एक बार कर दिया तो बहुत जल्दी आप निकल नहीं सकते. तो बिल्कुल रत्नाकर जी, बैंक जाइए, और अगर आप निकालना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं. कोई दिक्कत हो तो आप मार्केट मंत्रा को बताइए, हम आपको इसको और स्पष्ट करेंगे.
2: और जो भी इनकी लास्ट डेट थी, उससे जब ये निकालेंगे तो शरद जी, जैसे कि एक कॉमन प्रैक्टिस है, उनको उतने दिन का इंटरेस्ट उनको और मिल जाएगा.
1: हाँ, पर उसमें कुछ कटौती
2: भी होगी,
1: पर उसमें थोड़ा सा पेनल्टी वो लगाते हैं, क्योंकि प्री मच्योर माना जाता है. पर क्योंकि आप पैसा चाहते हैं, आप तो पैसा यूज करना चाहते होंगे, या कुछ और विकल्प आप ढूंढ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए.
2: देखते हैं अगला सवाल क्या है. भोपाल से शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: सर, मेरा सवाल है कि थोड़ी सी मार्केट में रौनक आई है, क्योंकि ये FII का आने का सिलसिला शुरू हो गया है
1: जी.
5: तो ये अब यूथिंग की अब ये ट्रंप की और नवंबर आने वाला है, ट्रंप को थोड़ा सा वहां पे भी थोड़ा झटका डर रहेगा, और इलेक्शन का तो थोड़ा स्टिमुलेट होगी हमारी मार्केट. And this will be the last time we will be seeing these levels, and we should see higher levels. क्या आपकी निफ्टी के बारे में गेस है फॉर नेक्स्ट 2 years before Trump retires? Thank you, sir.
1: नहीं, ट्रंप शंकर, पहले तो ट्रंप रिटायर नहीं हो रहे हैं. ये जो इलेक्शन होता है नवंबर में, ये मिड टर्म पोल्स कहलाते हैं. ये अमेरिका में दो, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और उसको सेनेट कहते हैं, और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दो साल का होता है, उनका टर्म पूरा हो रहा है, सेनेट में भी कुछ सीट खाली हो रही है, तो वहां उसके बाद अगर मान लीजिए मेजोरिटी रिपब्लिकन्स की नहीं रहती है तो फिर उसको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई वो अप्रूवल नहीं ले सकते। पर आपका मूल मुद्दा ये था, मैं यहां पर पॉलिटिकल साइंस में चला गया, आपका मूल मुद्दा था कि क्या ये रौनक रहेगी। देखिए ये अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि पिछले 5 महीने से ऐसा कई दफे मौका आया जब ऐसा लगा, ये जो रौनक शब्द आपने इस्तेमाल किया कि रौनक आ रही है वापस, तो जब भी रौनक आने लगती है तो फिर अब रौनक का उल्टा कुछ होता होगा, तो मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, वो होने लग जाता है वहां पर, मैं बहुत निराशावादी।

0: हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। रवि जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया
1: मुझे मार्केट मंत्री को नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ जैसे ईरान और अमेरिका का
0: जी सवाल पूछे प्लीज।
1: अमेरिका और ईरान का जो युद्ध ड्राम लग रहा है, ये कब तक क्लियर होगा?
2: अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम लग रहा है, कब तक क्लियर होगा? क्लियर होगा मतलब चलता रहेगा, उम्मीद करता हूँ, यही पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद पे रवि जी, दुनिया कायम है, हम भी कायम है और सारी दुनिया ही ये कोशिश कर रही है। युद्ध किसी के हक में नहीं है, अभी इसी पे चर्चा चल रही है लगातार के उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहे। हम तो यही कहेंगे, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ रवि जी ने अगर जवाब नहीं भी सुना तो बाद में मार्केट मंत्रा यूट्यूब पे भी डल जाता है, उस पर जवाब को कर सकते हैं, तो मैं उसको रिपीट करने से बच रहा हूँ।
0: Let's take the next call. Shehnaz is online with us from Mumbai. Shehnaz, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: Hi, good evening to all of you.
0: Good evening.
3: Please. Sharan ji, मुझे ये पूछना है कि मैंने आप बहुत थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि मेरे इनकम टैक्स के जो पैन कार्ड है उसमें 18 लाख की कार दिखा रही है 26 AS में, और उसका जो 18,000 भरा भी है वो लोग ने टैक्स, राइट? इफ यू रिमेम्बर, पता नहीं, एनी वेज तो वो हिसाब से मैंने ये बार जो टैक्स किया भर दिया मैंने ऑलरेडी, तो क्या हुआ विद इन 24 आवर्स मेरे अकाउंट में 18,000 आ गए, विच इज एज पर आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, मैंने तो पैसे भरे भी नहीं है, तो क्या आगे चल के उसकी रिकवरी आ सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए आगे?
2: अगर
3: मेरे 24 AS में दिखा रहा था इसलिए वो तो कुछ भी नहीं हुआ, फाइनेंशियल लॉस तो मुझे है ही नहीं, लेकिन जब रिटर्न फाइल किया तो दूसरे ही दिन विदिन 24 आवर्स आई टू रियली अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ द टैक्स, बात नहीं मुझे रिफंड आ गया। अभी दूसरी बात ये बतानी है, उसका जवाब आप देना मुझे।
2: शहनाज देखिए, ऐसा लगता है कि शहनाज यू डिड नॉट डू दैट ट्रांजैक्शन, आपने वो 18 लाख की गाड़ी नहीं खरीदी, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि गलती से पैन नंबर आपका कोट हो गया और गाड़ी आपके उसमें दिखने लगी, उसमें 1% TDS होता है 10 लाख से ऊपर की, TCS बोलते हैं, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स, तो 1% का वो जमा करा, आपने रिफंड भी ले लिया। अब मुझे लगता है शहनाज आपको इसको वापस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन ही नहीं है अब, क्योंकि आपके उसमें आया और आपने रिफंड, वैसे आपको कायदे से क्या करना चाहिए था कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम उसको क्लेम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका था नहीं, तो अब हो गया है, तो अब इसको वापस देने के लिए आप तैयार रहिए। मुझे उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि आजकल सब डिजिटल प्रोसेस है, वो कभी ना कभी जिसका असल में है वो व्यक्ति जब देखेगा कि मेरे में दिख नहीं रहे कहां चला गया, तो पता लग जाएगा कहीं ना कहीं गया। तो शहनाज जब तक के लिए पैसे आपके पास हैं आप एंजॉय करिए, पर आप वापस देने के लिए तैयार हैं।
0: यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपैंड इन जुलाई, ऑल्दो द पेस ऑफ ग्रोथ स्लोड टू इट्स वीकेस्ट लेवल इन नियरली 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू द HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI रिलीज्ड टुडे, द सीजनली एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग PMI ईस्ट टू 53.5 इन जुलाई फ्रॉम 54.2 इन जून, इट्स लोएस्ट रीडिंग since August 2021. Despite the slowdown, the index remained above the crucial 50-point threshold that separates expansion from contraction, indicating that manufacturing activity continued to improve. The report said manufacturers continued to benefit from resilient demand, although growth in new orders, input purchases and employment moderated during the month. While domestic demand softened, export orders gained momentum, with firms reporting stronger sales to markets including Canada, Egypt, Indonesia, Kenya, Nepal, South Africa, Thailand and the UAE. Sharanji, quick comment on, I will come to you for a comment on this PMI reading that has come in today. Yeah. But before that, let's take the next call coming in from Noida. Amit is online with us. Amit, welcome to the program. Please ask your question.
4: Yeah. Yeah, thank you, Market Mantra team, and my question is to Mr. Sharad Kohli. Good evening, sir.
2: Good evening.
4: Sir, I am a regular investor in mutual fund. When I say regular, I have done the investment through an investment advisor.
2: Yeah.
4: However, after, you know, exploring the market, I am now planning to move to direct investment.
2: Okay.
4: So, what I have done, I have two funds, which are for me, like I am investing. One is started in March 2026 itself. And other one is the older one, it started in 2017.
2: Okay.
4: So, my question is, shall I go ahead and stop the SIPs here and I can make a direct plan, investment in these? And is there a possibility that these investments which I have done through regular channel, they can be smoothly moved towards the direct? If I...

0: continue with the same course.
1: Well, Amit, I'm still trying to comprehend as to what do you mean by direct investment, because apparently Amit is doing through an advisor.
2: Yeah, and I think these he has done himself, you know, gone ahead and do the...
1: Yeah, yeah, so you can easily move, because Amit, the basic mutual fund investments, they remain in your name. So investment advisor's role is only to the time of recommending you, and then he puts his agency number or whatever. There is nothing which stops you from doing directly, first of all. And if you want to move these investments also directly to your name, you can easily move. You can put in a request to the, or you can exit and probably re-enter. Even that is the option. But stopping SIPs, I may not recommend, because SIPs, you know, a lot of people ask that whether it should be stopped or it should be continued. I think SIPs only benefit when you stay in for long term. But principally, to answer your question, yes, you can go direct. Obviously, I'm sure you've got enough knowledge bank with you where you don't need an advisor and you know which funds are doing better, which are not doing better. So, but principally, yes, you can absolutely do that. There's nothing that stops you.
2: आगे बढ़ते हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी का आह्वान किया है. उन्होंने अगले तीन वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने की बात कही है. उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को अधिक निवेश, व्यापार की बाधाओं को कम करते हुए हेल्थ केयर तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहरे सहयोग से हासिल किया जा सकता है. नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में बोलते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों को एक दूसरे के यहां मौजूद अवसरों में निवेश करने पर विचार करना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश माइनिंग, टेक्सटाइल्स, फार्मा और हेल्थ केयर, कृषि और फूड प्रोसेसिंग और आईटी तथा डिजिटल इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में मजबूत सहयोग बना सकते हैं.
3: लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस प्लंज्ड टुडे आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हेल्ड ऑफ अ फ्रेश अटैक ऑन ईरान एज ही सॉट अ क्विक डील दैट वुड होल्ड तेहरान्स nuclear ambitions and reopen the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 5.4% down at $83.16 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 6.4% lower at $79.26 per barrel when reports last came in. Moving on to gold and silver, the Indian bullion market, 24 karat gold was trading marginally up at 1,43,520 rupees per 10 grams, while silver was also trading marginally up at 2,18,330 रुपीस पर किलोग्राम अ शॉर्ट वाइन अगो.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.2% की बढ़त के साथ 1,41,797 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.2% बढ़कर 2,17,609 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी.
3: एंड दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर इन द शो टुडे.
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और अनुफा के भी सवालों के जवाब.
1: थैंक यू सो मच.
3: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज, सेंसेक्स एड्स नियरली 550 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,700. इन एशियन मार्केट्स, साउथ कोरियाज कॉस्पी स्लिप्स ओवर 5% एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस टंबल. एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. वी विल बी back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, from the entire team, goodbye.
2: Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा. ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीटी फ्री डिश पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है. पेशे खिदमत प्रोग्राम तामिल इरशाद. फरमाइशी फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है. आप सभी को मेरा आदाब. प्रोग्राम की पहली पेशकश आप तमाम सामिन की नजर है.

तेरे दीदार की हसरत जागी है दिल में जाना, तेरी बाहों के हिसार में आने को अरमा मचल रही, बैठे बैठे से कुछ ख्वाब अंगड़ाई ले रहे हैं, सोए सोए से ख्याल

0: भूखियों या मरो,
1: गुस्तगू का ये कोई तरीका नहीं
0: और तुमको भी कोई तरीका नहीं।
1: मेरी उल्फत की इंसल्ट यूं ना करो,
0: यू शट अप,
1: यू शट अप,
0: यू शट अप,
1: यू शट अप।

0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
1: इससे पहले कि ये नोक झोंक और आगे बढ़े, हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ नाम शामिल कर लेते हैं। गढ़िया मौजे उस्तो भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल और कुंदन मंडल और उनके साथ बहुत सारे साथी हैं। एक तवील फेरिस्त के साथ ये मेल है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और साथ में कविता गौड़। अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं। आप हैं मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, मायरा सुरोशे, काटा रोड वाशिम से आपकी फरमाइश है। और इंद्रजीत छाबड़ा आज अकेले नहीं, इंद्रजीत कौर भी हैं, स्वीटी छाबड़ा भी हैं, टाइगर गार्डन नई दिल्ली से। और कुछ बातें आपने लिखकर भेजी कुछ शख्सियात के हवाले से, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और अब एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं। अफजालता शाहीन सुल्ताना सोनू तसीम है कोल सिटी बरकाकाना से। और ये फरमाइशी ईमेल उन दोस्तों का जिनके नाम शामिल हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तंबराम चेन्नई से हैं, शाहिद अली, इफ्फत फारूकी और साथ में उनकी बेटियां हिफ्जा अली। और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हमारे कुछ और साथी, थोड़ा सा अपडेट करना चाहेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता सहानी और ये फरमाइश।

कुछ आई है उन दोस्तों की जिनके नाम हो चुके हैं शामिल, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और ईमेल शामिल करते हैं, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन और साथ में सुरेखा सेन। ये फरमाइश ईमेल आसेगांव बाजार महाराष्ट्र से मौसूल हुआ करणजीत पुनकर का है। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्की वाली फलनजा, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से, और दुर्गापुर मुरादाबाद से फरमाइश की है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और सोनू सुरेश ने। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर है कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और वेदिका फूलमाली अहमदपुर खेगांव खंडवा से आपने फरमाइश इरसाल की, और रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर, धनंजय कटंकर इस नगमे को सुनना चाहते हैं गांधी बाग अकोला से, और आप हैं गंज डंडवार से शमसुल कमर रही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, और ये फरमाइशी ईमेल बांद्रा आर्मा कोर्ट मुंबई ईस्ट से मिला है बेगम सोनम शेख, मारे आय शेख, मोहम्मद अरीब शेख का, और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी है सागर माटोले, रेणुका माटोले, लक्ष्मी माटोले, जालना शहर से आपकी फरमाइश मिली है। और अगला ईमेल है श्री राम गोंधली, उषा गोंधली का, भावी निम गांव शेगांव से आपने फरमाइश हमें इरसाल की है। और अगला ईमेल हो गया है रिपीट, इसको करते हैं साइड लाइन, के आर साहू, आकाश कमलेश और अहले खाना देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, और ये फरमाइश के लिए रामचंद्र रावकर, अनु रावकर, रोहित रावकर की, काले मला कोपर गांव से। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं नरोत्तम गौड़, हिमांशु गौड़, यश गौड़, उदयपुर से आपने फरमाइश हमें साल की है। और ये फरमाइशी मेल मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी का है, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से है। हिमांश शिंडे, शीला देवी शिंडे, अशोक किशोर नगर अमरावती से आपकी फरमाइश में मौसूल हुई। और इसी नगमे को सुनने के मतवन्नी शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी और नदीम इदरीसी, और ये फरमाइश है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और निवेश कुमार उनके अहले खाना की जानिब से। और आप हैं गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मेरे महबूब फिल्म का है, शकील बदायूं साहब का लिखा हुआ और मौसीकी नौशाद साहब की है। तेरी यादों का लश्कर रात भर सोने नहीं देता, गजब का बोझ पलकों पर लिए हर सुबह आती है।

लिस्ट हर्षिता जाखर स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेमिस का हिस्सा बनकर पहली भारतीय खातून बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इन 37 जजों में भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई के महीने में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया था। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में रिफॉर्म यानी इस्लाह, परफॉर्म यानी कारकर्दगी और ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव का मंत्र मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। जनाब मेघवाल ने कहा कि अदालती शोबे में जारी इस्लाही अमल में यह बिल अहम कदम है। इससे पहले अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ मामलों पर एहतजाज के दौरान लोकसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद जनाब बिरला ने वक्फा सवाल चलाने की कोशिश की, ताहम अपोजिशन अराकीन ने तलबा के एहतजाज के दौरान की गई मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन के कुछ अराकीन की जानिब से जानबूझ कर रखनांदाजी करने पर तशवीश का इजहार किया। जमहूरी उज़्बेकिस्तान के उमूर खारजा के वजीर सहदेव बख्तियोर ओदिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनाब ओदिलोविच और उनके वफद का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात हैं जो कदीम तजारती रूट से वाबस्ता हैं। उन्होंने उजागर किया कि फन तामीर, जबान, रिवायती पकवान, मौसीकी और मजहबी रिवायात में मुश्तरक सकाफत ने बाहमी शराकतदारी को मजीद इस्तेहकाम बख्शा है। सदर जमहूरिया ने यह उजागर करते हुए इजहार मसर्रत किया कि उज़्बेकिस्तान के 3000 से ज्यादा हुक्काम, पेशावर अफराद और तालिब इल्मों ने भारत के तकनीकी और इक्तसादी तावुन ITEC प्रोग्राम के तरबियती कोर्सेज और दीगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि 16000 से ज्यादा भारतीय तालिब इल्म उज़्बेकिस्तान में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया कि ये तालिब इल्म दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करते हैं और बाहमी मुफाहमत और मजबूत अवाम से अवाम के राब्तों को बेहतर कर रहे हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज उजागर किया कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में पिछले बरसों में तौसी हुई है और आज ये बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों में मुतनव्वे हैसियत रखते हैं। इनमें तामीर, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबे शामिल हैं। दिल्ली में उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा बख्तियोर सहदेव के साथ मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन $1 अरब की बाहमी तिजारत है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क बैनुल अक्वामी और इलाकाई मामलात पर, खासतौर पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मंशियात की नाजायज तिजारत के जिम्न में एक जैसे नजरियात रखते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफाई इको निजाम को मुस्तहकम करने के लिए वजारत दिफा की फौजी और सिविलियन शाखों के दरमियान वसीतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 85वीं मुसल्ला अफवाज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज के दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर दिया कि इससे उभरते हुए सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजों पर मौसर तौर से तवज्जो मरकूज की जा सकेगी। वजीर दिफा ने कहा कि फौजी और सिविल सर्विसेज दोनों मुल्क सबसे पहले के एक अहद पर यकीन रखते हैं, तो जब मकसद कोई वाहिद हो तो निजाम का हर एक जुज कौमी इस्तेहकाम में तब्दील हो जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सूरत हाल रात में अबतर हो गई, क्योंकि एहतजाजियों ने तितर बितर होने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों पर गोली चला दी।
पीओजे के

0: से आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आधी रात में एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसमें रावलकोट में गोली चलने की खबर दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ओहदेदार ने कहा कि खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में एहतजाज में शामिल होने के साथ ही गोली चलाने की खबरें मिली हैं। बहुत सी खवातीन और बच्चे पिछले 50 दिन से एहतजाज की जगह पर मौजूद हैं, जिनके साथ गुज़िश्ता रोज मजीद दर्जनों एहतजाज में शामिल हो गए हैं। पूरे पीओजेके से लोग इस एहतजाज में शामिल हैं, जो तेजी के साथ पूरे खित्ते में फैलता जा रहा है। पीओजेके की इंसानी हकूक की काउंसिल के मुताबिक कल तक 80 हलाकतों की दस्तावेज बंदी की गई है। मुजाहिरीन ने अब मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च करने के मंसूबे का ऐलान किया है, जिसका मकसद बकौल उनके बड़े पैमाने पर साजिश बंद इंतखाबात के खिलाफ अपनी आवाज उठाना है। ईरान ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तर्दीद करते हुए कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालिसकारों के जरिए आज ईरान के साथ मुजाकरात का प्रोग्राम है। अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स एक पर सवार सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती मसरूफियात की वजह से उन्होंने अपने असल मंसूबे को रोक दिया। इससे पहले जनाब ट्रंप ने इंतहाई शदीद हमले का इंतबाह दिया था। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। बकाई ने मजीद कहा कि वजीर खारजा अब्बास अराखची को छोड़कर जो मजहबी दौरे पर इराक गए हैं के अलावा सभी ईरानी मुजाकरातकार फिलहाल मुल्क में ही मौजूद हैं। नौउम्र भारतीय साइक्लिस्ट हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड के टूर दे फ्रांस फेमस का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बनकर तारीख रकम की है। 19 साला हर्षिता ने कल दूसरे मरहले के रस्मी आगाज के दौरान सब्र आजमा रेस में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, इथोपिया के दो साइक्लिस्ट, नामीबिया और युगांडा के खिलाड़ियों समेत 8 होनहार खिलाड़ियों में जगह बनाई। टूर दे फ्रांस का आगाज इस महीने की 1 तारीख को लुजाने में हुआ, जो 9 अगस्त को नाइस में इख्तिताम पजीर होगी। टूर दे फ्रांस फेमस खवातीन की कई मरहलों वाली साइकिलिंग रेस है, जो मर्दों के टूर दे फ्रांस के हम पल्ला है। ये खवातीन के यूसीआई वर्ल्ड टूर कैलेंडर का हिस्सा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। जमहूरी उज़्बेकिस्तान के उमूर खारजा के वजीर सादेव बख्तियोर ओदिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज उजागर किया कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में पिछले वर्षों में तौसी हुई है। पीओजेके में रात में सूरत हाल अबतर हो गई, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया। और ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तर्दीद करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। इसी के साथ बरसगीर की खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशर जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल एप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर, और साथ ही साथ प्रोग्राम जारी है तामिले इरशाद।

जहां फिल्म का दुकान आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में शकील बदायूनी का लिखा हुआ मौसीकी रोशन गीत ये सुनना चाहते थे रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौसम शेख फलक तबस्सुम और बीबी अली सिब्बा वही फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ रेलवे रोड गंज डंडवा से मोहम्मद कलीम जख्मी नजमा बेगम नाज और बेबी फातिमा मरियम साथ में शामिल है यहां भी कलीम साहब शामिल है एक कलीम साहब जो है वह कौन नाम है कलीम तो इसे जानना चाहेंगे कौन कौन से कलीम हैं जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं अनाकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा हैं और वसीम अख्तम सवालिया खातून की फरमाइश न्यू मार्केट पटना बिहार से मिली है इसी नगमे को सुन रहे थे सूरज गगनीजा पूनम गगनीजा दिशानी और अहले खाना जलालाबाद वेस्ट से और ये फरमाइश है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नौरीन अंसारी और नसरीन अंसारी की और इसी नगमे की फरमाइश थी बिहार छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा की आप हैं अब्दुल गफ्फार डावर अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर खंडवा के नागचून रोड से आपने फरमाइश शमीर साल की और नरेंद्र नेताम कुसुम की फरमाइश पुड़वा पथरिया से मिली है इसी नगमे को सुनना चाहते थे सुशांत प्रिया मास्टर निवेश कुमार और लट्टू कुमारी टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर नई दिल्ली से और आप हैं गांव फरासी सार से राजकुमार डुड्डी प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी मोटारा महाराष्ट्र से विजय सरोलकर रत्नमाला ओम कुमार की फरमाइश भी थी और इसी नगमे को सुनना चाहते थे तख्त को छत्तीसगढ़ से मिश्रीलाल विश्वकर्मा मेरा देव विश्वकर्मा साथ में चेतन विश्वकर्मा महाराणा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवेद हसन अब्बासी और शहनाज की स्पेलिंग को दुरुस्त कर लीजिए सीन की जगह शीन कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा जनाब और दुर्गा प्रसाद सैनी अनिता सैनी गौरव सैनी शनि मंदिर चौक खंडवा से और ये फरमाइश है दिलीप कुमार सोनी के मुंदीचक भागलपुर बिहार से और आप हैं विनोद वंडलकर वीणा वंडलकर और विविधा रायपुर छत्तीसगढ़ से राम सुब्रत चौधरी साहब की फरमाइश है कोलकाता से और शुरू में राम लिखा था तो इसलिए ईमेल आईडी दरअसल उससे शुरू होती है इंदिरा भैया दिल्ली से डॉक्टर डब्लू अंसारी डॉक्टर बेबी अंसारी और ये फरमाइश ईमेल उन दोस्तों का जो शामिल हो चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं सल्लर पहलगाम कश्मीर से हैं पीरजादा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन और

कैसरुद्दीन आज सबसे दोस्ती हो गई लगता है, इसलिए तीनों साथ में शामिल हुए हैं, वरना तो मिराज साहब कई बार से अकेले तशरीफ ला रहे थे। मोटाला बाजार से हैं बबलू, शेख वजीर और सुहेल, और ये फरमाइशी मेल महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, मीनाक्षी गोस्वामी का नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। और अब एक नगमे की बारी है, रफी साहब की आवाज में एक नगमा आपको सुनवाते हैं, फिर है दीदार, नौशा साहब की मौसीकी और शकील बदायूं साहब ने इस नगमे को लिखा।

कुछ और नाम थोड़ा सा रिफ्रेश करने के बाद शामिल करते हैं। कल्पना मदन झा, मयंक और मानव हैं, नरोली फाटक भिलाड़ वापी गुजरात से। और अगला ईमेल उन दोस्तों का जो हो गए शामिल, तो आगे बढ़ते हैं जनाब। ये फरमाइश ईमेल बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से मिला है संजय मार्कंडे, ममता मार्कंडे, बेबी किट्टू का। इसी नाखबर में सुनना चाहते ओम प्रकाश शाह, उषा राय, अमित कुमार, कोटवा नारायणपुर, बाबट्टी बलिया से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह कुशल हैं, पद्मा टॉकीज नेपाल नगर से। और अगला नखमा आपकी नजर करते हैं, रेगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और मास्टर नईम रजा सिद्दीकी, मुनव्वर हुसैन अंसारी, नईम रजा सिद्दीकी हैं, पश्चिम थोक गंज डुंडवारा से शंभुदयाल खटक, मीमा देवी और साथ में दीपक कुमार खटक गांव जाखोज से। और ये फरमाइश में लताफ हुसैन सैफुल्ला सबाद का है सांगली जत शहर से। और तालाब डुमरा से वलीउल अंसारी, सुल्तान अंसारी और असमानाज अंसारी। और अगले मेल फिर रिपीट हो गया, इसको भी साइडलाइन कर देते हैं। और जरूर बरूर से हैं चंद्र प्रभा वडोदे आदि चरपे, और एक नाम पहले शामिल हो चुका है तो इसलिए इसको कट कर देते हैं। और अगले मेल भी रिपीट है, इसको भी साइडलाइन करना पड़ेगा जनाब, रिपीटेशन का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। बल्लारपुर महाराज से हेमंत कुमार भाषंकर, प्रिया भाषंकर, साथ में मास्टर ओमी भाषंकर, नाम सुनते हैं और बीच बीच में आपके नाम भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी।

आगे बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे जनाब आपकी उम्मीदों पर, और नाम शामिल जरूर किए जाएंगे पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गंदीप जाजोरिया, साथ में आरजू। और ये फरमाइशी ईमेल प्रवाल नवा शहर से मिला है, गगनदीप थांडी, तिरुप्त कुमार थांडी, कुमारी थांडी और डॉक्टर प्रियंका थांडी का है। और इसी नगमे को इंजॉय कर रहे हैं जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो और विलिस से, जनकपुरी सहारनपुर से, और जंक्शनपुर राजकोट से ये फरमाइशी ईमेल प्रभुदास कुर्चा, हंसा कुर्चा, आशीष कोटेचा का है, मनमोहन राजावत, साथ में राशि रक्षित और मधु राजावत, राजा कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाहजहापुर एमपी से आपने फरमाइश हमें सेल की है। और अगला ईमेल है अनुषा ब्रांडे, अनुश्री धनश्री ब्रांडे का पंदर कावड़ा से, और ये फरमाइश ईमेल मिला है सुकुंदर सिंह जोड़ा, सिटी जवाना का, कृष्णा पार्क दिल्ली से, और बुल्डाना वर्षिंगी महाराज से, अमोल मान का, शोभा तैमान का, साथ में दीपाली और उनके कुछ और साथी, और मराठवाड़ा जालना से हैं, आष्टी जालना से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, साथ में तनवीर मसरत भी हैं। अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको भी करते हैं साइड लाइन। और गुरुपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह भी शामिल हैं, और आप हैं प्रकाश भारती, प्रकाश लंबाड़े, जानवी लंबाड़े, वैष्णवी हर्ष लंबाड़े, काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से, नवीन श्रीमाली, साथ में मीना श्रीमाली में खरगोन बड़वा से हैं। और ये फरमाइश मिली है सैयद मसूद, शाहीन हसन नाजिया की, सहारनपुर कुमार हेड़ा गांव से, और आगा खान आगा के साथ में आज कौन कौन है, बेगम निदा खान भी है, बेबी अमल खान है, खान मंजिल गंज डुंडवारा से ये फरमाइश मिली है, और कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, राजू मिलानी, बब्बू डब्बू, और मुख्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमाल, बलजेंद्र कौर, साथ में रवनीत मिशु, छोटे अंसारी हैं संभल से आपने फरमाइश की है, और आज अकेले ही हैं, बाकी दोस्त गायब हैं। तेलंगाना निजामा से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रावे शेख, शेख रहीम मुन्ना के

स्मार्ट फोटो सुना है दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा जय कुमार गुप्ता और अन्विका तनु श्री गुप्ता और ही फरमाइशी ईमेल गुलाब दास मानीपुरी राजदास मानीपुरी रानी मानीपुरी का लेवाई छत्तीसगढ़ से फरमाइश की है उस्मान शेख फौजी सायरा बानो करिश्मा है ये परसोगा लातूर से और दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा से फरमाइश की है और आनंद राज सागर तरलता सागर की फरमाइश है चांदखेड़ा अहमदाबाद से और ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर रही मेरा चाहे लक्सर हरिद्वार से और ये फरमाइश में गांव खड़खड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा की जानिब से और आप हैं धनेश चंद चौहान मोहिन चौहान कल्पित भी हैं जोधपुर राजस्थान से आपके फरमाइश में इस्तेमाल की है मेरा गाँव खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहनकर रही सरिता गोहनकर अर्जुन गोहनकर डुक्कू भी साथ में और बड़े रैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवेदर त्रिभुवन नाथ मालवीय और फाना और ये फरमाइश मिली है सोमदत्त कैरव ज्योति की नाभा जिला पटियाला पंजाब से और आप हैं शाहजी बोट के नंदा बोट के उत्तम जमदाड़े हिंगोली महाराष्ट्र से नासिर शहीद नाजिर नासिर सागर शहीद फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से और शेरवानी स्कूल गंजी टंडवाड़ा से आफ्ताब अहमद अंसारी रियाज अहमद अंसारी अनवर मास्टर के साथ में शामिल है बिजसवाल का रत्नमाला आराध्य की फरमाइश है मोटाला महाराष्ट्र से और हरमंदर चारा सोन जोशी शिव कुमार शर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं और मिलाम गेट काजगंज से अमिस्तम सैफी जेबुल निसा बेगम और सत्तान सोनी भी शामिल है निजा महोबिया कविता महोबिया पेंटर बाबू आपने रामगंज खंडवा से फरमाइश में हिस्सा लिया एस एम जावेद शगुफ्तानी टावर चौगुंडा झारखंड से हैं और कर्नाटक स्टेट चेन्ना तिरुपति से हैं श्यामला प्रकाश अश्विन अश्विनी रमेश और मनवित आनंद और उनके कुछ और साथी और गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी प्रीतम सोनी की फरमाइश भी हो गई है शामिल और खंडवा की प्रोफेसर कॉलोनी से आनंद जोशी तमिल जोशी ध्रुवी जोशी और ये फरमाइश मेरे है अजबा बिलराम से इशाद अहमद शाह मुझे लगता है पहले ही में शामिल हो चुका है और भूंगी तेलंगाना से मोहम्मद बुरहान उद्दीन और ये फरमाइश में शंकरलाल जायसवाल राखी जायसवाल तिरुपति का है नांदेड़ के ताला महाराष्ट्र से मास्टर लीम पटेल मुजाहिद पटेल नितिन पटेल है नर्मदा पाक मंगल बेड़ा महाराष्ट्र से और ये फरमाइश मेल आदर्श नगर मलोट से मिला राज शर्मा मीना शर्मा और निवान शर्मा का और आप हैं मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही शमसुल कमर राही बेगम रुखसार भी साथ में शामिल हैं और ये फरमाइश मेल दोस्तों का जिनके नाम हो गए शामिल तो ये ईमेल है कामेश यादव साथ में उनके राधेश्याम यादव शालिनी यादव सिंगार तलाई खंडवा एम पी से साईनगर आरबी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे प्रियदर्शी मिर्गे साथ में डॉक्टर प्रिया

0: दादा बाबा रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साहिब नवाज, हसन नवाज और उनके कुछ और साथी, और ये फरमाइश ई मेल वही दुमानी मोहम्मद फसी डॉक्टर मोहम्मद जमीर का है फलोंग निजामाबाद तेलंगाना से, और ये था इस प्रोग्राम का आखिरी ईमेल। अभी आप सुन रहे थे फरमाइश फिल्मी नकमों का प्रोग्राम तामिल इशाद, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: जी राजा रमन, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच, हमेशा अच्छा लगता है आकाशवाणी में।
2: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पदक तालिका में चौथे नंबर पर अपना कैंपेन खत्म किया है। 122 खिलाड़ी गए थे और 39 मेडल लेकर घर लौटे हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज शामिल है। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में आप कैसे रेट करेंगे?
3: उम्मीद के अनुसार ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। गेम्स से पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं 30 मेडल का शायद टारगेट लगा था भारतीय टीम के लिए, लेकिन 39 मेडल से वापस आना, ये दिस इज अबाउट माय एक्सपेक्टेशन। और मैं सराहना करूंगा पूरी टीम की, चाहे वो एथलेटिक्स की टीम हो या फिर वेटलिफ्टिंग हो या फिर बॉक्सिंग हो या जूडो हो, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है और ये देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा ये कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रदर्शन।
2: राजा, आपने कहा कि खेलों से पहले आप 30 का टारगेट देते, लेकिन अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो 2002 से अब तक ज्यादातर 50 से ज्यादा मेडल्स लाए। बर्मिंघम की बात करें तो 61 मेडल थे। तो जब हम खेलों की बात करते हैं, ये सब आंकड़ों की बातें होती हैं, और स्टेटिस्टिक्स के बाद जैसे मैंने भी कहा कि 2002 के बाद ये पहली बार है कि 50 से कम मेडल लेकर आए हैं, पर इसके साथ ये बात भी है कि अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स के जो पिछला इतिहास या हाल का भी जो रीसेंट हिस्ट्री है उसको देखें तो ये पहली बार है कि जो खेल है काफी कम हो गए। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, शूटिंग, ये ऐसे खेल हैं जहां पारंपरिक तौर पर भारत जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करता रहा है और ये खेल इस बार नहीं थे। तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है उनको सिर्फ नंबरों से, आंकड़ों से आंकना सही नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में?
3: नहीं, ये नंबर तो हमेशा नंबर का खेल है, और मेडल तालिका में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी मेडल कम हो गए क्योंकि खेल कम हो गए थे। इधर शूटिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऐसे खेल में हमारे लिए हमेशा बहुत ज्यादा मेडल मिलते थे, लेकिन ऐसा खेल का ना होना दुख वाली बात है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये गेम्स विक्टोरिया में होने थे ऑस्ट्रेलिया में, और फिर उन्होंने मना कर दिया था और लास्ट मिनट में ग्लासगो आगे आए और फिर वो आयोजन किए हैं, तो तारीफ के काबिल है ग्लासगो। लेकिन क्योंकि सिर्फ 10 डिसिप्लिन थे यहाँ पर जहां हम हिस्सा लिए थे, ये मेडल नंबर कम दिखेंगे लेकिन ओवरऑल परसेंटेज मेरे को लगता है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मेडल कम हुए, कनाडा के मेडल कम हुए, इंग्लैंड के मेडल कम हुए, हमारे भी कम हुए। और मैं नहीं, इसको खराब प्रदर्शन नहीं मानूंगा। अगर आप 60 और 70 मेडल देखते हैं और फिर वहां से 39 देखेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि यहाँ पे खेल कम थे, फ्यूअर डिसिप्लिन, इसीलिए शायद नंबर्स कम है।
2: जी, अब हम अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो बॉक्सिंग भारत के कैंपेन का स्टार रहा। हमने रिकॉर्ड 10 मेडल जीते हैं जिसमें से 7 गोल्ड भी हैं। ये किसी भी देश द्वारा किसी एक कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा मेडल है। तो ये कामयाबी बेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बॉक्सिंग की बढ़ती ताकत को दिखाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और कौन से वो बॉक्सर्स हैं जो आपको लगता है जो इसमें उभर कर आए हैं इन गेम्स में?
3: टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, जिस तरीके का कंपटीशन का स्तर रहा उस हिसाब से भारतीय टीम ने अपने 10 मेडल लाए, वहां पे 7 गोल्ड मेडल और फिर 3 सिल्वर मेडल है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि एशियन गेम्स जो महीने दो महीने में होना है, वहां पे अगर ऐसा प्रदर्शन होता तो बहुत ज्यादा उत्साह का जगह बन जाता है। कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग और फिर वेटलिफ्टिंग, इनके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं है और इसीलिए शायद आपको समझना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि 10 मेडल खराब मेडल है, 10 बहुत बेहतरीन मेडल है, जो कॉम्पिटिशन है उसमें हम बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं। ये हमारी गलती नहीं है कि कॉम्पिटिशन कमजोर रहा
2: जी, क्योंकि ये भी एक बात हो रही थी कि बॉक्सिंग में हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं मिला है इन गेम्स में।
3: हकीकत तो यही है, सच ये है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जाना पड़ेगा, रिंग में उतरना पड़ेगा और बॉल जीतने पड़ेंगे जी, और वो जीत के आए हैं तो दे डिजर्व प्रेस, तारीफ तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि कुछ खेल ऐसे हैं जहां पे एशियाई खेल में हमको मेडल्स कम मिलते हैं। वेट लिफ्टिंग में वहां पे गोल्ड आ गया था, उसमें भी आपका प्रदर्शन आप देखेंगे तो 190 में गोल्ड मेडल लेकर आई है, सिल्वर मेडल जिसके पास था उनसे 20 किलो ज्यादा उठाई, तो दिखाता है कि कॉम्पिटिशन कमजोर ही रहा है, लेकिन आपको मैदान में फिर भी उतरना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेडल्स बॉक्सिंग में और वेट लिफ्टिंग में आए मैं उनको कम नहीं आंकूंगा, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा ही प्रदर्शन एशियन गेम में जब करेंगे तो बहुत खुशी वाली बात हो जाएगी।
2: जी, आप क्योंकि वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हो, जैसे भी आपने कहा कि जब वेट लिफ्टिंग की बात हो और मीराबाई चानू की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो भारत की सबसे महान एथलीट्स में क्यों शुमार हैं, और उन्होंने इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की जो हैट्रिक है टाइटल्स की वो पूरी की है। तो इसके अलावा उनकी तो ऑफकोर्स हमने भी बात की, पर बाकी और कौन से वो वेट लिफ्टर्स हैं जिन्होंने इन खेलों में, ग्लासगो खेलों में, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है? वेट लिफ्टिंग की बात करें,
3: विद्या रानी देवी का प्रदर्शन सही रहा है मुझे लगता है, मुत्तुपांडी राजा जो मेन सेक्शन में मेडल जीते हैं, बहुत अच्छे लिफ्टर्स हैं, लेकिन एशियन स्टैंडर्ड अभी शायद नहीं आया इनका, लेकिन क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया है कईयों ने, अगर वहां पे हमें इतने सारे मेडल्स मिलते हैं, 8 मेडल लेकर आए हैं, अफसोस वाली बात है कि 1 या 2 हम यहाँ पे घर पे रखना पड़ा उनको, हमारे लिफ्टर्स जा नहीं पाए, अफसोस वाली बात है, लेकिन 8 मेडल के साथ वापस आना कॉमनवेल्थ गेम्स से ये अच्छी बात है, इट इज अ पॉजिटिव साइन। जो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है उनके सामने एक चैलेंज है कि जो खिलाड़ी वहां गए उनको और उठाए उनका स्टैंडर्ड और फिर एशियन गेम्स में कुछ अच्छा कर दिखाए।
2: एथलेटिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें भारत की मेडल्स की गिनती में कई बड़े अचीवमेंट्स हमको मिले हैं, बेशक ऑफकोर्स स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने तो जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर जो देश को उन पर भरोसा था एक बार उसको फिर से पूरा किया है, पर उनके अलावा अगर हम बात करें कई ऐसी अचीवमेंट्स है, कई ऐसी सफलताएं मिली जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, तो वो मैं आपसे वो सक्सेस स्टोरीज जानना चाहूंगी कि एथलेटिक्स में वो कौन सी ऐसी सफलताएं थी जो इन खेलों में उभर कर आई है जिनके बारे में जैसे मैंने भी कहा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहाँ पर मेडल्स मिलेंगे।
3: सच बताऊं तो मेरी उम्मीद सिर्फ 3 मेडल की थी, नीरज चोपड़ा जैवलिन में, मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप में और फिर तेजस्विन शंकर डिकैथलॉन में, ये 3 मेडल की उम्मीद थी, तीनों मेडल आए वहां से, बट मुझे लगता है कि तेजस्विन शंकर वाला डिकैथलॉन मेडल बहुत ही अहम मेडल है, क्योंकि 4 दिन पहले ही वो हाई जंप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए थे, चोट लग गया था उन्हें, उनके नी में प्रॉब्लम था और फिर वो खेल नहीं पाए थे हाई जंप, लेकिन वहां से आना और फिर डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतना और पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी डिकैथलॉन में मेडल जीत रहा था तो मेरे लिए बहुत बड़ा मेडल है। और फिर सर्वेश कुशारे हाई जंप में और कैसे हम बोले गुलवीर सिंह को,
2: बिल्कुल,
3: जिनके पास 10,000 मीटर में सिल्वर और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज 2 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने एथलेटिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कहे तो ही इज द फर्स्ट एथलीट जो जिनको 2 मेडल मिले। और फिर सीमा जो पीएचडी की स्टूडेंट भी है और डिस्कस थ्रो चैंपियन भी रही है तो उनका ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ा मेडल है हमारे लिए। 10 मेडल ट्रैक एंड फील्ड से आना, एथलेटिक्स से आना और फिर 6 मेडल पैरा एथलीट्स के पास से आना, 16 मेडल एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स ने कंट्रीब्यूट किए, इट इज मैसिव। और मुझे लगता है कि वेटलिफ्टिंग और फिर बॉक्सिंग से ज्यादा अगर मैं इम्प्रेस होता हूँ तो एथलेटिक्स से होता हूँ।
2: आपने पैरा एथलीट्स की बात की तो पिछले

0: कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो भारत के पैरा एथलीट्स हैं वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इवेंट्स में भारत का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं और ग्लासगो में भी उन्होंने देश को निराश नहीं किया, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ओवरऑल भारत में पैरा स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस को कैसे देखते हैं और अभी भी कौन से वो खेल हैं पैरा स्पोर्ट्स में जिसमें है तो भारत की काफी अच्छी सफलता मिली और हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं?
1: बहुत सारे खेल हैं पैरा स्विमिंग में अच्छा कर सकते हैं, हालांकि हम स्विमिंग में भी अच्छा कर सकते हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में हमारे मेडल्स कम है, वहाँ और मेडल्स आ सकते हैं। पैरा एथलेटिक्स में हम लगातार अच्छा करते आए हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: पैरा साइकिलिंग में बेहतरी हो सकती है, तो बहुत सारे खेल है। व्हील चेयर बास्केटबॉल हुआ है, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन एक मुहिम चला है पैरा स्पोर्ट को सपोर्ट करने का जो भारत सरकार करता है, नॉट ओनली फॉर पैरा स्पोर्ट, एबल बॉडीड स्पोर्ट के लिए भी। अगर आज ओलंपिक स्पोर्ट अच्छे स्तर पर है, भारतीय सरकार को क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो जितना पैसा वो लगाते हैं मार्केट से उतना बनता नहीं है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी नहीं लगा पाते, तो भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है इन प्रमोटिंग पैरा स्पोर्ट, और मुझे लगता है कि उसी के नतीजे, उसी के अंजाम हमको देखने मिल रहे हैं कि अच्छे अच्छे मेडल्स आए हैं। और सबको ये बताना भी होगा कि हमारा जो स्ट्रेंथ है पैरा एथलेटिक्स का, चाहे वो जैवलिन हो या फिर हाई जंप हो जहां हम लगातार मेडल जीते हैं, वैसे इवेंट नहीं थे इधर ग्लासगो में। विमेन शॉटपुट में शर्मिला मेडल लेकर आई, गोल्ड लेकर आई, ऐसे मेडल्स हमारे लिए संकेत देते हैं कि पैरा स्पोर्ट सही दिशा में चल रहे हैं।
0: एक और स्पोर्ट्स जहां से हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है वो है जूडो। जूडो में ऑफकोर्स एक बार फिर हमारे जूडो का जो है उन्होंने इतिहास रचा है, हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने भारत के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो गोल्ड मेडलिस्ट वो दोनों बने, जबकि यामिनी मौर्य ने सिल्वर जीता और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम है जूडो जैसे एक खेल में, जो एक गैर पारंपरिक खेल हम कहेंगे भारत की दृष्टि से, कि इस तरह मेडल्स जीतना कितना महत्वपूर्ण है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर हम ओवरऑल बात करें देश की, जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं वो युवा खिलाड़ियों को किस तरह प्रोत्साहित कर सकती हैं कि वो हॉकी, शूटिंग और ट्रैक एंड फील्ड जैसे खेलों से बाहर निकलकर इन गैर पारंपरिक खेलों में ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करें।
1: जूडो के चार मेडल बहुत अहम है, क्योंकि आप देखें तो जूडो में हमारे मेडल्स एशियन गेम्स में भी कम मिलते हैं, उससे एक लेवल नीचे है कॉमनवेल्थ कॉम्पिटिशन, वहां पे गोल्ड लाना पहली बार आ रहा था गोल्ड भारत को, विच इज गुड, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है जूडो को लेके। और हम सबको ये समझना चाहिए कि हम बहुत पैसा कोई ऐसे खेल में लगाते हैं जहां पे ज्यादा मेडल्स हैं, जैसे एथलेटिक्स में 40 इवेंट है और फिर 120 मेडल तक आपको एथलेटिक्स में आप जीत सकते हैं, कोई भी देश जीत सकता है, वैसे ही जूडो में आपके अगर 10 इवेंट मेन के और 10 इवेंट विमेन के हैं तो 20 मेडल आप जीत सकते हैं। तो ऐसे खेल को बढ़ावा देना शायद एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा भारतीय खेल में कि जूडो को आगे बढ़ाया गया, और फिर कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्स आए हैं जो जूडो को अपनाए हैं और फिर वहां पे बेलारी में ट्रेनिंग करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। भोपाल में एक बेहतरीन एकेडमी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वहां से भी बहुत बड़ा योगदान रहा।
0: आपकी नजर में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से वैसे खिलाड़ी थे, भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने सबको चौंकाते हुए प्रदर्शन किया, जिसको हम एक कहते हैं ना ब्रेकआउट स्टार्स, जिन पर सबकी नजर आने वाले भविष्य पर रहेगी?
1: डिस्कस थ्रो सीमा जरूर मैं कहूंगा कि शी विल बी अ सुपरस्टार। कुछ साल पहले वो मां बनी, कुछ साल पहले वो खेलना भी बंद कर दी थी और फिर वहां से आना और अपना पढ़ाई करते हुए खेलना और फिर राष्ट्रमंडल खेल में मेडल जीतना और फिर गुलवीर का आगे बढ़ना, वर्ल्ड क्लास रेसिंग करके दो मेडल हासिल करना, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर आप मुझसे एक मेडल की बात करें तो वो तेजस्वी शंकर वाला मेडल होगा, क्योंकि मुश्किल काम होता है, हमारी सबकी नजर 100 मीटर धावक पे हो जाती है, जैवलिन थ्रोअर पे होती है, ये खेलते हैं 10 अलग अलग इवेंट और हमें पता भी नहीं चलता कि लीड कौन है, कौन सेकंड चल रहा है, कौन थर्ड चल रहा है, सबसे बड़ा मेडल मैं मानता हूँ।
0: पूरे कैंपेन को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि इस ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत की जो पारंपरिक ताकतें थी उससे आगे बढ़कर जो हमने गहराई दिखाई है, जहां सिर्फ कुछ खेलों पर निर्भर रहने के बजाय हमारी टीम्स ने कई अन्य खेलों में जो मेडल जीते हैं, इससे देश में बढ़ते हुए स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: पॉजिटिविटी फैलता है। हम सबको पता था कि बॉक्सिंग में कुछ अच्छे अंजाम आएंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स वेटलिफ्टिंग से आएंगे, हमेशा ये पीछे रह जाते थे क्योंकि हम शूटिंग के 15-20 मेडल देख लेते थे या फिर कुश्ती में 10 मेडल या 12 मेडल आ जाते थे, तो वो हमेशा पीछे हो जाते थे, उनके मेडल्स यही रहते थे, 7 या 8 मेडल होते थे उनके, लेकिन बाकी खेल आगे हो जाते थे। अब की बार फोकस उन पे रहा, सारा ध्यान उन पे रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव साइन यह है कि पिछले 10-12 साल में भारत सरकार बहुत पैसा लगाई है खेलों में और उन्हें प्रोत्साहित करेगा और ज्यादा पैसा लगाने में। 3 या 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है खेलो इंडिया मिशन को लेके, बहुत पैसे लगेंगे।

0: स्पोर्ट में, और मुझे लगता है कि हर बच्चा इस देश में स्पोर्ट खेलने लायक हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद रहेगी कि हम खेलेंगे तो कुछ पैसा बना सकते हैं।
1: आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एशियन गेम्स अब सिर्फ 1.5 महीना दूर है, जहां पर चीन, जापान, साउथ कोरिया, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वहां के बड़े बड़े नाम होंगे और इन बड़े बड़े नामों के साथ भारतीय एथलीट्स का मुकाबला होगा, तो ग्लासगो में जो हमारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस है उन्हें देश और खेलों की संख्या के हिसाब से इस बड़े स्टेज के लिए तैयारी में कितनी मदद मिली है?
0: मदद तो बहुत मिलनी चाहिए, लेकिन आप एथलेटिक्स में देखेंगे कम से कम 30 मेडल आएंगे आपको एशियन गेम में, और शूटिंग जब वापस आ गया है और हमारे कुछ पहलवान मेडल लाएंगे तो मुझे लगता है फिर एक बार हम 100 मेडल के आसपास आएंगे, 100 भी पार करेंगे, पिछले बार 100 पार कर गए थे हैंगजो में, और जापान में जब जाएंगे मुझे लगता है कि 100 मेडल के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं भारतीय टीम से। तैयारियां सही रही है, कुछ अच्छे एथलीट्स विदेश में ट्रेन कर रहे हैं, कुछ को अपने घर में अच्छी शिक्षा मिल रही है, ओवरऑल पॉजिटिव है और मुझे लगता है एशियन गेम्स में भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और 2 महीने बाद हम शायद सेलिब्रेट करेंगे कि एशियन गेम में अच्छा प्रदर्शन रहा।
1: जी राजारमन, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस विषय पर अपनी जानकारी साझा की, अपने विचार साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम, चंद कवालियां समाप्त कीजिए अब्दुल हमीद साबरी कव्वाल और हमनवाओं से।

क्लासिकी मौसीकी में आप सुन रहे थे अनंतलाल और हमनवाओं का शहनाई पर बजाय राग पूरिया कल्याण। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमारी नशा जारी है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आखिरी शब्द इस प्रोग्राम में सुनिए चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे, आगाज मुगल आजम फिल्म के नगमे से। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसीकी नौशाद की।

0: नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालिसकारों के जरिए ईरान के साथ मुजाकरात का प्रोग्राम है। अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स वन पर सवार सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती मसरूफियात की वजह से उन्होंने अपने असल मंसूबे को रोक दिया। इससे पहले जनाब ट्रंप ने इंतहाई शदीद हमले का इंतबाह दिया था। नाउम्र भारतीय साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड के टूर दे फ्रांस फेमेस का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बनकर तारीख रकम की है। 19 साल हर्षिता ने दूसरे मरहले के रस्मी आगाज के दौरान सब्र आजमा रेस में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, इथोपिया के दो साइकिलिस्ट, नामीबिया और युगांडा के खिलाड़ियों समेत 8 होनहार खिलाड़ियों में जगह बनाई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिमनी इंतखाबात में जन स्वराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मंजालपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी जीत हासिल की। पीओजेके में रात में सूरतेहाल अबतर हो गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की जिन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया। और नौजवान साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर दे फ्रांस फेमस का हिस्सा बनकर पहली भारतीय खातून बन गई हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजा जाता है। हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
3: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
2: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। दो दिवसीय ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह बैठक का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञ विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि की भागीदारी की उम्मीद है। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। कल सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने सूचित किया कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को भ्रामक 100% दावों वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिनमें शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केन्द्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सब कदमों का वो है भेदी, ले उसको।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही मार्मिक और बेहद खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे, बहुत ही शानदार गीत। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है बहुत बड़ा ही प्यारा और बेहद खूबसूरत गीत है, और ये गीत अपने आप में बहुत ही अनमोल है। फिल्म जन्म जन्म के फेरे, जो 1957 प्रदर्शित फिल्म रही, जन्म जन्म के फेरे ये टाइटल सॉन्ग है, और गीत मुक्ति फिल्म्स के बैनर तले ये रचना है और संगीत से सजाया है SN त्रिपाठी ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही लाजवाब अनमोल रचना। जैसे कि हमने बताया कि जन्म जन्म के फेरे टाइटल सॉन्ग है, मोहम्मद रफी साहब और साथियों की आवाज में शानदार रचना। और ये फिल्म 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत मुक्ति आर्ट्स बैनर तले के हैं और संगीत से सजाया है एस एन त्रिपाठी ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की, और ये गीत भी बहुत ही शानदार आ रहा है, ऑल टाइम फेवरेट खूबसूरत गीत है, अपने आप में बेहद खूबसूरत है। ओ बसंती पवन पायल, बहुत ही प्यारा नगमा, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से बेहतरीन रचना। ये फिल्म 1960 प्रदर्शित फिल्म रही है और आवाज लता मंगेशकर की और गीत शैलेंद्र के और संगीत से सजाया है इस शानदार रचना को शंकर जय किशन ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, बहुत ही शानदार, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में शानदार रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की, और ये गीत भी बहुत ही सुंदर है और बेहद खूबसूरत है। जी हाँ, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो। फिल्म कुंदन से, और माफ कीजिएगा खानदान से, ये फिल्म 1965 प्रदर्शित फिल्म रही है। बहुत ही शानदार फिल्म रही है। गीत राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत से सजाया है रवि ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। इसी के अंतर्गत बहुत ही शानदार शानदार खूबसूरत गीत अभी आपने सुने। गीत सुनहरे कार्यक्रम की सेकंड लास्ट खूबसूरत रचना आ रही है एक बड़ी ही प्यारी लाजवाब गीत के माध्यम से।

तुम इश्क की महफिल को, जी हाँ तुम इश्क की महफिल को। फिल्म का नाम है साज और आवाज। मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले और साथ दे रहे हैं उनके साथी। एक खूबसूरत लाजवाब गीत आ रहा है साज और आवाज। 1966 प्रदर्शित फिल्म है। गीत SSI फिल्म्स के बैनर तले है और संगीत से सजाया है नौशाद साहब ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम और बेहद खूबसूरत अनमोल रचना।

जी हाँ साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। गीत सुनहरे के अंतर्गत एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचना अभी आपने सुनी, और गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज विश्व के विवेक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्दीधारी और नागरिक सेवाएं दोनों ही राष्ट्र सर्वोपरि के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध है। जब लक्ष्य एक ही होता है तो व्यवस्था का प्रत्येक तत्व राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिले चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर हैं, जहां 380 गांव और 14,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न है। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. The central government has revised the special additional excise duty on imports of petrol, diesel and aviation turbine fuel ATF. The government has notified the new rates, saying that the export duty on diesel will now be 25.50 rupees per litre, including 1.5 rupees road and infrastructure cess, while the export duty on ATF has been raised to 22 rupees per litre. Meanwhile, the export duty on petrol has been increased to 3.5 rupees per litre. The revised rates notified by the Finance Ministry came into effect from yesterday. However, there is no change in the existing excise duty on petrol and diesel meant for domestic consumption. Union Home Minister Amit Shah has said that Indian athletes have scripted joyous history by making India the fourth highest medal-winning nation at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, Mr. Shah said that this meteoric success scales to an even greater height as India now officially takes over the proud host nation of the CWG 2030 to be held in Ahmedabad. The minister congratulated every athlete and all citizens on this moment of double delight. He said, India takes a bow in Glasgow and assumes charge of Ahmedabad 2030 Commonwealth Games. The India Meteorological Department IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim till today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR Live News 24/7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 2:10 ये कार्यक्रम ये समय होता है एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार वाकई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम होता है, जिसमें आप सुनेंगे बिना किसी एड के, बिना किसी हडल के, लगातार बारंबार एक से एक सुंदर खूबसूरत, बिना रुके बिना थके शानदार खूबसूरत रचनाओं का समावेश बनता है। जी हाँ, तो आज मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम गीत बहार में आपका दोस्त ललित कुमार। तो आज पहला गीत आ रहा है आज के कार्यक्रम गीत बहार के अंतर्गत, बहुत ही शानदार और बेहद खूबसूरत रचना। और ये कार्यक्रम नॉन स्टॉप होता है, लगातार चलता है और ये कार्यक्रम 50 मिनट का ही होता है। और इस गीत को सबसे पहले, ये गीत आ रहा है आपके पास यार दी शादी दोस्ती फिल्म से, सोनू निगम और अभिजीत और अलका याग्निक और साथ में सारिका कपूर की आवाज में शानदार रचना है। 1970 प्रदर्शित फिल्म रही है ये शानदार खूबसूरत रचना। गीत राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले रचना है और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की सुंदर और खूबसूरत रचना। अगले 50 मिनट तक अब आप सुनते ही रहेंगे एक से एक बेहतरीन रचना।

0: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत आ रहा है। जी हाँ, गीत बहार के अंतर्गत बहुत ही शानदार खूबसूरत रचना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत ही सुंदर लाजवाब रचना।
1: कदम चूम लूं या

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत कार्यक्रम, जी हाँ बहुत ही प्यारा कार्यक्रम रहा है। और गीत बहार के अंतर्गत बहुत ही शानदार, एक से एक खूबसूरत, चाहे वो गजल रूपी हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो कव्वाली हो, हर प्रकार की जो विधा थी गीत संगीत की, उसी के अंतर्गत बहुत ही शानदार बेहतरीन रचनाओं का समावेश आज आपने बांधा और आपने सुना। बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। 3 बजने वो हैं और अब गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 3 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हरा दिया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा, भारत उज्बेकिस्तान सरकार और वहां की जनता द्वारा आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति से निपटने के लिए उठाए गए कड़े रुख की सराहना करता है। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। बुधवार सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा नीति वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्तीय बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगे। इससे पहले चक्रवर्ती पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक

प्रबंधक का प्रभार संभाल रही थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए नई दरें अधिसूचित करते हुए कहा कि डीजल पर निर्यात शुल्क अब 25 रूपये और 50 पैसे प्रति लीटर होगा, जबकि एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 22 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Meanwhile, the export duty on petrol has been increased to 3.5 rupees per litre. The revised rates notified by the Finance Ministry came into effect from yesterday. However, there was no change in the existing excise duty on petrol and diesel meant for domestic consumption. Union Home Minister Amit Shah has said that Indian athletes have scripted joyous history by making India the fourth highest medal-winning nation at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, Mr. Shah said that this meteoric success scales to an even greater height as India now officially takes over as a proud host nation of the CWG 2030 to be held in Ahmedabad. The minister congratulated every athlete and all citizens on this moment of double delight. He said India takes a bow in Glasgow and assumes charge of Ahmedabad 2030 Commonwealth Games. And the India Meteorological Department IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 3:10 ये समय है कार्यक्रम गीत गजल का। तो आइए आज के कार्यक्रम गीत गजल में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गजल। जी हां, शानदार गजल के साथ शुरुआत कर रहे हैं और ये गजल बहुत ही खूबसूरत है और अनमोल गजल है। गजल की बात अगर हम करें तो वाकई गजल एक सुकून देने वाली गजलें होती हैं, दिल में दिल के बहुत करीब होती हैं, सुंदर खूबसूरत गजलें। जी हाँ, गजल का मूड बिल्कुल अलग होता है। प्यार लगता है, मोहब्बत आती है, आत्मीयता आती है और बस गीत या फिर गजल जब आप सुनते हैं तो वाकई एकदम रूह तक बस जाती हैं बेहतरीन रचनाएं। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल के अंतर्गत शानदार रचना। ये बेहतरीन गजल जो आवाज है उनकी, जी हां, चित्रा सिंह की आवाज में बहुत ही शानदार रचना है, जिंदगी तुझको जिया है हमने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार गजल।

0: और पंकज उदास की इसी गजल के साथ आज का गजल गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना।

0: मुखनी आप पारसोला में पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरेश्वर सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं तालवादक कचेरी से कचेरी वादन। कलाकार हैं येला वेंकटेश्वरा राय, ताल है आदि।

Gamma,

अभी आप सुन रहे थे येला वेंकटेश्वरा रॉय से ताल वाद्य काचेरी वादन, जो ताल आदि में निबद्ध था। इसी के साथ आज का कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म अब यहीं संपन्न होता है।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोता भाई, अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा उष्टासन और योग से संतुलित जीवन। प्रस्तुतकर्ता होंगे डॉ हिमानी श्योखन, योग विशेषज्ञ। सुबह 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे नकुल मल्होत्रा का गायन राग ललित में।

सुबह 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। संगीतिका कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10 जिसमें आप सुन सकेंगे रीता स्वामी चौधरी के भजन, और सुबह 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा। सुबह 8:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे अमीन खान का गायन राग मियां की तोड़ी में।

0: सुबह 9:15 पर हमारा विशेष कार्यक्रम होगा विज्ञान पत्रिका, जिसके अंतर्गत हम आपको कोलकाता के स्थापना के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे होने पर संस्थान के कार्यों और उपलब्धियों पर जानकारी देंगे। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर शेखर सी मंडे, अध्यक्ष आईएनएसए, पूर्व महानिदेशक सीएसआईआर, पूर्व सचिव डीएसआईआर। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगे दिलीप झा। मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:30 और दिन में 10:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10 और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत 11:30 पर आप सुनेंगे मोहम्मद यूनुस वारसी से वायलिन वादन राग शुद्ध तरंग सारंग में। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: धोती वस्त्र कपाटम जे जानस ब्रह्म कर्मं सब फोकट।

दान विवेक दान विसा दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारिया गुरु धामा दे जिना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शा।

धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास उल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सदक परोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां।